आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफ एम शिमला है। आज वीरवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला है, 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी की दिल्ली के इन से आप सुनेंगे समाचार, प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर

0: मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multi-modal

हम जब अब अपने आराध्य देव का पूजन अर्चन कर लेते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, तो सद्भाव हमारे मन में बन जाता है और एक सकारात्मक विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उसी आस्था में रत होकर अपने कार्य को करते हैं। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से सराबोर कार्यक्रम हिमांजलि, आकाशवाणी FM शिमला से।

इसी भजन के साथ कार्यक्रम हिमांजलि में आज बस इतना ही। आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला है, 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए एक और भक्तिमय रचना, मानस गान, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथ ही संगीतकार सतीश भाटिया।

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवाधिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथ ही संगीतकार सतीश भाटिया। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला है। 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए देश प्रेम का गीत।

0: आप सुन रहे थे देशगान, 6:57 हुए हैं, वक्त है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी यूनियन ने बीती रात से प्रस्तावित अपने चक्का जाम के निर्णय को वापस ले लिया है। कल देर शाम शिमला में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक में ये सहमति बनी। राज्य सरकार ने यूनियन की सभी जायज मांगों को मान लिया है और आज प्रदेश भर में निगम की बसें सामान्य रूप से चलेंगी। नाहन नगर परिषद में कल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव करवाए गए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को 7-7 वोट प्राप्त हुए। ऐसे में ड्रॉ सिस्टम के माध्यम से चुनाव करवाया गया। इसमें कांग्रेस समर्थित उपमा धीमान को अध्यक्ष और भाजपा समर्थित प्रदीप सहोत्रा को उपाध्यक्ष चुना गया। चंबा पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित सदस्यों ने बाजी मारी है। अध्यक्ष पद पर काजल कुमारी और उपाध्यक्ष पद पर हेम सिंह विजयी रहे। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा व कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को 9-9 मत प्राप्त हुए। पर्ची सिस्टम के माध्यम से भाजपा समर्थित काजल कुमारी विजयी रही। उपाध्यक्ष पद पर हेम सिंह ने 2 मतों से जीत हासिल की। भाजपा आज 25 जून को पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में बताया कि इस मौके पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लागू कर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। सांसद सुरेश कश्यप ने कालाअम पौंटा साहिब राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर मारकंडा नदी के ऊपर बने 180 मीटर लंबे खजूरना पुल का उद्घाटन किया। इस पर 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र सरकार सड़कों के निर्माण के लिए भरपूर धनराशि दे रही है। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: 7 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आकाशवाणी की दिल्ली के इनसे आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क

बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री

0: तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर FM शिमला है। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। वाचक हैं डॉक्टर हुकम शर्मा।
2: जिन दिनों महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का उपक्रम चल रहा था, उन्हीं दिनों रत्नपुराधीश्वर महाराज मयूरध्वज का भी अश्वमेधीय अश्व छूटा था। इधर पांडवीय अश्व की रक्षा में श्री कृष्ण और अर्जुन थे और उधर ताम्रध्वज। मणिपुर में दोनों की मुठभेड़ हो गई। युद्ध में भगवत इच्छा से ही अर्जुन को पराजित करके ताम्रध्वज दोनों अश्वों को अपने पिता के पास ले गया, पर इससे महाराज मयूरध्वज के मन में हर्ष के स्थान पर घोर विषाद ही हुआ। कारण वे श्री कृष्ण के अद्वितीय भक्त थे। इधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी, तब वे घोड़े के लिए बेतरह व्यग्र

भक्त परवश प्रभु ने ब्राह्मण का वेश बनाया और अर्जुन को अपना चेला। वे राजा के पास पहुंचे। राजा मयूरध्वज इन लोगों के तेज से चकित हो गए। वे इन्हें प्रणाम करने ही वाले थे कि इन लोगों ने स्वस्ति कहकर उन्हें पहले ही आशीर्वाद दे दिया। राजा ने इनके इस कर्म की बड़ी भर्त्सना की, फिर इनके पधारने का कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पुत्र को सिंह ने पकड़ लिया है। मैंने उसे बार बार प्रार्थना की कि वो मेरे एकमात्र पुत्र को किसी भी प्रकार छोड़ दे, यहां तक कि मैं स्वयं अपने को उसके बदले में देने को तैयार हो गया, पर उसने एक ना मानी। बहुत अनुनय विनय करने पर उसने ये स्वीकार किया है कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपने दक्षिणांग को अपनी स्त्री और पुत्र के द्वारा चिरवाकर दे सके तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूं। राजा ने ब्राह्मण रूप श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान लिया। उनकी रानी ने अर्धांगिनी होने के नाते अपना शरीर देना चाहा, पर ब्राह्मण ने दक्षिणांग की आवश्यकता बतलाई। पुत्र ने अपने को पिता की प्रतिमूर्ति बतलाकर अपना अंग देना चाहा, पर ब्राह्मण ने वो भी अस्वीकार कर दिया। अंत में दो खंभों के बीच गोविंद माधव मुकुंद आदि नाम लेते महाराज बैठ गए। आरा लेकर रानी और ताम्रध्वज चीरने लगे। जब महाराज मयूरध्वज का सिर चीरा जाने लगा, तब उनकी बाई आंख से आंसू की बूंदें निकल गईं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता। मयूरध्वज ने कहा, आंसू निकलने का ये भाव नहीं है कि शरीर काटने से मुझे दुख हो रहा है, बाएं अंग को इस बात का क्लेश है। हम एक साथ जन्मे और पढ़े, पर हमारा दुर्भाग्य जो हम दक्षिणांग के साथ ब्राह्मण के काम ना आ सके, बस इसी से बाईं आंख में आंसू आ गए। अब प्रभु ने अपने आप को प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदा धारण किए, पीतांबर पहने, सघन नील वर्ण, दिव्य ज्योत्समय श्री श्याम सुंदर ने जो ही अपने अमृतमय कर कमलों से राजा के शरीर को स्पर्श किया, वो पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर, युवा और पुष्ट हो गए। वे सब प्रभु के चरणों पर गिरकर स्तुति करने लगे। प्रभु ने उन्हें वर मांगने को कहा। राजा ने प्रभु के चरणों में निश्चल प्रेम तथा भविष्य में ऐसी कठोर परीक्षा किसी की ना ली जाए, ये प्रार्थना की। अंत में 3 दिनों तक उनका आतिथ्य ग्रहण कर घोड़ा लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से आगे बढ़े।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला आप सुन रहे हैं। 7:10 हुए हैं। आइए आपको बता दें कि आज एफएम शिमला पर आप कौन कौन से कार्यक्रम किस वक्त सुन सकते हैं। अब से थोड़ी देर बाद हर दिन की तरह आप 7:15 पर गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम सुनते हैं। 7:57 पर आप एफएम न्यूज़ हेडलाइन सुनते हैं। 8:00 समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज़ 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर एफएम न्यूज़ हेडलाइंस आप सुनते हैं और 8:32 पर लोक संगीत का आनंद आप लेते हैं। आज 8:45 पर आप रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में थायराइड विषय पर डॉक्टर विकास सूद से डॉक्टर हुकुम शर्मा की बातचीत सुनेंगे और 9:00 फिल्म संगीत होगा। 9:20 पर आप हर दिन प्रादेशिक समाचार सुनते हैं।

हम हर रोज़ एक नई सैरगाह पर निकलते हैं और उन पर्यटक स्थलों के बारे में जानते हैं। नमस्कार, 30 मिनट पर कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज भी हम एक नई सैरगाह पर आपको लेकर निकलेंगे। नमस्कार, 57 मिनट पर FM न्यूज़ हेडलाइंस आप सुनते हैं 10 बजे। आज आप आनंद लीजिएगा सदाबहार गीतों का। 11 बजे प्रादेशिक समाचार और 11:05 पर पुरानी फिल्मों से ये कार्यक्रम आप सुनते हैं। लोक संगीत का आनंद लीजिएगा पहाड़ी संगीत में 11:30 पर, और हिंदी में समाचार 12 बजे, अंग्रेजी में 12:05 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनते हैं। फिल्म संगीत सुनिएगा 12:10 पर। इसी से आगे आप 12:20 पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम सुनेंगे। 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेज़ी में।

फिल्म संगीत सुनेगा 1:10 पर, और सबरंग कार्यक्रम का इंतज़ार आपको रहता है 2:00। 2:15 पर दोपहर हिंदी समाचार आप आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से सुनते हैं, और हिमाचली गीतों का आनंद शिखरों के स्वर कार्यक्रम में आप लेते हैं आनंद 2:30 पर। प्रादेशिक समाचार 3:00, जिले की चिट्ठी 3:05 पर, और फिल्म संगीत जो कि ओल्ड हिट्स पर बेस्ड है 3:10 पर आप सुनते हैं, और युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनते हैं 3:30 पर युववाणी। संदेश टू सोल्जर्स ये आज कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनते हैं, और ये 4:00 आप सुनिएगा। 5:00 मंडियाली गीत का आनंद लीजिएगा। 5:20 पर हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में पंगवाली आप सुनिएगा। 5:50 पर इसी बीच लोक गीत सुनिएगा, और 6:00 प्रादेशिक समाचार।

हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में 6:06 पर कांगड़ी कार्यक्रम, 6:30 पर इसी बीच कांगड़ी गीत और 6:35 पर आप लाहौली कार्यक्रम सुनेगा। अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पेश किए जाते हैं। किसान और बागवानों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम 7:10 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं 7:45 पर। रोजगार समाचार 7:56 पर और 8:00 आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत। 8:30 पर फिल्म संगीत। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनते हैं। News@9:15 पर एक फिल्म से ये कार्यक्रम आपके लिए रहता है। 9:30 पर मेल पर आधारित कार्यक्रम आप सुनते हैं दिल की आवाज़ भी सुन, गजलों का लुत्फ लीजिएगा। रात 10:00 10:30 पर सदाबहार नगमे। 11:00 हिंदी में समाचार, अंग्रेज़ी में 11:05 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो ये हैं आज आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। इन्हें सुनने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

7:15 हुए हैं और ये वक्त है गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम का। जब तक हम में आत्मविश्वास है तब तक हम संसार में कुछ भी करके दिखा सकते हैं, लोकमान्य तिलक ने कहा था। जी हाँ, ये विचार ही हैं तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हम कभी कभी परिस्थितियों से डामाडोल हो जाते हैं,

लेकिन ये विचार हमें बराबर पोषित और पल्वित करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि इन विचारों में अनुभव छिपा रहता है और इन विचारों की इतनी शक्ति है कि हमें ये फिर से संगठित करते हैं और हम फिर एक मन बनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हमें जब परिस्थितियाँ घेरती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारा नुकसान हमारा अंतःकरण में हो जाता है, हम कई दिन तक उन बातों में उलझे रहते हैं, लेकिन जब ये सशक्त विचार हमें प्राप्त होते हैं तो फिर से हम एक नए ऊर्जा के साथ, सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला और आप हैं मेरे साथ यानी जगदीश के साथ। बस सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मोहिचुआना और साथियों की आवाज़ों में आपने अंग्रेज़ी में कहते हैं इस फिल्म का ये गीत सुना। इन गीतों के साथ हम आपका मनोरंजन यूँ ही करते रहेंगे और आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। जी हाँ, हम सभी कोशिश करते हैं कि हमारी सुबह अच्छी हो और इस सुबह को अच्छी बनाने के लिए हर दिन हम प्रयास करते हैं। उसके लिए बहुत सारी बातें जो हैं हमें ध्यान में रखनी है। हमें सुबह कौन सी बातों पर ज़्यादा जो है जोर देना है, किन बातों पर हमने गौर करना है, क्या नहीं करना है, ये तमाम बातें जो हैं हमें समझनी होगी। क्योंकि हम एक तरह से जो है हो सकता है घर के अंदर व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि अच्छे से सारी चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाए, लेकिन उस अच्छे को करते करते बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमारी जो वाणी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारी भाषा जो है किसी को कई बार गलत लगती है, इसलिए हमें नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना होता है। क्योंकि सुबह अगर आप अकड़ में बात करेंगे, गुस्से में बात करेंगे, तो दूसरा उसका अच्छा जो है प्रतिक्रिया आपको नहीं देगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर के अंदर हमारी शुरुआत जब अपने मुंह से हो रही है, हम किसी बात को कह रहे हैं, तो बस वो मीठे शब्दों के साथ प्रारंभ हो और धीरे धीरे जो है संबंध प्रगाढ़ होते रहें, अच्छी बातें होती रहें, तो फिर हमारे पास एक ऊर्जा का भंडार हो जाता है और एकदम से जो है वहाँ पर सकारात्मक भाव हो जाता है और हम फिर नियमित रूप से उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए वाकई हम कोशिश कर रहे थे कि इसको अच्छे से करेंगे। तो उसमें मिलजुल कर सभी लोग आगे बढ़ते हैं और तभी हमारी जो सुबह है वह अच्छी हो सकती है। फिलहाल आज का दिन यानी 25 जून का दिन और दिनों की तरह जो है महत्वपूर्ण बातों को लेकर जो है जाना जाता है। इतिहास में बहुत सारी बातें अंकित है। आज के दिन की बात करें तो 25 जून 1932 का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के तौर पर दर्ज है। आज के दिन भारत ने इंग्लैंड के मशहूर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर अपना पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेलकर अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। ऐसी और भी बातें हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप सुनते रहिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला।
1: नूर कहता हूं कभी मैं हूं।

0: दिलजीत दोसांझ और तापसी पन्नू की आवाज़ों में आपने सुरमा फिल्म का ये गीत सुना और आप यूं ही सुनते रहिए गुड मॉर्निंग शिमला।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है? भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है। नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम शिमला आप सुन रहे हैं और गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम चल रहा है। आज के दिन की बात करें तो 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था।

कुश्ती पहलवान उदय चंद का जन्म आज के दिन यानी 25 जून 1935 को हुआ था। वह स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता रहे हैं और 1961 में भारत सरकार द्वारा कुश्ती में प्रथम अर्जुन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। साल 1953 से 1970 में वह भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर रहे और इसी दौरान 1958 से लेकर 1970 तक 12 वर्ष तक नेशनल चैंपियन रहे। साल 1970 से 1995 में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में बतौर प्रशिक्षक उन्होंने कई पहलवान तैयार किए और 3 बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया। और भी आज के दिन की खास जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप बने रहे हैं हमारे साथ यानी एफएम शिमला के साथ। कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग शिमला।

25 जून का दिन और बहुत सारी बातों के लिए आज का ये दिन याद किया जाता है। बहुत सारे लोगों का आज के दिन जन्म हुआ है। आप सबको जो है आकाशवाणी एफएम शिमला की ओर से बहुत बहुत बधाई। और किसी की शादी की सालगिरह है और कोई विशेष उत्सव है तो बहुत बहुत बधाई आप सबको। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित हैं, इन्हें ये सम्मान सन 1999 में मरणोपरांत मिला और इनका जन्म 25 जून 1975 को हुआ। तो कारगिल के युद्ध में जो है ये शहीद हुए और इस युद्ध में जो है बहुत सारे जो है सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। तो आज के दिन जो है उसी में से कैप्टन मनोज कुमार पांडे जिनका जन्म 25 जून 1975 को हुआ है और वो परमवीर चक्र से उन्हें वो सम्मान मिला हुआ है। हर दिन एक नई उमंग और एक नई ऊर्जा के साथ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग इस कश्मकश में रहते हैं कि हम अपने जो संकल्प हमारे हैं उन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए हम क्या करें। लेकिन जब हमने ये ठान लिया है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो फिर उस कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उसके लिए हमें हर पल कोशिश करनी है। जब भी हम जिस भी अवस्था में हो वो हमारे दिमाग में बात रहनी चाहिए कि हमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हम हर रोज़ क्या कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे परीक्षार्थी जो हैं परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण होने के लिए जो है बहुत सारे लोगों से अनुभव भी जानते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तरह तरह की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है हम अपना प्रबंधन करें इस लक्ष्य को लेकर। तो उन्हें कामयाबी तभी मिल पाती है जब वो पूरी तरह से उसके लिए तैयार होते हैं और उसमें जो भी कोई खामियां कभी रह जाती हैं तो उन खामियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन बस कामयाबी का एक ही सूत्र है कि अगर हम उसमें नियमित रूप से प्रयास करेंगे और एकदम से एक स्टीक जो कोशिश हमारी है, यानी हम अगर अपने उस लक्ष्य के लिए तैयार हैं और उसके लिए एकाग्र हैं तो फिर कामयाबी हमें ज़रूर मिलती है। आप बने हुए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुधा सिंह 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा के ओलंपिक एथलीट हैं। उन्होंने एशियाई खेलों में महाद्वीपीय चैंपियनशिप के विभिन्न संस्करणों में 2 स्वर्ण 4 रजत पदक जीते हैं। साथ ही 2012 और 2016 में लगातार 2 ओलंपिक खेलों में भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है।

103.7 MHz पर आप आकाशवाणी FM शिमला सुन रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग शिमला। भारत की प्रसिद्ध महिला एथलीटों में एक हैं सुधा सिंह। उनका भी जन्म 25 जून 1986 को हुआ।

शान और वैशाली प्रवीण की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना और हम आपको आज के दिन की कुछ ख़ास बातें बता रहे थे। बस इतना ही है कि जब हमने सुबह की शुरुआत अच्छे से की है तो दिन भर भी हम अच्छे रहेंगे। हम अगर तरोताज़ा हैं तो औरों को भी हम तरोताज़ा करेंगे, लेकिन फिर एक समस्या आ जाती है कि अगर आप लेट हो जाएँ तो फिर आप हो सकता है कि अपने कार्यस्थल तक जल्दी ना पहुँच पाएँ, क्योंकि कई बार दिक्कतें रहती हैं यातायात में। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमें समय से घर से निकलना है, अच्छे से जो है अपने कार्यस्थल तक पहुंचना है, तो उसके लिए फिर भागम भाग करने की आवश्यकता नहीं रहती। और अब यहाँ से जब आप बिल्कुल इन टाइम अपने कार्यस्थल पर पहुँचेंगे तो फिर काम भी आपका अच्छे से शुरू होगा। इसलिए इन बातों का ख्याल रखना है और फिर मौसम के हिसाब से भी अपनी तैयारी करनी है। कभी भी मौसम ख़राब हो सकता है तो इसका भी हमें ख्याल रखना है, स्वस्थ रहना है और फिर अपने काम में डट जाना है। फिलहाल आप बने शिमला के साथ, कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग शिमला।

0: आपको बता दें कि आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर आप कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम सुन सकते हैं। 8:45 पर आज आप सुनिएगा रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम, जिसमें थायराइड विषय पर डॉक्टर विकास सूद से डॉक्टर हुकुम शर्मा की बातचीत आप सुनेंगे। नौ बजकर 30 मिनट पर आप कार्यक्रम कुदरत के रंग को सुनते हैं और आज 10 बजे आप सदाबहार गीतों का आनंद लेंगे। 11:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। दो बजे सबरंग कार्यक्रम आप सुनते हैं 2:30 पर शुक्रों के स्वर। तो आज बहुत सारे कार्यक्रम आपके लिए, आप यूं ही बने रहिएगा एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 7:57 हुए हैं, वक्त है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों की परियोजनाओं एवं योजनाओं की निगरानी के लिए विकसित मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बागवानी विभाग के उन कार्यक्रमों की भी समीक्षा की जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म में शामिल किए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि अन्य विभाग भी अपने फ्लैगशिप कार्यक्रमों की पहचान करेंगे जिन्हें आगामी समय में रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर लाया जाएगा। राज्य सरकार ने नगर निगम पार्षद की अयोग्यता से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए मंडलीय आयुक्तों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नियुक्त किया है। शहरी विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार शिमला, कांगड़ा और मंडी मंडलीय आयुक्तों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की नगर निगमों के लिए सक्षम प्राधिकारी नामित किया है। अब अगर किसी नगर निगम पार्षद के खिलाफ अयोग्यता संबंधी कोई विवाद या प्रश्न उठता है तो संबंधित मंडलीय आयुक्त तथ्यों की जाँच करेंगे और अंतिम निर्णय देंगे। राज्य सरकार ने लाहौल स्पीति की मौजूदा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। सरकार ने यह फैसला पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद लिया है। मई 2026 में नई पंचायतों के चुनाव पहले ही हो चुके हैं। अधिसूचना के अनुसार अब नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। नई पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद की पहली बैठक 27 जून को आयोजित होगी और इसी दिन नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ भी दिलाई जाएगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का कल रिकांगपियो में आईटीबी की बेस कैंप में समापन हो गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन विभिन्न राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने सीमांत क्षेत्रों में बिताए अपने अनुभव साझा किए। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
0: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह एफएम शिमला है।
2: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या होगा?
2: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
0: आठ बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए

0: मुकाबले में आज शाम मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयं सेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से ई

0: जो कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे

0: पहुंचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
1: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहां पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभी डांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
0: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर

0: के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांतिवार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
4: During

0: जीव कानूनों का पालन, राजस्व साझेदारी की शर्तों की पूर्ति और हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति की मंजूरी अनिवार्य होगी। राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी यूनियन ने बीती रात से प्रस्तावित अपने चक्का जाम के निर्णय को वापस ले लिया है। कल देर शाम शिमला में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक में ये सहमति बनी। राज्य सरकार ने यूनियन की सभी जायज मांगों को मान लिया है और आज प्रदेश भर में निगम की बसें सामान्य रूप से चल रही है। भाजपा आज 25 जून को पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में बताया कि इस मौके पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लागू कर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला है, 8:32 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत, और सबसे पहले हम आपको सुना रहे हैं ये गीत रोशनी शर्मा की आवाज़ में।

0: अरुण कुमार का गाया ये आपने लोकगीत सुना। फिलहाल इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत में आज बस इतना ही। आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला है। 8:45 हुए हैं। सुनिए कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, थायराइड विषय पर डॉक्टर विकासु से बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हुकम शर्मा।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज हम थायराइड के रोग विषय पर कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आकाशवाणी स्टूडियोज में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर विकास सूद जी को। आप सहायक आचार्य हैं न्यूक्लियर मेडिसिन कैंसर हॉस्पिटल IGMC शिमला में। डॉक्टर विकास सूद, आकाशवाणी स्टूडियोज में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: थायराइड जो है ये किस तरह की समस्या है?
2: ये देखिए, पहले तो हमें ये जानना होगा कि थायराइड है क्या। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे शरीर में भिन्न भिन्न तरह की ग्रंथियां होती हैं। थायराइड भी उनमें से एक प्रमुख ग्रंथि है। जैसे आपने सुना होगा, एक बीमारी होती है डायबिटीज या मधुमेह, तो हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है पेनक्रियास, जिससे अगर कुछ हॉर्मोन्स या रस ठीक मात्रा में निकलें तो हम स्वस्थ रहते हैं। उसी तरह से थायराइड भी एक तरह की ग्रंथि है, जिससे कुछ एक रस निकलते हैं और अगर ये सही मात्रा में निकले तो हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता रहता है। किंतु कई बार कुछ बीमारियां थायराइड में हो जाती हैं जिसमें ये

0: हार्मोन्स या रस ठीक मात्रा में नहीं निकलते, या फिर इस थायराइड की ग्रंथि में किसी तरह की गांठें हो जाती हैं जो कई बार कैंसर का रूप भी धारण कर लेती है। तो ये सब थायराइड में होने वाली बीमारियां हैं और इनका भिन्न भिन्न तरीकों से निदान और उपचार किया जाता है।
1: डॉक्टर विकास सूद, हम ना बीमारियों के बारे में जब सुनते थे बहुत पहले की अगर हम बात करें, ये थायराइड या यूरिक एसिड का बढ़ना या जैसे कि मधुमेह या डायबिटिक होना, ये तमाम चीज़ें सुनने में बहुत कम आती थी। क्या लोगों में जागरूकता नहीं थी उस वक्त, या पता नहीं क्या वजह रहती होगी? आजकल तो हम आम देखते हैं कि कोई बोलता मुझे थायराइड की समस्या है, कोई बोलता मैं डायबिटिक हूँ, कोई बोलता मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ये तमाम जो समस्याएं हैं ना, तो इसमें अगर हम थायराइड की बात करें तो इसके कारण क्या है इस समस्या के उत्पन्न होने के?
0: देखिए, आपका एक तरह से कहना तो ठीक है कि बहुत सी समस्याएं जो हैं वो हमारे जीवन शैली पर निर्भर करती हैं। अगर हमारी जीवन शैली स्वस्थ होगी तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। किंतु ये भी सत्य है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनके कुछ और कारण भी रहते हैं। जैसे थायराइड की मैं बात करूँ तो मुख्यतः कारण जो इस बीमारी के होने का, एक तो महिलाएँ इससे बहुत अधिक ग्रसित हैं। एक अनुमान के हिसाब से हमारे देश में लगभग 6 से 7 करोड़ लोग थायराइड के रोगों से ग्रसित हैं। जो थायराइड के रोग हैं उनका मुख्य कारण होने का अनुवांशिक है। अगर आपके परिवार में किसी को थायराइड की समस्या है, माता में, पिता में, भाई बहनों में, तो आपको ये समस्या होने की ज़्यादा प्रबल
1: संभावना है,
0: संभावना या आशंका रहती है।
1: जी जी, तो जो थायराइड ग्रंथि है इसका हमारे शरीर में इसका इतना क्या महत्व है कि इतनी बड़ी समस्या ये बन जाती है कभी कभी?
0: जैसे कि मैंने बताया कि हमारे थायराइड जो ग्रंथि है ये कुछ एक रस या हार्मोन्स निकालती है। ये ऐसे रस या हार्मोन्स हैं जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। चाहे हमें भोजन को पचाना हो, या हमारी सोचने की, पढ़ने लिखने की क्षमता हो, या कोई और कार्य करना हो, तो जब ये हार्मोन या तो कम मात्रा में निकले, जिसे कि हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, या ज़्यादा मात्रा में निकले जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो दोनों ही अवस्थाओं में हमें कुछ लक्षण हमारे सामने आते हैं और जिसकी वजह से हमारी दिनचर्या भी प्रभावित होती है, हमारी सेहत भी प्रभावित होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हम सुचारू रूप से अपना कार्य नहीं कर पा रहे। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले भी बताया, थायराइड में कई बार किसी किस्म की गांठें या ट्यूमर्स हो सकते हैं। ये ट्यूमर कई बार कैंसर का भी रूप धारण कर लेते हैं और इनका सही समय पर निदान और इलाज करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
1: थायराइड ग्रंथि में कौन कौन से विकार उत्पन्न हो सकते हैं और ये जो है ना, ये जनसाधारण में ये कितने सामान्य तौर पर पाए जाते हैं?
0: जैसे कि मैंने बताया, थायराइड के रोग बहुत ही कॉमन है, महिलाओं में बहुत अधिक पाए जाते हैं और एक अनुमान के अनुसार, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 6 से 7 करोड़ लोग हमारे देश में इससे ग्रसित हैं। जो सबसे कॉमन जो है रोग या विकार जो पाया जाता है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कि जो ये हार्मोन है थायराइड हार्मोन, ये कम मात्रा में निकलता है शरीर से। अब हम ये जानेंगे कि अगर कम मात्रा में निकले तो क्या क्या इसके लक्षण आ सकते हैं। उसी तरह से किन्हीं एक लोगों में ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकलता है और उसके बिल्कुल विपरीत लक्षण होते हैं। तो आगे जाके हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या लक्षण होते हैं।
1: जी जी, डॉक्टर विकास, जैसे आपने कहा ना, तो ये थोड़ा सा भारी पड़ा होगा हमारे श्रोताओं को भी सुनने के लिए और जानने के लिए, तो सीधे लक्षणों पर ही आ लेते हैं पहले कि जब भी कोई व्यक्ति थायराइड की समस्या से, मतलब उसको ये समस्या होने लगती है, तो क्या उसके शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं या किस तरह के लक्षण शरीर में दिखते हैं? बुजुर्ग कहते थे कि हमारा शरीर अपने आप में एक डॉक्टर है और जब कोई समस्या होती है ना कुछ उसके जो संकेत हमें मिलने शुरू होते हैं। तो थायराइड के बारे में ऐसे कौन से संकेत या लक्षण हैं?
0: जी, जैसे मैंने मुख्यतः अभी 2 बीमारियों की बात की, जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म है, और तीसरी बीमारी की बात की, थायराइड में किसी प्रकार की गांठ है। तो हम एक एक करके इनको लेते हैं। जब आपके थायराइड ग्रंथि का काम कम हो रहा है, मतलब इससे हार्मोन्स कम निकल रहे हैं, तो ऐसी अवस्था को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें जो मुख्यतः लक्षण आते हैं वो ये है कि आप एक तो सुस्ती महसूस करते हैं, आपका वजन हल्का सा बढ़ जाता है, आपके सोचने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, आप सुस्त रहते हैं, थकान महसूस करते हैं। इसके अलावा कई बार आपकी जो चमड़ी होती है वो सूखी हो जाती है, आपको ठंड ज़्यादा लगती है और कई बार बाल भी झड़ते हैं। तो ये तो है हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण। अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें, जिसमें इन हार्मोन्स की मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है, तो इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है घबराहट होने लग जाती है, पसीना पड़ता है हाथ पैरों में, आपका वजन कम होता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, कई बार आपकी आंखें बाहर को आ जाती हैं। तो इन सब लक्षणों को हम हाइपरथायरॉयडिज्म की श्रेणी में लेते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं, कई बार क्या होता है कि थायराइड का काम तो ठीक है पर थायराइड में कई गांठें आपको नज़र आती हैं। तो ये गांठें कई बार तो

0: जो व्यक्ति है खुद भी देख सकता है शीशे में या महसूस कर सकता है अपने हाथों से। और कई बार किसी तरह की टेस्ट हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड किसी ने करवाया किसी और वजह से करवाया, या सीटी स्कैन करवाया किसी और वजह से करवाया, तो उसमें हमारे को दिखता है कि थायराइड में कुछ गांठें बनी हुई हैं। तो इन गांठों का हमें निदान करना पड़ता है कि किस तरह की गांठें हैं, और फिर निदान करने के बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि ये कैंसर हो सकता है तो फिर कैंसर का इलाज किया जाता है।
1: तो निदान जो है वो किन विधियों द्वारा किया जाता है?
0: देखिए, जो हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसमें तो हम जो ये जो अवयव है हमारे, जो थायराइड हार्मोन के जो हमारे लेवल्स हैं खून में, उनकी हम जांच करते हैं। तो एक बहुत ही साधारण सा टेस्ट है, आपको केवल एक खून की जांच देनी होती है खाली पेट। तो अगर आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो खून में आपके हार्मोन्स की कितनी मात्रा है उसको हम जांच करके परख सकते हैं, कितनी है, ज़्यादा है कम है, तो हम ये निदान कर सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, या आपका थायराइड ठीक काम कर रहा है। इसके अलावा जो थायराइड की गांठें होती हैं, उसके लिए और तरीके के टेस्ट हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड प्रमुख है। अल्ट्रासाउंड के अलावा हम एक न्यूक्लियर मेडिसिन में टेस्ट करते हैं जिसे थायराइड स्कैन कहते हैं, वो किया जा सकता है। और अगर ऐसा पता चलता है कि थायराइड में किसी किस्म की गांठ है, तो एक सुई वाली जांच होती है जिसको FNAC कहते हैं। उससे हम बारीक सी सुई से कुछ मटेरियल थायराइड ग्लैंड से लेते हैं, उसका स्लाइड बनाते हैं, उसको पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से रिव्यू करवाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो गांठ है या साधारण गांठ है या इसमें कैंसर होने की आशंका है, तो उसी हिसाब से इसका उपचार किया जाता है।
1: एक तो आपने कहा कि थायराइड में कैंसर तक भी हो सकता है, तो इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं, कोई अगर दूसरी तरह की भी कोई समस्या होती है, तो उपचार की विधि कैसे रहती है इसकी?
0: देखिए, पहले तो जो ज़्यादा कॉमन है हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, उसके उपचार की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक छोटी सी गोली अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपको खाली पेट सुबह उठ के खानी पड़ती है। ये बहुत ही आसान तरीका है थायराइड को ठीक करने का। जिनका थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है, उसको भी बहुत हद तक हम गोलियों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, पर उसके लिए जो गोलियाँ वो अलग किस्म की हैं। फिर हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन में एक विधा होती है जिसको हम रेडियो आयोडीन थेरेपी कहते हैं। उससे भी जिनका थायराइड ज़्यादा काम कर रहा होता है, उसको हम वो दवाई पिला के ठीक कर सकते हैं। जहाँ तक थायराइड कैंसर की बात है, थायराइड कैंसर का जो मुख्यतः इलाज है वो है सर्जरी। तो सर्जरी करके जो कैंसर वाली गांठें हैं उनको निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो रेडियो आयोडीन की मैंने बात की थी, बहुत सारे लोगों को वो दवाई भी पिलाई जाती है, ताकि कहीं पर कुछ सर्जन से छूट गया है, छोटी मोटी बीमारी के कण कहीं छूट गए, तो वो दवाई रेडियो आयोडीन उनको ख़त्म कर देती है। तो ये तो रहा थायराइड की बीमारियों का इलाज।
1: आपने कहा कि हमारी जो जीवन शैली है, या एक तरह से हम कहें कि जो हमारे भिन्न भिन्न वर्ग हैं समाज के, तो क्या, या उम्र विशेष की भी हम यहाँ बात करना चाहेंगे, एक ही प्रश्न में तमाम ये बातें अगर कवर हो जाए तो शायद बेहतर। तो जो विशेष वर्ग के लोग हैं, हमारी विशेष जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए, मतलब जिनमें हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये समस्या ना हो?
0: और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर आप देखें तो तीन विशेष वर्ग हैं जिनका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो हैं छोटे बच्चे, दूसरी गर्भवती महिलाएं, और तीसरे हमारे बुजुर्ग। छोटे बच्चे इसलिए क्योंकि अगर माता को दिक्कत है थायराइड की, खासकर हाइपोथायराइड की, तो ऐसा देखा गया है कि इनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी थायराइड रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। और क्योंकि ये ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मददगार होता है, शरीर को और हमारे दिमाग को भी, तो अगर ठीक समय पे बच्चों में ये बीमारी ना पकड़ी जाए, तो कई बार वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। कोई भी ऐसी महिला जिसको गर्भाधारण की अवस्था में थायराइड का पता चलता है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि नवजात शिशु का भी थायराइड टेस्ट किया जाए, और अगर उसको थायराइड निकलता है तो सही समय पे उसका इलाज किया जाए, ताकि आने वाले समय में ना तो कोई शारीरिक और ना ही कोई मानसिक बीमारी हो। दूसरा ये कि जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको पहले से पता है कि उनको थायराइड की दिक्कत है, तो एक तो ऐसी महिलाओं में कई बार हमने देखा है कि गर्भधारण में भी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, और अगर गर्भधारण हो जाए तो ऐसी स्त्रियों को जो थायराइड हार्मोन की आवश्यकता होती है वो ज़्यादा होती है। तो तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर से आप परामर्श लें और अपनी थायराइड की दवाई बढ़ाएं। तीसरा, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनमें कई बार जो ऐसे लक्षण होते हैं थायराइड के, वो बहुत ज़्यादा उनकी समझ में नहीं आते, क्योंकि उनको बुज़ुर्गियत में ठंड भी लगती है, कई बार उनका मेमोरी लॉस भी होता है, तो कई बार जो इसका निदान है उसमें देरी हो जाती है। तो बुज़ुर्गों में भी ऐसी कोई समस्या है तो उनको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और जल्दी से जल्दी इस बीमारी का पता करके ठीक से उपचार लेना चाहिए।
1: डॉक्टर विकास सूद, कई बार लोग कहते हैं कि जैसे एकदम से मोटापा किसी को आ जाता है, या एकदम से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, तो क्या ये भी थायराइड के कारण हो सकता है?
0: बिल्कुल, जैसे मैंने बताया जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके शरीर में फैलावट आ जाती है। ये फैलावट पाँव से शुरू

0: होती है और चेहरे तक भी पहुंच सकती है। और जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें बिल्कुल उल्टा होता है, उसमें आपका वजन कम होने लगता है। तो अगर आपकी दोनों में से कोई भी समस्याएं हैं तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।
1: लक्षणों के भी आपने हमारे श्रोताओं को जानकारियां दी, तो कब किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक हो जाता है, स्पेशली थायराइड की अगर हम बात करें इसको लेकर?
0: जी, जैसे मैंने बताया कि बहुत हद तक ये बीमारी जो है अनुवांशिक है, तो अगर आपके माता पिता या भाई बहनों में ये समस्या है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दूसरा, जो लक्षण मैंने बताया इनमें से अगर कोई भी लक्षण आपको लग रहा है कि आपके शरीर में है तब भी डॉक्टर से परामर्श लें। और तीसरा ये है कि बहुत बार जो थायराइड फंक्शन टेस्ट हैं ये एज अ रूटीन टेस्ट भी किए जाते हैं, तो अगर इसमें कोई समस्या आपको आ रही है और ये रूटीन टेस्ट करने के बाद बताया गया है कि थायराइड की कोई समस्या है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
1: और कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें जो है, जैसे मान लीजिए कोई हमारा खान पान है या हमारी जो दैनिक जीवन शैली है, उनमें किस तरह से हम सुधार करें कि कोई समस्या हो ही ना, क्योंकि इलाज से बेहतर तो परहेज होता है।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक तो अपनी जीवन शैली को आप स्वास्थ्यवर्धक रखिए, सैर करिए, अच्छा पोषक खाना खाइए, ठीक है। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि दो तीन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। जो हमारी हिमालयन बेल्ट है उसमें पहले घेंघा रोग देखा जाता था जो आयोडीन की कमी से होता था, परंतु भारत सरकार का एक उपक्रम चला जिसके वजह से नमक में आयोडीन मिलाया जाता था, तो घेंघा रोग तो हम नहीं देखते क्योंकि सभी लोग आयोडीन युक्त नमक ही खा रहे हैं। परंतु फिर भी आयोडीन नमक के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जीवन शैली भी अपनी ठीक रखें, सैर करें, अपने वेट को नियमित रखें, बढ़ने ना दें, ठीक है। और साथ में अगर कोई और समस्या है, जैसे आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम है या मधुमेह का रोग है, तो उसका भी नियंत्रण ठीक में रखें, क्योंकि अगर आपको किडनी की कोई समस्या है, मधुमेह रोग है, तो थायराइड का भी जो कंट्रोल है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है।
1: जी डॉक्टर विकास, आपने आयोडीन की बात की नमक में, तो जैसे हम आमतौर पर सब्जी दाल वगैरह में नमक पहले ही डाल देते हैं, अच्छे से वो बॉयल हो जाता है, तो क्या उसमें तब भी आयोडीन की मात्रा रहती है, कि ऐसा तो नहीं है कि सब्जी बनने के बाद हम उसके ऊपर से नमक डालें? या
0: नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है, ठीक है।
1: मतलब उसमें
0: तो
1: आयोडीन रहता
0: हाँ,
1: ही है?
0: आयोडीन रहता है, तो जितनी मात्रा में शरीर को चाहिए होता है वो आयोडीन नमक से उतनी मात्रा में आयोडीन खींच लेता है।
1: हमारे श्रोताओं के लिए आपका कोई खास संदेश?
0: और मैं यही कहना चाहूँगा कि थायराइड की समस्या कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है, बशर्ते ये कि इसका ठीक से इलाज कराया जाए। अगर इसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है और समय समय पे आप टेस्ट नहीं करवा रहे हैं तो कई बार ये समस्या गंभीर रूप भी धारण कर लेती है। तो
1: जी
0: आप डॉक्टर के बताए हुए कहने पे चलें, जैसे जैसे वो मेडिसिन्स बता रहा है आपको वैसे खाएं, जितनी मात्रा में बता रहा है वैसे खाएं, तो आप तमाम उम्र ठीक रह सकते हैं। और
1: जी
0: अगर कैंसर भी हो जाता है तो ये एक इस तरह का कैंसर है जो 100% इलाज के लायक है ना। तो कई बार लोग कैंसर के नाम से घबरा जाते हैं, बट थायराइड के कैंसर में हमने देखा है कि लोग जीवन पर्यंत इलाज के बाद ठीक रहते हैं।
1: डॉक्टर विकास सूद जी, आप आकाशवाणी स्टूडियोज में आए, थायराइड के रोग विषय पर आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारियां दी। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में थायराइड विषय पर डॉक्टर विकास सू से डॉक्टर हुकुम शर्मा की बातचीत।

9 बज चुके हैं और अब वक्त है फिल्म संगीत का। आपको हम सबसे पहले आशिकी फिल्म का ये गीत सुना रहे हैं। इसमें आवाज़ें हैं अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की, सुनिए।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल का गाया ये गीत आपने सुना। अब हम आपको फिल्म संगीत में हिना फिल्म का ये गीत सुना रहे हैं। इसमें आवाज़ लता मंगेशकर की है, सुनिए।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से, और अब हम फिल्म संगीत में दिल फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज़ों में। समीर का लिखा ये गीत, संगीत आनंद मिलन का।

दिल फिल्म के इसी गीत के साथ अब फिल्म संगीत में इतना ही। आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये एफएम शिमला है। आइए आपको बता दें कि आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल पर कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 9:30 पर आप सुनते हैं सुरवेला कार्यक्रम और 10 बजे आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम रिमझिम।

11:05 पर आप समाचार एकांश की प्रस्तुति सुनेंगे और 11:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

1:10 पर फौजी भाई सुनते हैं अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए और 2 बजे किसान और बागवानों के लिए सुनहरी किरणें कार्यक्रम। दो बजकर 30 मिनट पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम हिमगुंजन आप सुनते हैं और 6:30 पर साय आप सुनेंगे भारत और बांग्लादेश के मध्य ट्रेफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर से ICC महिला T20 क्रिकेट मैच

विश्व कप 2026 क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे। तो ये हैं आज आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल पर प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम। FM 103.7 MHz पर ये FM शिमला है। कृपया आप हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
2: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों और मंत्रालयों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के दिए निर्देश। संविधान हत्या दिवस आज, देश सहित प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार पारदर्शी व प्रभावी जनसेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी संपत्तियों को बेचने का लगाया आरोप। और सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेला कल से होगा शुरू। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा खेलकूद प्रतियोगिताएं भी होंगी आयोजित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों और मंत्रालयों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता है। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडिटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका

0: व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया।
1: इस बीच प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इस मौके पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला में आज होने वाले संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल मुख्य वक्ता होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार पारदर्शी व प्रभावी जन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में डिजिटल प्रौद्योगिकी व गवर्नेंस विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में आम लोगों के हित में अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की परियोजना व योजनाओं की निगरानी के लिए विकसित मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रगति की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड विभिन्न योजनाओं की प्रगति व क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि सरकार विभागों के कार्य में आधुनिक तकनीक का समावेश किया जा रहा है, ताकि पारदर्शिता, कार्यकुशलता और सेवा प्रदायगी में सुधार हो सके। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और परंपराएं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान स्थापित करते हुए उसे गौरवान्वित कर रही है। चंबा जिला के बनीखेत में आयोजित आषाढ़ नाग मेले के समापन समारोह में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का अब तक का कार्यकाल देश के लिए स्वर्णिम रहा है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वैश्विक पटल पर भारत एक शक्तिशाली और सशक्त राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित हुआ है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर राज्य की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी संपत्तियों को बेचने जा रही है, जो सरासर गलत है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में हिमाचल ऑन सेल का टैग लगा दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब तक प्रदेश की बहुत सारी संपत्तियों को राज्य सरकार बेच चुकी है और इसी कड़ी में राज्य पर्यटन विकास निगम की 18 बड़ी संपत्तियों व होटलों को भी निजी क्षेत्र को ठेके पर देने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसका पर्यटन निगम के कर्मचारी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सोलन का सुप्रसिद्ध राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेला कल से शुरू होगा। 28 जून तक आयोजित किए जाने वाले इस मेले में 3 सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें बॉलीवुड व पंजाबी कलाकारों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। अतिरिक्त जिला उपायुक्त राहुल जैन ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल और बैडमिंटन सहित अनेक खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि एंटी चिट्टा थीम पर आयोजित की जा रही इन खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें खेलों से जोड़ना है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना प्रदेश के बेसहारा बच्चों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। कांगड़ा जिला में भी बेसहारा बच्चों के सुरक्षित भविष्य निर्माण में ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
2: मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कांगड़ा जिले के सैकड़ों बच्चों के लिए जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। योजना के तहत मई 2026 तक 27 वर्ष तक की आयु के 719 चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को करीब 57 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वहीं टोंगलेन ट्रस्ट में रह रहे लगभग 200 बच्चों को भी 6.25 लाख रुपए की

0: सामाजिक सुरक्षा सहायता और प्रतिमाह 500 रुपए उस सब भत्ता दिया जा रहा है। यह योजना केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित नहीं है बल्कि बच्चों के सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव भी रख रही है। गृह निर्माण सहायता योजना के तहत इस वर्ष अब तक प्राप्त 36 आवेदनों को मंजूरी देते हुए प्रत्येक लाभार्थी के लिए 3 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। पहली किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इतना ही नहीं, जिले में 2 चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को घर बनाने के लिए भूमि भी उपलब्ध करवाई गई है।
1: राज्य सरकार ने लाहौल स्पीति जिले के केलांग उपमंडल, चंबा जिले के पांगी उपमंडल और जिला परिषद लाहौल स्पीति की मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन क्षेत्रों में हाल ही में पंचायत चुनाव के बाद नव निर्वाचित संस्थाओं को कार्यभार सौंपने और पूरे प्रदेश में पंचायतों के कार्यकाल को एक समान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला और पंजाब केसरी के लगभग एक जैसे शब्द हैं, एचआरटीसी चालक परिचालकों की मांगों पर सहमति, हड़ताल ली वापस। दैनिक जागरण ने लिखा है, हड़ताल वापस, चलती रहेगी बसें, एचआरटीसी कर्मचारियों की निगम प्रबंधन से हुई बैठक में मानी मांगे। दिव्य हिमाचल का कहना है, सरकार ने मनाए एचआरटीसी कर्मी, नहीं होगी हड़ताल। मौसम की खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, किन्नौर में फटा बादल, संपर्क मार्ग बहा, 5 जिलों में बारिश से पारा 4 डिग्री तक गिरा। हिमाचल दस्तक के शब्द हैं, मौसम ने ली करवट, कई जगह बूंदाबांदी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों और मंत्रालयों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के दिए निर्देश। संविधान हत्या दिवस आज, देश सहित प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार पारदर्शी व प्रभावी जनसेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी संपत्तियों को बेचने का लगाया आरोप। और सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेला कल से होगा शुरू, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा खेलकूद प्रतियोगिताएं भी होंगी आयोजित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के शिमला FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र से सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
5: आकाशवाणी 103.7 MHz पर आप FM शिमला सुन रहे हैं। 9:30 हुए हैं और अब वक्त है कुदरत के रंग कार्यक्रम का।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको हिमाचल प्रदेश के भिन्न भिन्न पर्यटक स्थलों की सैर पर लेकर निकलते हैं, और ये सैर आपको कुछ ना कुछ वहाँ का दिव्य दर्शन का एहसास करवाती है। और सच में जब हम इन स्थलों पर पहुँचते हैं वो अनुभूति अलग होती है, लेकिन जिज्ञासा एकदम सुनने से बन जाती है, क्योंकि ये प्रदेश जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वभर में जाना जाता है, और विश्वभर से जो हैं पर्यटक हर वर्ष जो हैं यहाँ भ्रमण के लिए पहुँचते हैं। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पर्वत, यहाँ की घाटियाँ, खेत खलियान, लोक व्यवहार और यहाँ की वन संपदा तमाम इन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जब वो एक दूसरे से इन स्थलों की बातचीत करते हैं तो वो उस जिज्ञासा से जो हैं यहाँ प्रदेश के भ्रमण के लिए आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम लाहौल घाटी के कुछ जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं उनकी सैर पर आपको लेकर निकलेंगे। इसमें बहुत सारे हैं, रोहतांग है, कोकसर है, सिस्सू है, बहुत सारे और स्थल हैं जिनकी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन आप यूं ही हमारे साथ

बाजीराव मस्तानी, इस फिल्म का ये गीत आपने अरिजीत सिंह की आवाज़ में सुना। फिलहाल गीतों के साथ आपका हम करते रहेंगे भरपूर मनोरंजन, क्योंकि अब हम सैर पर निकल चुके हैं और संगीत की मीठी मीठी धुन भी साथ चलती रहेगी और हम इस सफ़र पर अब चल चुके हैं। केलांग की बात करें तो भागा नदी के ऊपर बसा हुआ लाहौल स्पीति का ज़िला मुख्यालय, हरे भरे खेतों, वृक्षों से घिरी जलधाराएं और यहाँ पर भूरी भूरी पहाड़ियाँ, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, ये एकदम से इस स्थल को आकर्षण से भर देती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जब पर्यटन के लिए सभी सैलानी पहुँचते हैं तो वो अनुभव करते हैं कि ये स्थान उनके सुनने से कहीं ज़्यादा जो है अपनी सुंदरता बिखेर रहा होता है। अब तांदी की बात करें तो चंद्रभागा नदियों का संगम दोनों का यहाँ स्थल पर होता है और बहुत ही यहाँ की एक पौराणिक कथा भी है जिस पर यहाँ ये मिलन इन नदियों का रहता है और दोनों की जो भी इतिहास उसके बारे में बयां किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये संगम इन नदियों का होता है वो भी एक

यहाँ के क्षेत्र को सुंदरता प्रदान करता है। रोहतांग की बात करें तो लगभग 13,050 मीटर की ऊंचाई पर लगभग ये स्थित है स्थल समुद्र तल से। तो यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि ये जो रोहतांग दर्रा है किस तरह से जो है एक सुंदरता भी बयां कर रहा है। बहुत दूर दूर से सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ का जो वायुमंडल है, यहाँ का जो परिदृश्य है जिसमें अल्पाइन फूलों की किस्मों के साथ गर्मियों में हरे घास के मैदान यहाँ ये तब्दील हो जाते हैं और असंख्य और दुर्लभ प्रकार की विविधता और विभिन्न रंगों की तितलियाँ, यहाँ पर आने वाला हर सैलानी ये अनुभव करता है कि ये स्थान जब बर्फ़ से ढकता है तो यहाँ की सुंदरता कुछ और होती है, जब गर्मियों में ये स्थान थोड़ा खुलता है तो ये इसका दर्शन कुछ और जैसा हो जाता है, यानी अद्भुत सुंदरता का संगम इस स्थल पर। कोकसर की बात करें तो यहाँ का ये गांव और एक गेट आपको कह सकते हैं यहाँ की शुरुआत इस लाहौल की, और 3,140 मीटर लगभग यहाँ की ऊंचाई समुद्र तल से चंद्र नदी के दाहिने किनारे पर ये स्थित है और बाएं किनारे पर यहाँ पर आपको कुछ आवास भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक जो इन नदियों के साथ जो वातावरण इन गांवों का है वो बहुत ही अद्भुत सुंदरता के प्रतीक हैं। और भी जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन ये गीत सुने और यूं ही बने रहे हमारे साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम कुदरत के रंग।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप आकाशवाणी एफएम शिमला सुन रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है कुदरत के रंग। हम लाहौल के कुछ पर्यटक स्थलों की जानकारी आपको दे रहे थे। हमने रोहतांग की बात की, कोकसर की बात की, सिस्सू की अब बात करते हैं। ये गांव चंद्र नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और गांव चंद्र नदी के ऊपर एक विस्तृत एक बहुत बड़े भाग में जो है यहाँ पर स्थित है। सड़क के दोनों किनारों पर यहाँ पर वृक्षारोपण है, अच्छे से जो है यहाँ की एक प्राकृतिक व्यवस्था बनी हुई है। और यहाँ पर आप अगर फसल की बात करें तो आलू, मटर, जौ, गेहूँ यहाँ पर बहुत तादाद में यहाँ के लोग जो हैं अपने लिए इसको उगवाते हैं। और यहाँ पर जो प्राकृतिक फूलों का बहुत बढ़िया जो है बाग बगीचा आपको नज़र आएगा। और ये जो रंगीन यहाँ का इन फूलों से स्थान बना रहता है वो अद्भुत यहाँ का आकर्षण बनाते हैं।

और गांव यहाँ के ऐसे हैं कि अगर यहाँ के आसपास की छटा आप देखेंगे, ऐसा मालूम होता है कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ की जो चोटियाँ हैं, यहाँ की जो नदी है, खेत खलियान हैं, वो इतना सुंदर इन गांवों को बना रहे होते हैं कि ऐसा मन करता है कि इन्हीं गांवों में जो है रहा जाए। गोंदला की बात करें तो ये भी चंद्र नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और यहाँ से जो जिला मुख्यालय है वो 18 किलोमीटर दूर है। 3160 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है और यहाँ भी लोग जब पहुँचते हैं तो अद्भुत यहाँ की प्राकृतिक छटा का आनंद लेते हैं।

कई हम गीतों में न खो जाएं, क्योंकि हमारा सफर रहता है इन दुर्लभ क्षेत्रों का भ्रमण करने का। जिस्पा की बात करें तो ये बहुत ही सुंदर स्थान 22 किलोमीटर दूर ये केलोंग से, और ये गांव मुख्य नदी जो भागा है उससे, उसकी जंक्शन पर ये स्थित है। और जिस्पा में लाहौल की एक दुर्लभता, एक बहुत बड़ी शुष्क नदी, इस तरह से भी उसका दर्शन कभी हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सुंदर ये स्थान, तमाम जितने ये स्थल हैं, जितने ये गांव हैं, वो अपनी एक विशेष पहचान यहाँ की अपनी प्राकृतिक खेती के रूप में रखते हैं। अब दारचे की बात करें तो ये भी बहुत ही सुंदर यहाँ का स्थान है। अपनी तमाम जो यहाँ की वन संपदा है, वहाँ का जो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, उसके लिए ये अपने चाहने वालों के दिलों में राज करता है। और सूरजताल की बात करें तो बहुत ही सुंदर ये स्थान, 16,000 फीट की लगभग ये ऊंचाई यहाँ की, और यहाँ पर भागा नदी इस झील में से ही निकलती है, और वहाँ धीरे धीरे चलकर ये नदी जब अपना एक सुंदर स्वरूप बनाती है तो फिर एक जगह यानी तांदी पे मिलकर जो है दोनों का संगम चंद्र और भागा का हो जाता है।

फिलहाल इसी गीत के साथ अब कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप कौन कौन से कार्यक्रम जो कि मुख्य आपके लिए रहेंगे, 10 बजे आप आज सदाबहार गीत सुनेंगे और 11:05 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। शिखरों के स्वर लोक संगीत पर आधारित यह कार्यक्रम 2:30 पर आपके लिए पेश किया जाता है और फिल्म संगीत आप 3:10 पर सुनते हैं जो कि ओल्ड हिट्स पर आधारित है। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनते हैं 3:30 पर और आज आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

8 बजे आप भूले बिसरे गीत सुनते हैं और 8:30 पर फिल्म संगीत। नौ बजकर 15 मिनट पर इंतज़ार रहता है आपको एक फिल्म से कार्यक्रम का, और 9:30 पर आपके लिए पेश किया जाता है मेल पर आधारित कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन।

0: 9:57 हुए हैं, वक्त है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों और मंत्रालयों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता है। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारों और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। भाजपा आज पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। यह दिवस 25 जून 1975 को

0: को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार पारदर्शी व प्रभावी जनसेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में डिजिटल प्रौद्योगिकी व गवर्नेंस विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में आम लोगों के हितों में अनेक योजनाएं शुरू की है जिनका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की परियोजना व योजनाओं की निगरानी के लिए विकसित मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रगति की भी समीक्षा की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का अब तक का कार्यकाल देश के लिए स्वर्णिम रहा है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वैश्विक पटल पर भारत एक शक्तिशाली और सशक्त राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित हुआ है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी राज्य की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और परंपराएं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान स्थापित करते हुए उसे गौरवान्वित कर रही है। चंबा जिला के बनीखेत में आयोजित आषाढ़ नाग मेले के समापन समारोह की शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोलन का सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तरीय शूलिनी मेला कल से शुरू होगा। 28 जून तक आयोजित किए जाने वाले इस मेले में 3 सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाएंगी जिनमें बॉलीवुड व पंजाबी कलाकार के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। अतिरिक्त जिला उपायुक्त राहुल जैन ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल और बैडमिंटन सहित अनेक खेलकूद प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाएंगी। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।
1: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला है। 10 बज चुके हैं और अब समय है सदाबहार गीतों का।

जी हाँ, सदाबहार गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए और आप यूं ही बने रहें आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला के साथ। सबसे पहला ये गीत उजाला फिल्म से आपको हम सुना रहे हैं। इसमें आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी मुकेश की हैं, शैलेंद्र का लिखा ये गीत, संगीत शंकर जयकिशन का। सुनिए।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ

103.7 MHz पर आकाशवाणी एफएम शिमला आप सुन रहे हैं और आप सदाबहार गीत सुन रहे हैं। अब जो गीत हम आपको सुना रहे हैं, गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म का ये गीत है। इसमें आवाज़ें गीता दत्त, लता मंगेशकर और साथियों की है। भरत व्यास ने गीत को लिखा है, वसंत देसाई का संगीत।

गीता दत्त और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना। आपको हम सदाबहार गीत सुना रहे हैं आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से। अगला ये गीत जो हम आपको सुना रहे हैं दिल देके देखो, इस फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग है और इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, संगीत उषा खन्ना का।

मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत आपने सुना और आप सदाबहार गीतों का आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी 103.7 में घर से FM शिमला से। अगला जी गीत आपको हम सुना रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में, राजेंद्र का लिखा ये गीत, संगीत मदन मोहन का है, चाचा जिंदाबाद इस फिल्म का ये गीत।

रास्ता है आपका, ये रास्ता है आपका, अगर मैं साथ हो लिया तो क्या गया जनाब का, जी वास्ता है आपका ये रास्ता।

मुकेश का गाया ये गीत आपने सुना, मुड़ मुड़ के न देखे, इस फिल्म का ये गीत। इसके बोल प्रेम धवन के हंसराज भैल का संगीत इस गीत के लिए। अगला ये गीत अब हम आपको लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में सुना रहे हैं। आप सदाबहार गीत सुन रहे हैं आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से।

नौशाद का संगीत बद्ध किया गीत आपने प्यार की दास्तां इस फिल्म से सुना और इसमें आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की, सुल्तान सुमन कल्याणपुर की। तो अगला जो गीत अब हम आपको सुना रहे संजोग फिल्म से है, आवाज़ लता मंगेशकर की है, सुनिए।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
1: सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी 103.7 MHz पर आप सदाबहार गीत सुन रहे हैं और अब हम जो गीत आपको सुना रहे हैं उसे लिखा है शकील बदायनी ने, संगीत हेमंत कुमार का है और फिल्म का नाम है साहिब बीवी और गुलाम। सुनिए 1962 में आई इस फिल्म का ये गीत।

माया फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की थीं। और अब हम आपको 1963 में आई फिल्म गुमराह का ये गीत सुना रहे हैं। इसमें आवाज़ें महेंद्र कपूर, आशा भोंसले की है, साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, संगीत से सजाया है रवि ने।

0: सदाबहार गीतों में इतना ही। आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ही एफएम शिमला है और मुझे यानी जगदीश को आज्ञा दीजिए, बने रहिए एफएम शिमला के साथ। 11 बजने वाले हैं, कृपया आप हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार पारदर्शी व प्रभावी जनसेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में डिजिटल प्रौद्योगिकी व गवर्नेंस विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में आम लोगों के हित में अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की परियोजना व योजनाओं की निगरानी के लिए विकसित मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रगति की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड विभिन्न योजनाओं की प्रगति व क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इस मौके पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला में आज होने वाले संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल मुख्य वक्ता होंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का अब तक का कार्यकाल देश के लिए स्वर्णिम रहा है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वैश्विक पटल पर भारत एक शक्तिशाली और सशक्त राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित हुआ है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर राज्य की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी संपत्तियों को बेचने जा रही है, जो सरासर गलत है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में हिमाचल ऑन सेल का टैग लगा दिया है। सोलन का सुप्रसिद्ध राष्ट्रस्तरीय शूलिनी मेला कल से शुरू होगा। 28 जून तक आयोजित किए जाने वाले इस मेले में 3 सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें बॉलीवुड व पंजाबी कलाकारों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। अतिरिक्त जिला उपायुक्त राहुल जैन ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल और बैडमिंटन सहित अनेक खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि एंटी चिट्टा थीम पर आयोजित की जा रही इन खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें खेलों से जोड़ना है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना प्रदेश के बेसहारा बच्चों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। कांगड़ा जिला में भी बेसहारा बच्चों के सुरक्षित भविष्य निर्माण में ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका

0: का निभा रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कांगड़ा जिले के सैकड़ों बच्चों के लिए जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। योजना के तहत मई 2026 तक 27 वर्ष तक की आयु के 719 चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को करीब 57 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वहीं टोंगलेन ट्रस्ट में रह रहे लगभग 200 बच्चों को भी 6.25 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा सहायता और प्रतिमाह 500 रुपए उत्सव भत्ता दिया जा रहा है। यह योजना केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित नहीं है बल्कि बच्चों के सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव भी रही है। गृह निर्माण सहायता योजना के तहत इस वर्ष अब तक प्राप्त 36 आवेदनों को मंजूरी देते हुए प्रत्येक लाभार्थी के लिए 3 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। पहली किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इतना ही नहीं, जिले में 2 चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को घर बनाने के लिए भूमि भी उपलब्ध करवाई गई है।
0: राज्य सरकार ने लाहौल स्पीति जिले के केलांग उपमंडल, चंबा जिले के पांगी उपमंडल और जिला परिषद लाहौल स्पीति की मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से

0: लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इतना ही नहीं, जिले में 2 चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को घर बनाने के लिए भूमि भी उपलब्ध करवाई गई है।
1: राज्य सरकार ने लाहौल स्पीति जिले के केलांग उपमंडल, चंबा जिले के पांगी उपमंडल और जिला परिषद लाहौल स्पीति की मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन क्षेत्रों में हाल ही में पंचायत चुनावों के बाद नवनिर्वाचित संस्थाओं को कार्यभार सौंपने और पूरे प्रदेश में पंचायतों के कार्यकाल को एक समान करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के अलावा एफएम शिमला पर भी प्रसारित किए गए। ये आकाशवाणी शिमला है, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

आप सुन रहे हैं FM शिमला। नमस्कार, आदाब। और आज का ये खूबसूरत दिन बस आपके नाम। सुन रहे हैं आप FM शिमला 103.7 MHz पर। लेकर यादों का वो सुहाना कारवां, पुरानी फिल्मों की वो अनमोल नगीने, गुजरे जमाने के वो दिलचस्प किस्से। जी हाँ, इन्हें लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो हम सफर अलका ठाकुर। पुरानी फिल्मों से, जी हाँ, ये है वो कार्यक्रम जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं इस गीत के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हीरा पन्ना जी हैं। इस फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज किशोर कुमार और आशा भोसले की, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। आप सुन रहे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

0: आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म शतरंज से। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: पुरानी फिल्मों से, जी हाँ, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला के साथ। कभी कभी जिंदगी में एक सही ओर मुड़ जाना हमें सुरों के उस समंदर में ले जाता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ सुकून होता है। और बात जब पुराने जमाने के गानों की हो तो दिल अपने आप उस सुनहरे दौर की ओर खींचा चला जाता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना।

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम, तुम।
1: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ

बड़ी तब्दीलियां लाए हम रफ्तारी जिंदगी में, मगर वो पुराने गानों का सुकून आज भी नहीं बदला। बॉबी फिल्म का ये गीत आपने सुना, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की, आनंद बख्शी के वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

बर्फीली हवा की चूड़ियों से गुजरकर जो हवा आती है वो अपने साथ देवभूमि की पावन संस्कृति लाती है। आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत करते हैं जिनकी मौजूदगी इस कार्यक्रम को और भी हसीन बनाती है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं पहाड़ी संगीत। और पहाड़ी संगीत के आरंभ में आपके नाम कर रहे हैं ये लोकगीत।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: ऊंची पहाड़ियों से जो बहती है हवा, उस हवा में घुला एक नशा है। ये जो गूंजती है वादियों में सुरीली तान, यही तो हमारे पहाड़ों की सच्ची धरोहर और संगीत की जुबान है। पहाड़ी संगीत आप सुन रहे हो पहाड़ी संगीत में। लीजिए सुनिए किरण भारद्वाज और लता चंदेल को।

कहते हैं पहाड़ों की मोहब्बत और पहाड़ों का पानी कभी पुराना नहीं होता, तो इसी मोहब्बत के नाम सुनते हैं आज का ये अगला लोकगीत।

0: रंजीत कुमार के गाए इसी लोकगीत के साथ पहाड़ी संगीत यहीं समाप्त होता है। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 12 बजने को है। समाचारों के लिए आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कमज़ोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जाँच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद

या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं FM शिमला के साथ। आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 12:20 होने को है। प्रतीक्षा कीजिए हमारी अगली उद्घोषणा की।

मीडियम वेव 387.6 मीटर पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक आयोजन महिला सम्मेलन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम हमारे FM चैनल पर भी सुना जा सकता है।

0: बहनों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने कार्यक्रम महिला सम्मेलन में। आज इस अंक को लेकर आपके साथ मैं हूँ प्रोमिल,
1: और मैं हूँ दीक्षा,
0: और आप सभी को हमारा
1: नमस्कार। बहनों, देखिए, बात उस समय की है जब एक छोटी सी मशीन से निकलती हुई आवाज़ किसी के लिए सनसनी खबर बनी, है ना, किसी के लिए संगीत सुनने का मधुर जरिया बना और किसी के लिए बना अपनेपन का एक एहसास।
0: जी, और ये एहसास 1930 के दशक के भी सबसे जो ज़रूरी था वो था रेडियो की शुरुआत जब हुई थी 1930 के दशक में।
1: जी,
0: और आज के समय की भी अगर हम बात करें तो उस समय जो ट्रेडिशनल रेडियो से वो अब मोबाइल ऐप या रेडियो ऐप के द्वारा हमारे दर्शकों तक, हमारे श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं।
1: जी, और ये जो एहसास है, कहने का मतलब ये है बहनों, ये एहसास 1930 से लेकर आज तक के दशक के बने हुए हैं, है ना प्रोमिल
0: जी।
1: और बहनों, रेडियो सिर्फ एक यंत्र नहीं है, एक मशीन ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा साथी है जिसने समय के साथ साथ हमारे जीवन के हर पहलू को छुआ है।
0: जी, और 1930 से शुरू हुआ ये सफ़र आज भी उतना ही जीवंत है और आज भी उतना ही प्रासंगिक भी है, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जब टीवी नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तब रेडियो ही था जो हर घर की धड़कन था। और देखें, अगर हम तो महिलाओं की बात करें तो रेडियो ने हमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं दिया बल्कि हमें दी जानकारी, शिक्षा और आत्मविश्वास।
0: जी, और कभी रसोई में काम करते हुए तो कभी दोपहर की फुर्सत में या फिर शाम की शांति में रेडियो ने हमें अकेला महसूस होने ही नहीं दिया कभी भी, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ना, रेडियो ने समाज में बदलाव भी तो लाया है, है ना प्रोमिल?
0: बिल्कुल लाया है।
1: महिला सशक्तिकरण के संदेश, स्वास्थ्य और शिक्षा की जानकारियां, और आज के इस डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं।
0: जी, और आज की अगर आप बात करें ना दीक्षा, तो आज भी लोगों में रेडियो का जो क्रेज है ना, जो शौक है उन्हें सुनने का, वो उतना ही है जैसे उस टाइम पे था।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल। और ये जो अब डिजिटल युग में जो हम मोबाइल ऐप तक पहुंच गए हैं, इसने तो और भी ज्यादा आसान बना दिया है रेडियो को सुनना, और ये क्रेज अभी भी वैसा ही बना हुआ है।
0: जी, और आपने ये बात बिल्कुल सही की कि आज के इस भागते हुए समय में ना, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में भी रेडियो की सादगी और जो सच्चाई है वो दिलों को छू जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: और इस पर तो जो भरोसा 90 साल पहले था वो आज भी बना हुआ है।
1: बिल्कुल। और इन 90 वर्षों में रेडियो ने गांव से लेकर शहर तक हर वर्ग, हर उम्र और हर महिला को जोड़ा है। तो देखो प्रोमिल, ये खास मौका है हमारे लिए कि हम अपने साथी रेडियो को 90 वर्षों के इस भव्य सफर के लिए मुबारकबाद दें और इसके अपनेपन के लिए इसे धन्यवाद कहें।
0: बिल्कुल। और देखिए, रेडियो ने 90 वर्षों के सफर में ना जाने कितनी कहानियां सुनाई होगी, है ना, कितने सपनों को उड़ान दी।
1: जी।
0: और हर मुश्किल वक्त में ये हमारे साथ भी खड़ा रहा है।
1: बिल्कुल, इसीलिए ही तो कहते हैं कि रेडियो सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है।
0: और ये माध्यम जिसके जरिए हम अपनी बहनों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं ना, ये इन सभी चीज़ों को खास बना देता है। तो क्यों ना अब बहनों को और खास होने का एहसास करवाते हैं और उन्हें सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: देखिए बहनों, हर महिला के जीवन में कुछ शारीरिक बदलावों का होना लगभग तय होता है। क्यों प्रॉमिल?
1: जी
0: जैसे
1: बिल्कुल,
0: किशोरावस्था आती है, उस समय महावारी का आना होता है, और 45 से 55 की उम्र के आसपास, वो 40 से भी शुरू हो सकती है, 60 तक भी जा सकती है, इस उम्र के आसपास रजो निवृत्ति का होना भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।
1: जी तो बहनों, रजोनिवृत्ति का मतलब है कि एक महिला को मासिक धर्म या फिर पीरियड्स का बंद हो जाना है ना,
0: जी
1: और 1 साल तक अगर पीरियड्स ना होने पर इसे हम रजोनिवृत्ति भी मानना मान सकते हैं कि पीरियड्स अब बंद हो चुके
0: जी
1: हैं।
0: और किसी किसी महिला में ये एकदम से हो जाता है, और किसी किसी महिला में रुक रुक कर, है ना, थोड़ी सी मासिक धर्म की अवधि बढ़ने लग जाती है, फिर होता है। पर कैसे भी हो, लेकिन ये सभी के साथ होता ही है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।
1: जी, और इस समय शरीर में कई बदलावों का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिन्हें समझना भी ज़रूरी होता है,
0: जी
1: क्योंकि इस दौरान क्या होता है ना कि हमारे शरीर में कई हार्मोनल्स जो है वो बदलते हैं, और इन बदलावों की वजह से हमें कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना
0: बिल्कुल
1: पड़ता है।
0: बिल्कुल, इस दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स जो हमारे शरीर में होते हैं, इसका उत्पादन बहुत कम होने लगता है, जिसकी वजह से महिलाओं में बहुत से लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि तनाव में वो रहने लग जाती हैं, चिंता, थकान, और सबसे बड़ा लक्षण हॉट फ्लैशेस का आना, यानी कि अचानक से गर्मी का अनुभव होता है।
1: जी, और देखिए जब ये महिलाओं को आता है ना, तो उन्हें समझ नहीं आता कि हमें
0: क्या
1: क्या हो
0: हो
1: रहा
0: रहा
1: है,
0: है?
1: क्योंकि एकदम से वो खुश होती है, एकदम से थोड़ा सा चिंता में आ जाती है, एकदम से उन्हें गर्मी आती है, स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो जाता है,
0: जी
1: तो ये सारी समस्याएं हार्मोनल चेंज की
0: चेंजेस
1: वजह
0: की
1: से
0: वजह
1: हो
0: से,
1: जाती है।
0: जी बिल्कुल। और हमारी बहनें भी, कई बहनें इस समस्या से, या हम कहेंगे इस स्टेज से गुजर रही होंगी, है ना, और कुछ ऐसी हैं जो इसके आसपास हैं। तो ऐसे में बहनों, ये सब चीज़ें जो हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। मूड स्विंग्स होने के साथ साथ हड्डियों की कमज़ोरी भी बढ़ जाती है, और किसी किसी का वज़न भी बढ़ सकता है।
1: जी बिल्कुल,
0: यानी कि जो रजोनिवृत्ति का समय है, इस दौरान केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक बदलाव भी होने लगते हैं।
1: जी, और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो इससे
0: जी
1: हमें किसी भी तनाव में नहीं आना चाहिए कि हमें ये क्या
0: क्या
1: हो
0: हो
1: रहा
0: रहा
1: है
0: है?
1: ना।
0: जी
1: तो और इन बदलावों को समझकर अपनी सेहत का ख्याल रखना हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये सभी के साथ होता है, तो ये ना समझे कि सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है ना,
0: जी
1: और इन बदलावों के कारण होने वाली कई समस्याएं होती है, तो उनसे कैसे निपटना है अगर आप ये जान लेना, तो अपने जीवन में आप खुश रहेंगी और तनाव से भी थोड़ी दूर रहेंगी।
0: जी बिल्कुल सही कहा प्रॉमिल। एक और देखिए, जहाँ दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं, वहीं समय रहते अगर हम योग की सहायता ले लेना, तो इन लक्षणों से और इन परेशानियों से हम कई हद तक बच सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और देखिए आपने योग की बात की ना दीक्षा, तो योग बहुत सारी समस्याओं को, ये बोलूँ कि एक दवाई का काम करता है
0: बिल्कुल
1: ना। तो योग, अगर आप जैसे आप रजोनिवृत्ति के दौर से गुजर रही है, आपको बहुत दर्द भी है, तनाव भी है, आपके मूड स्विंग्स भी हो रहा है,
0: जी
1: इस दौरान अगर आप योग का सहारा लेती है ना, तो आपके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो रही है या फिर जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो आप इन समस्याओं को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं योग के द्वारा।
0: बिल्कुल। और बहनों, होता क्या है, क्योंकि जब हम 40 से ऊपर और 60 के करीब पहुंचते हैं, तो वैसे भी उम्र बढ़ने के साथ होने वाली समस्याएं भी होने लग जाती हैं। तो ऐसे में योग जो है वो दो तरीके से हमारे शरीर की रक्षा करता है। एक तो रजोनिवृत्ति से भी हमें थोड़ा उसकी परेशानियां झेलने में भी हमारी मदद करता है, दूसरा उम्र के साथ होने वाले जो शरीर के बदलाव हैं, शरीर की ऐंठन है, मांसपेशियाँ अकड़ जाती हैं ना, उसमें भी हमें बहुत हद तक फ़ायदेमंद।

0: रहता है योग
1: जी बिल्कुल। और देखिए योग की कई अलग अलग शैलियाँ भी हैं और अनगिनत आसन मौजूद है, और अगर आप चाहे तो अगर आपको योग का अच्छा अनुभव है ना
0: जी,
1: तो आप ये कहेंगे कि रजोनिवृत्ति के लक्षणों में आप राहत पाने के लिए योग को ज़रूर उपयोग करें, है ना। और ये आपके लिए बहुत आसान भी है, और ऐसे नहीं कि आसन बहुत ही मुश्किल करें आप, बेसिक से आसनों से स्टार्ट करें और इसे आप आगे जो थोड़े टफ आसन है या जो मुश्किल है वहाँ तक ले जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हमेशा आसान आसन ही करें।
0: बिल्कुल, जैसे कि सुखासन है, ताड़ासन है, सर्वांगासन है, इनको आप जब करेंगे तो आपको खुद भी महसूस होगा कि आपका शरीर, आपका मन जो है वो थोड़ा सा शांत हो गया है। बस ये ध्यान रखें कि आसनों को करते हुए अगर आपको कभी असहज महसूस हो तो ना करें, लेकिन आसान आसनों को आप धीरे धीरे ज़रूर शुरू करें, धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएं।
1: जी तो बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आप योगासनों को अपनी दिनचर्या में शामिल ज़रूर करेंगी और अपने जीवन के हर मुश्किल समय में इसको सुखमय बनाने में योग का सहारा ज़रूर लेंगी।
0: जी।

0: बहनों, खाना बनाना एक अद्भुत कला है। और देखिए, हमारी बहनें हर रोज़ अपने परिवार को अलग अलग तरह का खाना खिलाना पसंद भी करती है, और इन सभी के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि दीक्षा, देखिए, हमारी, हम बोले तो हमारी भी टेंशन है कि सुबह क्या बनाए, दिन को क्या बनाए, रात को क्या बनाए, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो अगर खाना ऐसा हो कि जो मौसम के अनुसार हो, यानी कि ठंडी के मौसम में हम कुछ गर्मा गर्म चीज़ें खाएं, जिससे हमें गर्मी भी महसूस हो और शरीर को ऊर्जा भी मिले
1: जी।
0: और इसी तरह अगर हम गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी चीज़ें खाना हमें अच्छा लगता है ना, तो क्यों ना बहनों को आज एक ऐसी ही रेसिपी हम बताते हैं जिसका सेवन हम गर्मियों के मौसम में करते हैं।
1: जी, अब देखिए प्रॉमिल, गर्मियों में ठंडा खाने के लिए बहुत मन करता है, लेकिन हर बार हम आइसक्रीम और कुल्फियाँ नहीं खा सकते
0: जी,
1: हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे में बहनों, किचन में हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हेल्दी भी हो, साथ में शरीर को अंदर से ठंडक पहुँचाए। ऐसी एक रेसिपी जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है कर्ड राइस की रेसिपी,
0: यानी दही वाले चावल।
1: जी, गर्मियों के मौसम के लिए एक बहुत बढ़िया रेसिपी है, पेट के लिए अच्छी है। इसको बनाने के लिए जो सामग्री है बहनों, आपको चाहिए चावल 1 कप, ताज़ा दही चाहिए 2 कप, मत लीजिए उसको आप, घी या तेल चाहिए आपको 1 या 2 टेबलस्पून, हरा धनिया चाहिए आपको, हींग चुटकी भर हींग चाहिए, ज़ीरा आप ले सकते हैं 1/2 छोटा चम्मच, राई या फिर काली सरसों 1 चम्मच
0: जी, और इसके साथ ही आप उड़द की दाल जो दली हुई होती है वो, या दालचीनी की दाल भी ले सकते हैं 1/2 छोटी चम्मच
1: जी।
0: आप कड़ी पत्ता 10 से 12 उसकी पत्ते ले लीजिए, और साथ ही आपको हरी मिर्च चाहिए बारीक कटी हुई। आप हरी मिर्च तभी डालें अगर आप खाते हैं, अगर नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं
1: जी,
0: है ना? और नमक स्वादानुसार जैसा आप खाना पसंद करते हैं
1: जी बहनों। और इसे बनाना आसान भी है, झटपट से तैयार भी हो जाएगा, साथ में पसंद भी हर किसी को आ जाता है। इसे बनाने के लिए आप चावल को साफ करके 1/2 घंटे के लिए पहले भिगो दे, और उसके बाद उसको कुकर में डालकर आप पका लीजिए। भिगोने का सिर्फ एक तरीका इसलिए हम कर रहे हैं ताकि चावल सॉफ्ट बने, क्योंकि दही चावल बनाने के लिए हमें अच्छे से पके हुए और सॉफ्ट से चावल चाहिए
0: जी। अब पके हुए चावलों को बहनों आप एक बड़े बाउल में या किसी भी बर्तन में निकाल दीजिए। अब आप क्या कीजिए कि एक पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी डालकर उसको गर्म करें, उसमें राई, जीरा और जो उड़द की दाल है, या फिर आप दालचीनी की दाल ले रहे हो या फिर मूंगफली ले रहे हो
1: जी,
0: उसको आप ब्राउन होने तक उसको सेके अच्छे से। अब इसमें आप कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और हींग डालकर चावल में डालने के लिए तड़का तैयार कर दीजिए, इस तरह का, है ना?
1: जी जी। और आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकती हैं तड़के में, अगर आपको और ज़्यादा खुशबू या मिर्ची वाला खाना पसंद है तो। और बस अब आपको क्या करना है, जो चावल पैन, जो आपने चावल बाउल में लिए थे, उसमें आप दही मिक्स कर दीजिए, नमक डाल दीजिए और हरा धनिया डालकर मिक्स कर दीजिए, और इसके ऊपर से इस पर डालिए आप वो तैयार किया हुआ तड़का, जो खुशबू से इसको भर देगा और स्वाद दे देगा चावल में
0: जी। और इस तरह से चावल अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको गर्मा गर्म तो नहीं होंगे, ये ठंडे ठंडे चावल होंगे, इसको आप सर्व कर सकते हैं और खाने के लिए दे सकते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह के जो चावल हम बनाते हैं ना, जो कर्ड राइस या दही वाले जो चावल है, गर्मियों के मौसम में बहुत फायदेमंद होते हैं सेहत के लिए भी खाना इसको, दीक्षा।
1: जी जी। और इसमें क्योंकि बैक्टीरिया, जो हमारे पे गुड बैक्टीरिया आ जाते हैं दही के द्वारा, इसमें ये हमारी एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं को ठीक करता है। गट हेल्थ के लिए, यानी कि पेट के स्वास्थ्य के लिए, ये दही चावल जो है वो बहुत अच्छे रहते
0: जी।
1: हैं
0: जी। और देखिए, दही चावल की हम बात करें

0: तो घर में ये हम लोग तो गाते हैं, लेकिन घर के बुजुर्गों को या बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें इस रेसिपी को जरूर अपने किचन में बनाएंगे और अपने परिवार वालों को खिलाएंगे, है ना?
1: जी बिल्कुल।

0: बहनों देखिए, जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो कई बार हमें कुछ ऐसे टिप्स या देखिए ट्रिक्स चाहिए होते हैं जिससे हमारा खाना जल्दी भी बने
1: जी
0: और स्वाद भी उसका बरकरार रहे, है
1: बिल्कुल,
0: ना?
1: और साथ में जो पोषण है उसमें भी कोई कमी ना हो। तो ऐसे ही कुछ किचन टिप्स बहनों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कुछ भी तलने से पहले गरम तेल में अगर थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो इससे तेल की नमी सोख ली जाती है और जो तेल है उसके छींटे तलते समय बाहर नहीं आते हैं।
0: जी, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जब हम कुछ भी गर्म तेल में डालते हैं तो उसके छींटे लग जाते हैं कई बार, है ना?
1: जी,
0: तो इसके साथ ही देखिए, जब भी हम सब्जियों को उबालते हैं तो उबालते समय अगर हम पानी में थोड़ा सा नमक और चीनी मिला देना, तो इससे क्या होता है, जो सब्जियों का हमारे प्राकृतिक रंग है वो बरकरार रहता है, यानी कि हमारी सब्जियाँ हरी रहेगी।
1: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी टिप्स है बहनों, क्योंकि इसको सीधी सी बात है, अगर हमने कुछ ऐसी चीज़ बनाई है जिसमें हम चाहते हैं कि उसका हरापन बना रहे, तो ये करके हम बढ़िया उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं।
0: जी,
1: और प्याज काटते समय देखो, मेरी तो आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं प्रोमिल।
0: तो दीक्षा, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ कि
1: हाँ,
0: आप क्या करें, कि जब भी आप प्याज काट रही हो और आपकी आंखों में आंसू आए, तो आप प्याज काटने से के लिए क्या करें, उसके बाद उसको काटने के बाद कुछ देर ठंडे पानी में भिगो कर रख दे, है ना? और
1: जी
0: जब आप उसके बाद उसको काटेगी ना, तो आपकी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे।
1: जी ये बहुत बढ़िया किचन टिप है बहनों, आप भी इसको ज़रूर करके देखिए। और इसी तरीके से लहसुन की कलियों को भी जब हमें जल्दी जल्दी छीलना हो तो उसे भी कुछ देर के लिए पहले हल्के गर्म पानी में भिगो दें। उसके बाद जब आप उन्हें छीलने लगेंगे तो उसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना लहसुन के छिलकों को निकालने के लिए।
0: बिल्कुल। और देखिए, इसके साथ भी जब आप सब्जी की ग्रेवी बना रही हो और अगर आपकी ग्रेवी वो पतली हो जाए, तो आप क्या करें कि थोड़ी हुई मूंगफली को भूने या फिर काजू का पेस्ट बनाकर अगर आप उसमें मिलाती है ना, तो आपकी जो सब्जी की ग्रेवी हो गाढ़ी बनेगी और उसका स्वाद भी बढ़ेगा।
1: बिल्कुल, और लोहे की कढ़ाई हम बहुत इस्तेमाल करते हैं किचन में, और आजकल का ट्रेंड भी है कि लोहे की कढ़ाई को हम इस्तेमाल करें। उससे हमें एक तो खाने में आयरन भी मिल जाता है, साथ में खाना भी अच्छे से जल्दी पक जाता है। लेकिन लोहे की कढ़ाई में एक समस्या है कि धोकर एकदम से उसमें अगले दिन के लिए जंग लग जाती है।
0: जी,
1: तो उससे बचने के लिए बहनों, धोने के बाद उस कढ़ाई पर हल्का सा तेल लगाकर आप रखें तो वो जंग नहीं लगेगी उसमें।
0: जी, और इसके साथ ही एक खास समस्या जो आजकल, अब जैसे बारिशें होनी शुरू हो गई है, तो बरसात जो आने वाली है उसमें समस्या फ्रिज में होती है कि उसमें एक अजीब सी, मैं क्या कह रही, कि दुर्गंध सी आनी शुरू हो जाती है ना। तो बहनों, अगर आपके फ्रिज में भी ऐसा हो रहा हो, तो आप क्या करें कि एक छोटी कटोरी में बेकिंग सोडा या फिर आप नींबू को काट कर रख दे और उसे मतलब फ्रिज में ही रहने दे कुछ दिनों के लिए, और फ्रिज बंद करके रखेंगे, तो जब भी आप खोलेंगे ना, तो वो अजीब सी दुर्गंध या जो भी समस्या आ रही थी, वो वैसी कोई भी समस्या
1: नहीं आएगी। बिल्कुल, और इसी तरीके से आजकल घर के अंदर हमें फूल पौधे लगाने का बहुत शौक है प्रोमिल, है ना, और घर से बाहर भी बहुत सारी बहनों ने बहुत सुंदर किचन गार्डन तैयार किया होगा।
0: बिल्कुल,
1: उस किचन गार्डन के लिए बहनों जो खाद है उसके लिए एक बहुत अच्छी आपको टिप दे रहे हैं। जब आप अपने सब्जियों के लिए प्याज काटती हैं, लहसुन काटती हैं, या फिर सब्जियों के छिलके और कुछ फलों के छिलके जैसे केले का छिलका, तो आप इन सबको पानी में उबालकर ठंडा कर लें, या इसको किसी बर्तन में पानी में रखें, गर्मी में रख दें, धूप में रख दीजिए, फिर इसको आप पौधों में डाल सकती हैं इस पानी को, और ये जो पानी है ये बेहतरीन जैविक खाद का काम करता है।
0: जी, तो देखिए, बहुत सारे टिप्स होते हैं जो हम किचन में काम करते वक्त इस्तेमाल

0: तो बहनों, हम यही उम्मीद करते हैं कि जीवन की राहें चाहे कितनी भी ऊंची और नीची हों, लेकिन आप हंसते मुस्कुराते इन राहों पर आगे बढ़ती जाएं।
1: जी,
0: तो अब कार्यक्रम का समय भी हो चला है, दीजिए हमें अनुमति।
2: नमस्कार, नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम महिला सम्मेलन, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: साथ में विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने

आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आपने ट्यून किया है 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, नाम है एफएम शिमला। जब मौसम है सुहाना, हवाओं में एक नया तराना, और ऐसे में वक्त हो चला है एक ऐसे सफर पर निकलने का जहाँ रास्ते आपके पसंदीदा गानों से सजते और मंजिल भी मिलती है उन्हीं गानों पर। जी अलका ठाकुर के साथ चलिए इस सफर पर और फिल्म संगीत। जी हाँ, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

ये जीने मरने की कसम अब खा लिए हमने साथ तुम्हारे, और हर पल बस तुम्हारा जिक्र होंठों पर हमारे रहता है। ये शाम ये सुबह हर पल बस नाम तुम्हारा लेते हैं, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। पुलिस और मुजरिम, इस फिल्म का गीत आपने सुना आवाजें उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की, अनजान के बोल बप्पी लहरी का संगीत। आप सुन रहे फिल्म संगीत एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

लफ्जों की जरूरत नहीं होती सच्चे मोहब्बत में, धड़कनें ही कह देती हैं जो जुबां तक नहीं आता। एक नज़र का मिलना ही काफ़ी होता है अक्सर, और जो दिल में बस जाए वो कभी भुलाया नहीं जाता। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं FM शिमला के साथ।

दिल के समंदर में आज सिर्फ तेरी ही लहरें हैं, हम तेरे इश्क के रंग में कुछ इस कदर गहरे हैं। सबसे बड़ा खिलाड़ी इस फिल्म का गीत आपने सुना, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

ये नैना इतने खूबसूरत के बस दिल दीवाना हो गया है, और गहराई इनकी इतनी कि ये दीवाना दिल इनमें खो गया। जी हाँ, ये नैना सारी भेद खोल दिया करते हैं, तो उनसे कहिएगा जरा बच के रहना साजन, ये दिल के भेद सभी खोल देंगे, ये नैना बस झूठे हुआ करते हैं। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं फिल्म शिमला के साथ।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं।
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: इस वक्त आप हमारे साथ और सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
2: अच्छा, इसमें क्या होगा?
1: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
2: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
2: अच्छा,
1: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

हर रंग में छुपा एक अफसाना है, इस कार्यक्रम का हर शख्स दीवाना है। समेट के लाए हैं हम आपके लिए खुशियों भरा ये कार्यक्रम, सजने वाला है सब रंग का तराना। जी एफएम शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम शिमला पर लेकर आए हैं कार्यक्रम, नाम है जिसका सब रंग। सब रंग कार्यक्रम की शुरुआत इस सूफी कलाम के साथ, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

वक्त की धुन में यादों के झरोके नहीं छिपते, जो दिल के करीब हों वो फासले नहीं मिटते। गुजर जाते हैं दिन और बदल जाते हैं मौसम, मगर जो दिल पर छप जाए वो अक्स नहीं।

0: इसी गीत के साथ बस सबरंग कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 2:15 होने को है। दोपहर हिंदी समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट

0: चरण में प्रवेश किया और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियाँ आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीक चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर

0: दिए जाने चाहिए।
1: The global south should be enabled.
2: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फॉरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
4: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
3: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा

0: समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। जी, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने FM शिमला पर। और FM शिमला पर आपके लिए लेकर आए हैं वो कार्यक्रम जहां पहाड़ों की रूह बसती है, यानी आपका अपना कार्यक्रम शिखरों के स्वर। और कार्यक्रम की शुरुआत इस लोकगीत के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बिना शोर शराबे के जो दिल को छू जाए वो हमारा लोक संगीत है। इनमें अपनों का प्यार और ऊंचे शिखरों की रीत है। और जब भी बजती है कोई पहाड़ी धुन, घर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। इन गीतों के शब्दों में ही तो हमारे गांव की मिट्टी की खुशबू समाई है। बिमला देवी की आवाज़ में ये लोकगीत आपने सुना। आइए अब सुनते हैं रीना ठाकुर और रविंदर वर्मा की आवाज़ में अगला लोकगीत।

इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं शिखरों के स्वर कार्यक्रम में इन लोकगीतों का। घनानंद पांडे की आवाज में ये लोकगीत आपने सुना। आइए अब सुनते हैं करनैल राणा को।

ये लोकगीत आपने सुना लायक राम शर्मा और साथियों की आवाज में। आइए अब सुनते हैं एक पहाड़ी भजन, आवाजें आशा कंवर, रोशनी शर्मा, तारा देवी और वनीता की।

0: इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम शिखरों के स्वर में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। 3 बजने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है, ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। मंत्रालय ने कहा कि संशोधित प्रावधानों के तहत मादक औषधि व मनोरोग पदार्थ NDPS अधिनियम 1985 के अंतर्गत आने वाले सभी टीके, रोगाणुरोधी मादक और मनोरोगी दवाएं शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि सभी कैंसर रोधी दवाओं को औषधि नियम 1945 की अनुसूची H2 में

0: में शामिल किया गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय करार दिया है। धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान देशवासियों के मौलिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया था। परमार ने कहा कि आपातकाल का दौर केवल इतिहास को याद करने के लिए नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के प्रति समाज को सजग बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।
1: भारतीय जनता पार्टी आज के दिन संविधान हत्या दिवस 25 जून को मना रही है। मैं ऐसे सत्याग्रहियों को या लोकतंत्र के प्रहारियों को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इस देश में अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और आज जो ये संविधान हत्या दिवस है, ये वर्तमान पीढ़ी को भी समझाने के लिए और आने वाली पीढ़ी को भी समझाने के लिए बहुत जरूरी है।
0: प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर चुनावी वायदे पूरे न करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता अखिलेश कपूर ने आज कुल्लू से जारी एक बयान में कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वायदा किया था, लेकिन करीब 4 वर्ष बाद भी इस वायदे को धरातल पर नहीं उतारा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुफ्त बिजली देने की बजाय कांग्रेस सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं पर फ्यूल चार्ज और मिल्क सेस सहित अन्य अतिरिक्त शुल्कों का बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लाखों परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हुआ है और जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आगामी 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। इसका उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को सम्मानित और प्रोत्साहित करना है। शिमला जिला प्रशासन ने मॉनसून सीजन के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारी कर दी है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आज शिमला में एक बैठक में बताया कि बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के तहत राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों, पुलों, जल निकासी प्रणालियों और बाढ़ सुरक्षा संरचनाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा संवेदनशील सड़क मार्गों की पहचान कर आवश्यक मरम्मत व रखरखाव कार्य समय रहते पूरे किए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से भी मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करने, अनावश्यक यात्राओं से बचने और भूस्खलन व बाढ़ संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर कल 26 जून को प्रदेश में एंटी चिट्टा डे के रूप में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य नशे, विशेषकर चिट्टे के बढ़ते खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसी कड़ी में ऊना जिले में भी नशे के विरुद्ध विशेष जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी नशे के खिलाफ शपथ लेकर समाज से चिट्टे व अन्य मादक पदार्थों के उन्मूलन का सामूहिक संकल्प लेंगे। इस बीच भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना में आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत संवाद सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नशा मुक्त समाज के महत्व पर बल दिया गया और प्रतिभागियों को अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान के प्रेरक बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया जिसमें प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण में व्यक्ति, शैक्षणिक संस्थानों और सरकार की भूमिका पर चर्चा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आकाशवाणी शिमला से लीजिए प्रस्तुत है सिरमौर जिले की चिट्ठी। लेखक हैं सतीश कुमार, वाचिका पूनम शर्मा।
0: सांसद सुरेश कश्यप ने देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए बो स्ट्रिंग पुल का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। पुल के शुरू होने के साथ ही वर्षों से प्रतीक्षित परियोजना का सपना साकार हो गया है। सांसद सुरेश कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि पुल के शुरू होने से

वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। नए पुल से यातायात अधिक सुगम होगा, लगभग 300 मीटर की दूरी कम होगी और कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र, पांवटा साहिब, अंबाला, चंडीगढ़ और देहरादून के बीच माल व यात्री परिवहन को सीधा लाभ मिलेगा। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि 28 जून को जिला सिरमौर में पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष आयु वर्ग के 61,181 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए ज़िले में 538 पोलियो बूथ स्थापित किए जाएंगे। जो बच्चे अभियान के दिन छूट जाएंगे उन्हें 29 और 30 जून को घर घर जाकर दवा पिलाई

0: पांच वर्ष आयु वर्ग के 61,181 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए जिले में 538 पोलियो बूथ स्थापित किए जाएंगे। जो बच्चे अभियान के दिन छूट जाएंगे उन्हें 29 और 30 जून को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। हरिपुरधार क्षेत्र में लहसुन के बाजार भाव किसानों के लिए उत्साहजनक हैं और कीमतें 70 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच रही हैं, लेकिन सिंचाई सुविधाओं के अभाव में किसान इस अवसर का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। किसान सरकार से स्थायी सिंचाई योजनाएं विकसित करने की मांग कर रहे हैं ताकि बेहतर उत्पादन के साथ उन्हें बाजार में अच्छे दामों का लाभ मिल सके। गोरक्षनाथ राजकीय संस्कृत कॉलेज नाहन की छात्रा नाजिया ने शास्त्री अंतिम वर्ष की परीक्षा में पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त कर मिसाल कायम की है। पांवटा साहिब क्षेत्र के एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाली नाजिया ने 1000 में से 785 अंक प्राप्त किए हैं। संस्कृत विषय में उनकी इस उपलब्धि को गंगा जमुनी संस्कृति और शिक्षा के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी सिरमौर ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय धमून को तीसरी बार स्वच्छ और हरित विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विद्यालय ने देशभर में 191 चयनित विद्यालयों में 14वां स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि स्वच्छता, जल संरक्षण, हरित परिसर निर्माण और पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों का परिणाम है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। मेडिकल कॉलेज नाहन को 17 असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद प्राप्त हुए हैं। विधायक अजय सोलंकी ने इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। विशेष रूप से हृदय रोग विशेषज्ञ की सुविधा शुरू होने से जिले के लोगों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार डॉक्टर जोगिंद्र हब्बी का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए किया गया है। पिछले 3 दशकों से वे हिमाचल की लोक कला और लोक नृत्य परंपराओं के संरक्षण व संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनके प्रयासों से ठोडा, हाटी नाटी और अन्य विलुप्त प्राय लोक विधाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नई पहचान मिली है। ऐतिहासिक शिरगुल देवता बैसाखी मेले को प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान किया है। लगभग 7 दशक पुराने इस मेले को राज्य स्तरीय मान्यता मिलने से धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि विभाग के अनुसार जिले में इस वर्ष गेहूं खरीद प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। 640 किसानों से कुल 19,777 क्विंटल गेहूं खरीदा गया। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल पर किसानों को उनकी उपज का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा चुका है। गिरिपार क्षेत्र के गेहल गांव में 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मां बिजाई का छाई पालकी जागरण आयोजित किया गया। इस धार्मिक आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सैकड़ों श्रद्धालु लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलकर जागरण स्थल पहुंचे। पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का वातावरण देखने को मिला।
1: सिरमौर जिले की चिट्ठी आकाशवाणी शिमला से प्रसारित की जा रही थी। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। इस वक्त आप है हमारे साथ और सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। जी कुछ बातें हैं जो पुरानी होकर भी भुलाई नहीं जाती, कुछ धुनें ऐसी हैं जो दिल से मिटाई नहीं जाती। ये पुराने गाने ही हैं जनाब, जिनके खनक सुने बिना कोई कार्यक्रम, कोई महफिल सजाए नहीं जाते। ओल्ड हिट्स लेकर आ गए हैं आपके लिए। ओल्ड हिट्स की शुरुआत इस गीत के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुराने गाने दिल की उस धड़कन की तरह हैं जो शांत तो है पर जिनके बिना जिंदगी मुमकिन नहीं। चिराग फिल्म का ये गीत आपने सुना, आवाज मोहम्मद रफी की। इस गीत को लिखा मजरू ने, संगीत दिया मदन मोहन ने।

बातों से मीठी मीठी मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी

meet

0: सितारा चंदा से प्यारा करना जा हमें कोई काम बड़ा।
1: हिंदुस्तान की शान बनूंगा, देश का ऊंचा नाम करूंगा।
2: शाबाश।

कैदी नंबर 911। इस फिल्म का गीत आपने सुना, आवाजें लता मंगेशकर और डेजी ईरानी की, हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम का संगीत। आप सुन रहे ओल्ड हिट्स एफएम शिमला के साथ।

गुम सुम क्यों खड़ी, सोच है तुझको क्या पड़ी। गुम सुम क्यों खड़ी, सोच है तुझको क्या पड़ी। लाया हूँ एक दिल ले न ले, मुँह से यसिया नो तो दे। ओ बोल बोल बोल बोल माई लिटिल डव, दिल मेरा पूछता है होम डू यू लव। मुझसे जो प्यार है तो देन प्लीज टेल, बाजेगी किस दिन वेडिंग बेल। प्लीज टेल मी शीला।

0: मेहरबान और न कोई मुझे हांस ले, अच्छा है तू ही चांस ले। लला लला लला लला ला, बोल बोल बोल बोल माय लिटिल डव, दिल मेरा पूछता है।
1: वक्त की धूल भी इनका कुछ बिगाड़ न सकी, ये वो चनाग है जो हर दौर में रोशन रहे। बाप बेटे फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।
2: रॉक रॉक रॉक बेबी रॉक।

0: என்ன சொன்னாதான் வாப்பை வாப்பை வா வாப்பை வா வாப்பை வா.
1: सुजाता फिल्म के इसी गीत के साथ यहीं समेट रहे हैं ओल्ड हिट्स को. इस वक्त आप सुन रहे हैं पहाड़ों की धड़कन एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और एफएम शिमला पर. लीजिए अब पेश है आप सभी का पसंदीदा युववाणी कार्यक्रम.

नमस्कार, इस समय आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला, कार्यक्रम युववाणी। और आज इस कार्यक्रम में मैं अक्षत आंगिरस आपके साथ। युवा साथियों, आज के इस युववाणी कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आधुनिक दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज भी किया जा रहा है। वो टॉपिक है नैतिक मूल्य, यानी कि मॉरल वैल्यूज़। युवा साथियों, आज के कंपीटिंग वर्ल्ड में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, और यही कारण है कि हमारा माइंडसेट ज़्यादातर लग्जरी लाइफस्टाइल और वेल्थ से इन्फ्लुएंस रहता है। लेकिन इन सबको पाने की होड़ में एक बहुत ज़रूरी ह्यूमन करेक्टरिस्टिक को हम भूल जाते हैं, और वो है मॉरल वैल्यूज़। युवा दोस्तों, रियलिटी में केवल धन प्रसिद्धि किसी को बेहतर इंसान नहीं बनाती। आखिर सर्वाइवल के लिए हर जीव जोर लगाता है। एक पक्षी अपने लिए भोजन जुटाता है, एक पशु भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है,

अगर अपने लिए जीना ही उत्कृष्टता का प्रमाण होता तो फिर अन्य जीवों और इंसानों में कोई अंतर ना होता। हमारी सोच, हमारी संवेदनशीलता, हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के बारे में सोच पाने की क्षमता ही हमें एक सच्चा इंसान बनाती है। जब हम अपने ईगो को थोड़ा पीछे रखकर किसी और की मदद करते हैं, जब हम सच का साथ देते हैं, जब हम सही काम करते हैं भले ही कोई हमें देख रहा हो या नहीं, वहीं से मोरालिटी की शुरुआत होती है और यही नैतिक मूल्य भी है। तो आइए इन शब्दों के साथ सुनवाते हैं हम आपको आज के कार्यक्रम का पहला गीत।

किसी के ना आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर।

दोस्तों, मोरालिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक दिन में सीखा जा सके। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे पढ़कर याद कर लिया जाए। मॉरल वैल्यूज़ धीरे धीरे हमारे करैक्टर का हिस्सा बनते हैं, और करैक्टर का निर्माण सबसे अधिक युवा अवस्था में होता है। युवा जीवन केवल करियर बनाने का नहीं, बल्कि करैक्टर बनाने का समय भी है। इस दौर में हम जो आदतें अपनाते हैं, जिन मूल्यों को अपने जीवन में जगह देते हैं, वही आगे चलकर हमारे भविष्य और हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। क्योंकि अंततः जीवन में केवल ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना हासिल किया, बल्कि ये भी मायने रखता है कि आपने ये सब हासिल करते हुए कैसा इंसान बनना चुना। और शायद यही कारण है कि नैतिकता केवल जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला आधार भी है।

युवा दोस्तों, नैतिकता केवल एक विचार नहीं बल्कि एक बेहतर समाज की नींव है। किसी भी देश या समाज की प्रगति की शुरुआत एक बेहतर इंसान से होती है, और एक इंसान तब बेहतर बनता है जब वो अपने राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ को भी समझता है। जब हम सच बोलते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब हम केवल अपना नहीं बल्कि पूरे भविष्य का जीवन संवारते हैं। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देश में से एक है। ऐसे में अगर युवा अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाएं, तो वे ना केवल अपनी पहचान बनाएंगे बल्कि एक सशक्त और विकसित राष्ट्र के निर्माण में योगदान देंगे। याद रखिए, बदलाव हमेशा समाज से नहीं बल्कि एक व्यक्ति से शुरू होता है, और जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसके साथ साथ पूरा समाज बदलने की क्षमता रखता है। तो आइए, इसी के साथ सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का नेक्स्ट सॉन्ग।

युवा साथियों, नैतिकता केवल सच बोलने तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये सिद्धांतों पर अडिग रहने का नाम भी है। इसका एक महान उदाहरण भगत सिंह थे। कहा जाता है कि अंग्रेजी सरकार ने कई बार उन्हें अपने विचारों से पीछे और दया याचिका लेने का रास्ता अपनाने का अवसर दिया। उनके सामने जीवन बचाने के कई विकल्प भी थे, लेकिन भगत सिंह ने अपने आदर्शों और विश्वासों से कभी समझौता नहीं किया। वो एक बात अच्छे से समझते थे कि बिना आदर्शों के कोई इंसान आज़ाद नहीं हो सकता, और उनके लिए आज़ादी ही सब कुछ थी। वे छोटी पर आदर्शों और साहस से भरी हुई ज़िंदगी को लंबी लेकिन अनैतिक और गुलामी से भरी हुई ज़िंदगी से बहुत ऊपर रखते थे। वो युवावस्था में ही एक बात जान गए थे कि साहस, पौरुष, नैतिकता और आदर्शवाद ही वो स्तंभ है जो एक व्यक्ति को आंसुओं और गम से दूर प्यार के एक विशाल गगन की ओर ले जाते हैं।

युवा दोस्तों, आज के समय में एक अजीब धारणा बन गई है कि जो व्यक्ति ईमानदारी की बात करता है, सच बोलता है और नैतिक मूल्यों का पालन करता है, वो शायद जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। कई बार ऐसे लोगों को कमज़ोर, साधारण या पिछड़ा हुआ समझ लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर धन, शक्ति और दिखावे का सफलता से जो व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक बड़ा प्रतीक मान लिया जाता है। ऐसा लगता है मानो केवल वही व्यक्ति सफल है जिसके पास अधिक संसाधन, अधिक प्रभाव और अधिक प्रसिद्धि है। लेकिन क्या वास्तव में सफलता का केवल इतना ही अर्थ है? दोस्तों, यदि ऐसा होता तो इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता जिन लोगों ने सिर्फ धन और सुविधा पाई। लेकिन साथियों, ऐसे कई लोग इस भूमि पर आए, लेकिन इतिहास में नाम उन्हीं ने दर्ज करवाया जिन्होंने आदर्शों और नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में सर्वोपरि समझा। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक पहचान सिर्फ उसके बैंक खाते से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र से भी होती है। तो आइए इसी भी सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

युवा दोस्तों, यदि हम इतिहास और सभ्यता की ओर देखें तो पाएंगे कि लगभग हर महान विचारधारा, हर महान परंपरा और हर शिक्षक ने मनुष्य को बेहतर इंसान बनने पर बल दिया है। चाहे गौतम बुद्ध के करुणा और माध्यम मार्ग के विचार हों या कृष्ण द्वारा कर्म और धर्म का संदेश, उनका दृश्य केवल पूजा पद्धति बताना ही नहीं था बल्कि मनुष्य को नैतिक, जिम्मेदार और संवेदनशील बनाना भी था। भारत की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक ये रही है कि यहाँ सदियों से विचार, ज्ञान और नैतिकता को महत्व दिया गया है। यदि वो भूमि जहाँ व्यक्ति के बाहरी वैभव से अधिक उसके आचरण को महत्व दिया गया है।

साथियों, नैतिकता कोई पुराना विचार नहीं है, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि समाज भी सिर्फ तभी प्रगति कर सकता है जब लोग सिर्फ सफल नहीं बल्कि अच्छे और जिम्मेदार इंसान भी हों। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने चरित्र में नैतिक मूल्यों को भी ऊंचा स्थान देंगे, मैं अक्षत आंगिरस लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, आकाशवाणी FM शिमला के संग।

0: बाज भाई वी एस एम। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं, जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 नए सैनिक स्कूल्स खड़े करना आसान काम नहीं होता। और भी कई शानदार अचीवमेंट्स और कीर्तिमान स्थापित करने वाले कर्नल वरुण बाजपेयी वीएसएम हमारे साथ हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं तीन तीन स्टैब्लिश किए हैं, तो जाहिर है हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की, और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की इंडियन आर्मी, तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी जी, मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूँ एंड आई कम फ्रॉम एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली, जिसमें कि मूलतः ज़्यादातर लोग एकेडमिक्स और उससे जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंगस्ट 3 सन्स ऑफ माई पेरेंट्स। तो घर में सभी लोगों का बेसिकली अकेडमी की तरफ रुझान ज़्यादा था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेज, इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबडी कि भाई ये कैसे। बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज एनसीसी कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लेयर्ड फॉर, आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन क्लेयर्ड फॉर कमांड डिफेंस सर्विसेज और फिर आई एम ए ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन इन टा जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है, जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं
0: जी,
1: वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं। वी हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाईलैंडर्स भी हैं, जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा पूरा,
0: मतलब पूरा वो।
1: हाँ, तो हमारा ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली जेएनके का ही है। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है। इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं जेएनके में।
0: ओके,
1: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको, जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इस तरह करते करते फौज में काफ़ी टाइम कटा है, देन आई वॉज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स। तो वहाँ से एक अकेडमी के लिए ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई।
0: यानी कि जो अकेडमी का आपका जो फैमिली का रहा, तो वापस वो
1: वापस घूम फिर के वापस
0: घूम फिर करके आया। लेकिन सर जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। उसके बाद के तो टास्क बाद में आए,
1: बिल्कुल
0: ऐसा था।
1: बिल्कुल, मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहाँ पे जिसको इसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है। अच्छा। तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे। तो जहाँ जहाँ पे यूनिट रही, जहाँ जहाँ पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहाँ वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते। अच्छा। रहे जी। तो डिफिकल्ट, इट इज इंडी डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीज़ों से।
0: अच्छा।
1: विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहाँ, जहाँ से 5-5, 6-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में। तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट टेन्योर।
0: ओके, तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
1: जी जी, देर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेज। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफ़ी टाइम रहने के बाद जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो आपकी आँखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं, तो एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीज़ें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती हैं कुछ टाइम के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ वेकेट, टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, वो बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं। ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज वो चीज़ एक थोड़ा सा उसकी अलग सैंक्टिटी होती है, बट हाँ, फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही अलग तरीके का।
0: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण बाजपेयी वीएसएम, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, और हम बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, और कब उनको वीएसएम से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें एसएमएस, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण बाजपेयी वीएसएम से, नंबर है दिल्ली का कोड 011-2342-1085, 2342-1085।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण बाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफ़ी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल इस्टेब्लिश करने में बेहद ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी,
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया?
1: जी, मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहाँ पे आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने ही सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाएँ, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा, और वहाँ पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पे हमने सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड

0: डोनेट किया था, उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहाँ पे।
1: अच्छा,
0: सो एक बार एक तो एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम
1: सबको
0: किया।
1: साथ में लेकर
0: शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अफसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वाज अ गुडविल विच वाज एस्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे मतलब उन्हीं के बेंचेस उन्हीं की वो टेबल तक आई। बट इट वाज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में। और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
1: अच्छा।
0: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं।
1: अच्छा।
0: तो ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
1: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो तो अब पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
0: नहीं, एक बार चीज़ों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीज़ें आसान भी हो जाती हैं। अरुणाचल वॉज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहाँ पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
1: अच्छा।
0: तो अगर हम निकालें कि ऑन एन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस अच्छा। जिले में सबसे ज़्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो यहाँ पे बच्चों को उन क्लास छठे में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी। ऐसे बच्चों को स्कूल में ला के उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज़ को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे है,
1: पूरा लाइफ स्टाइल।
0: तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को स्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होके आए होते हैं। फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचर को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे एंड आई हैड टू वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वॉज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसएस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज़ अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देख के या मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
1: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा गर्म इलाका है, तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही इसमें, कितने लोगों ने साथ दिया और जो बच्चे आपने जैसे कहा कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ, तो क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों तो बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे, हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब,
1: तो एक बड़ी टीम हो गई,
0: एक बड़ी टीम हो गई। द एंटायर ऑब्जेक्टिव वाज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में।
1: बिल्कुल,
0: टू इनकल्केट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ना, वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वाज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं।
1: अच्छा।
0: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पे गई थी। तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देगा आगे आगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है और वो फल फूल रहा है और सब तरफ फैल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो सिचुएशन आपने वहाँ की बताई उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से, उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज़ सिखाना, वो मैनेजमेंट जो था वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
0: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं, उसके साथ साथ में 5 टीचर्स लिए आते हैं, 5 टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैंने 25 एकड़ के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं
1: बस,
0: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट आपके आँख कान नाक सब कुछ होते हैं। तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके।
1: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए
0: हमेशा
1: एक बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, कभी ऐसी मुश्किलें आई जहाँ कि

0: शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए।
1: नहीं सर, चैलेंजेस बहुत आए, बट दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़रूरी, बहुत क्लियर थी कि ये एक टफ फेज़ है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, देखिए हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने किसी टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीज़ें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक
0: हमेशा के लिए, हमेशा बन गया और वो हमेशा ही वहाँ से नए बच्चे निकल करके आते
1: जी,
0: रहेंगे
1: जी, जी,
0: तो ये
1: जी,
0: बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूँगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा।
1: मैं बिल्कुल आप मानता हूँ आपकी बात, ये सबसे सैटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का, और क्योंकि एक ऐसी चीज़ थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको, जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद, बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
0: सर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, ज़बरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको VSM से सम्मानित किया गया
1: जी,
0: तो वो जो मोमेंट था।
1: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से, अपने दम से किया पूरा का पूरा
0: जी।
1: हाँ बस ये था कि तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे, उन्होंने उसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वॉज एक्चुअली अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट।
0: ये आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था
1: जी।
0: आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक एक, एक अलग सी चीज़ है
1: जी,
0: बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो तो वो बताइए हमें।
1: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है, तो अपने आप में बस सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज़ से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
0: बिल्कुल सर, एक चीज़ यहाँ पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
1: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
0: ठीक है,
1: जिसको कि NTA कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या 5वें में हैं
0: जी,
1: दे कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन।
0: ओके,
1: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
0: अच्छा,
1: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई कर, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य में अप्लाई करें तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं।
0: ओके,
1: और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती हैं जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं।
0: तो
1: ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहाँ पर दाखिला होता है, पर यह बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक आदर्श डाले आते हैं
0: जी,
1: जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की भावना डाली जाती है, ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य तो जाना ही है, पर अगर वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, चॉइस हो सकती हैं, पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा, सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल जाता है।
0: बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो मजबूत हो जाते हैं, और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो सर इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
1: यस यस, अगर गूगल करेंगे सैनिक स्कूल एडमिशन की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है जिसपे कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पे जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
0: ओके, तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा प्रोसीजर तो सामने आ जाएगा उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो पांचवी पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो
1: या जो पास आउट
0: हो चुके हैं
1: वो 12 साल की लिमिट होती है,
0: 12 साल
1: तो 10 से 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
0: ओके, हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स अब देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस

0: हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड वन से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माय हार्टेस्ट सैल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टुडे एंड जय हिंद टू ऑल आर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द कंट्री। आई बो माय हेड टू देम माय सेल्फ। अंजलि दो, अंजलि लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माई मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेजेस आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 01123421085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बींग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं। तो वहाँ पे एज अ रजिस्ट्रार माय रोल वाज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे DMMCH MDMS के जो पाठ्यक्रम हैं, प्लस जो हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
0: तो ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल ही एकेडमिक्स में आकर के
1: एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम ए इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड, से एक एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी मेडिसिन साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में।
0: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो?
1: जी, बट हाँ, चार साल हो गए वहाँ पे। इन 4 सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रेमेंडस, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली और बहुत चीज़ों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफ़ी बढ़ी वहाँ पे, तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है, एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में। और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पर एक अवसर मिलता है।
0: अच्छा,
1: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा। अब ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी काफ़ी करी
0: जी।
1: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहाँ पे लाने में, तो उसमें काफ़ी योगदान किया गया
0: जी। तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है?
1: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है। तो लखनऊ वाला पीजीआई दैट इज़ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडीज भी हैं जो कि सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, जहाँ पर इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज़ कर सकते हैं, ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
0: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फ़ायदा हो रहा है अभी?
1: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना सेकेंड प्राइमरी अच्छा। होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहाँ पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं।
0: जहाँ अगर हम एक लेमैन के हिसाब से समझेंगे, आम भाषा के हिसाब से, तो उसको कैसे हम इसको समझेंगे कि ये कौन कौन से आप जो ये बता रहे हैं आप
1: संस्थान में? जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है।
0: अच्छा।
1: कि जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई, ट्रीटमेंट्स हो गए, जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे,
0: अच्छा।

0: किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीज़ों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं वहाँ पे, डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
1: ओके,
0: हाँ, तो प्लस यहाँ पे यह है कि भाई जो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा
1: सर। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे बातचीत करते हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में आए होंगे, ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इतने हाईली सेंसिटिव जो ट्रीटमेंट आपने बताए उनको और बेहतर।
0: देखिए सर, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वाज द लीडर and I had all the people who under me and I could use them at my own disposal. यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग competencies, capabilities और अलग अलग environment से आती है, तो यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना और उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा लोग भी हैं, तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहाँ पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे जंगल में, एक तरीके से जहाँ पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी वहाँ पे, जहाँ फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे, तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, बट द फैक्ट इज की यस बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग।
1: जी
0: जी,
1: तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जर्शन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
0: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू, तो भाई टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
1: तो बिल्कुल वो जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थमते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते हैं,
0: फिर आगे बढ़ते हैं।
1: सर, इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
0: जी जी, देखिए नर्सिंग कॉलेज एक नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की।
1: okay.
0: अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे। डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी करनी है, बट उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेस को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, पर उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया, और उनके मेट्रिक्स को हमने किया। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहाँ पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहाँ पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92 एंड पीजीआई वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहाँ जहाँ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए, बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये अपने आप में
1: बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट।
0: जी जी,
1: और जाहिर है बहुत टफ भी रहा होगा।
0: हाँ,
1: इसमें फिर किस तरीके का आपको,
0: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है, तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल।
1: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा।
0: रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैक कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो इस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं, और कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो ट्रेनिंग थी, वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, इतने ऑर्गेनाइज मैनर में कर पाए।
0: बिल्कुल, मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे उसको सिस्टम में ज़्यादा यूज़ किया जाए, कैसे उनको लेकर चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज़ बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली।
1: यानी कि वो जैसे हम

0: अक्सर हम बात करते हैं जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
1: जीवन शैली है,
0: जीवन शैली है, वो एक लाइफ
1: ऑफ लाइफ, बिल्कुल अलग है, life,
0: और yes. बहुत ही स्पेशल है,
1: समझता हूँ.
0: तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के एक जज्बा पैदा हो.
1: जी,
0: तो इस चीज़ में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं.
1: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इनफ. सो कंपलसरी जो कंस्क्रिप्शन होता है कि भाई सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है, वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये ज़रूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है. आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में दे आर सो मेनी एप्लीकेंट्स. 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 350-300 लोग अकेडमी पहुँच पाते हैं. तो देर लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देर लॉट ऑफ लाइक इंथुजियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाएँ, नेवी में जा पाएँ, एयरफोर्स में जा पाएँ. तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल. हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो बरकरार रहे. तो वो एक बहुत बहुत वो दशवार है. एग्जैक्टली.
0: सर, एक चीज यहाँ भी बताइएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जैसे आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसे, तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा.
1: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो. तो एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है. तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से.
0: अच्छा,
1: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में और वो अपना एनसीसी का 11th 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है. बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपीयर करने से छूट मिल जाती है.
0: अच्छा,
1: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द अकेडमी. तो एग्जाम आपको एसएससी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपीयर करने की छूट मिल जाती है. यू हैव टू अपीयर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी. एसएसबी आपने पास कर लिया.
0: अच्छा,
1: तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द एकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो मुझे लगता है कि एनसीसी को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में इंक्लूड कर सकते हैं.
0: कम से कम उनके अंदर वो चीज, वो
1: राष्ट्रीय भावना और वो राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड दैट स्पिरिट.
0: अपहोल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज उनमें बरकरार रहनी चाहिए और उसके अंदर वो जोश और जज्बा और देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा. हाँ भाई, क्यों वो अपने देश से मोहब्बत करता है और उस पर जान निछार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है. सर, हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी अब एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है. तो जाहिर है एआई हर जगह पर है, तो क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है उसको?
1: जी जी बिल्कुल.
0: तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहाँ पर आपके लिए प्ले कर सकें.
1: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं.
0: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM. आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेडियो पर संदेश सोल्जर्स शायद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की पसंद का ट्रैक. आप भी एंजॉय करें और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से. 9868107070 नंबर है हमारा.

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज़ हर जगह है, हर चीज़ में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज़ हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज़ कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सब के जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज़ करें, चाहे आप किसी चीज़ को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज़ बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज़ को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जो उसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो वहाँ पर भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीज़ों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि क्लिनिकल साइंसेज में, डायग्नोस्टिक में AI विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि आपने MRI करा, MRI को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, हमेशा चाहिए होगा। दे विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड टेक्नोलॉजी, दैट यू कैन नॉट निगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीज़ों को कंपेयर करके, 10 AI के जो AI का जो डेटा बेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
0: जी,
1: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीज़ों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें, उस पर काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है, काफ़ी काम चल रहा है
0: जी।
1: आई एम श्योर आने वाले टाइम पे AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे
0: जी। AI विल, अक्सर लोग बताते हैं कि सर, अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है, तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज़ को, लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद तक,
1: मैंने भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहाँ पे ये देखा गया है कि AI का जो असेसमेंट रहा है वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और स्कोप ऑफ एरर काफ़ी कम कर दिया है उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूँगा कि देर विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और अ क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी, तो ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये ज़रूर है कि AI के माध्यम से, AI के आने से जो हमारा परफेक्शन है, हम उसके और पास पहुंच सकते हैं, अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
0: सर, AI पर हमने बात की, और AI तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में
1: जी।
0: हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूँ जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम BK दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
1: जी,
0: इनका सवाल

0: ये है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
1: जी
0: थी,
1: जी जी
0: तो एक बार और प्लीज अगर बता
1: देखिए,
0: दीजिए।
1: ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है।
0: जी
1: क्लास फिफ्थ पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं।
0: जी
1: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास छठे और क्लास नवे में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम एनटीए कराता है और सैनिक स्कूल एडमिशंस की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज़ चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस,
0: अच्छा
1: वो सारा सारा कोर्स करिकुलम एग्जामिनेशन का पैटर्न सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में एग्जामिनेशंस को के अपेयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं,
0: अच्छा
1: कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है आपके। यू जस्ट हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन।
0: ओके,
1: जी
0: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और
1: पूरा
0: ऑनलाइन
1: मिल
0: अप्लाई भी आप वहीं से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल।
0: सर एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर एंड आरजे सर, जय हिंद। जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी। आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फेयरलेसली सर्विस टू आर नेशन। आई गिव रिस्पेक्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट माई सेल्फ शंकर लोड फ्रॉम गोमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
1: भारत माता की जय।
0: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं। लेकिन हम सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है।
1: जी
0: तो
1: जी।
0: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से। तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम उसी जिंदगी में लाइफस्टाइल में, तो वो सोशल मीडिया के भी काफ़ी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं, वो आपने अपने तौर पर जो चीज़ें देखी होंगी वो तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा।
1: जी जी। देखिए साहब, सोशल मीडिया इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है, जिसके पॉजिटिव भी हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है। ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है।
0: ओके।
1: तो यही क्लास ट्वेल्थ पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी फोन पे ही इनका फोन का एडिक्शन है। यही लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं। आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं 5 लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम पे, या वो गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पे लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी हिल रही है बस खाली।
0: वाला था सर, ये रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो चुके हैं लोग, इसका कोई मतलब या असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचे इससे।
1: देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है। तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको इस पे बैन लगाया है, दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इन सब कंट्रीज़ में भी इस चीज़ का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज सॉर्ड तो है ही। आप जैसे मैंने पहले बोला, इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीज़ों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर निकल के आने में बड़ी तकलीफ हो रही है।
0: सर एक चीज़ ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही एक्सेप्ट करता, प्रेफर करता है।
1: जी, जी,
0: वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता।
1: जी।
0: तो इससे बचने का कोई तरीका, क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं ट्वेल्थ पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
1: देखिए साहब, ये बहुत सबसे ज़रूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है। हर चीज़ मोबाइल और हर चीज़ लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, किताबें भी ज़रूरी हैं।
0: किताबें
1: देखिए साहब, आप
0: तो
1: बिल्कुल एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें पढ़ते मिलते थे, मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन काफ़ी कम हो गया है। तो देयर द टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा सकते दूर उनसे, बट येस यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग, ये बहुत आवश्यक है,
0: ये बहुत ज़रूरी है।

0: और सर इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर जो असर पड़ रहा है वो आपने क्या महसूस किया है और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उसे कैसे बचा जाए ताकि उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए।
1: देखिए फौज में आर्मी में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए कि किस तरीके से दूर रहना है। देखिए फौज में बहुत सारी चीज़ें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब ना कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए, तो इन सब से भी ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है। तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि भाई कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना।
0: अच्छा, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट
1: भी डिलीट कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है। आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीज़ों को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इस चीज़ों से। प्लस आपको पता ही है कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी इविल आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है ये बताना समझाना सिखाना बहुत ज़रूरी है।
0: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है,
1: छूट नहीं पा रहा है।
0: तो लोग क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए?
1: देखिए कुछ चीज़ें
0: डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं
1: जी, जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीज़ें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है। प्रॉब्ली दे वील कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीज़ें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीज़ों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर में इम्पैक्ट आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों
0: जी। तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही। आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे लिस्टनर सुन रहे होंगे उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की।
1: तो थैंक यू सो मच,
0: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद
1: थैंक यू
0: आने
1: much.
0: के लिए
1: जी।
0: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे, कर्नल वरुण वाजपेयी VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: इस समय आप ट्यून इन है 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला पर। तो लीजिए इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं, समय है मंडियाली लोकगीतों का हिमाचली बोलियों के अंतर्गत। आइए सुनते हैं मंडियाली लोकगीत और कार्यक्रम की शुरुआत अरुण प्रकाश के गाए इस लोकगीत के साथ करते हैं।

इस वक्त मंडियाली लोकगीत का आनंद ले रहे हैं आप 103.7 MHz FM शिमला पर। लीजिए गोपाल शरण ठाकुर की आवाज़ में अगला मंडियाली लोकगीत आनंद लीजिए।

तो चलिए जी, इसी मंडियाली लोकगीत के साथ मंडियाली गीतों को दे दे हैं यहीं पर विराम। 103.7 MHz आकर्षणीय FM शिमला सुन रहे हैं आप। शाम के 5:20 होने वाले हैं। कृपया आप हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए सुनिए पंगवाली बोली का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के साथ ही FM 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है।

अस आकाशवाणी शिमला के बोलने को से ब्यादी पाँच भाई के भी मठ पे गिन को से तुम मनपसंद पगवाड़ी कार्यक्रम।

पाँववाड़ी कार्यक्रम शोणावाड़ी जी सभी जी नरेंद्र ठाकुर नमस्कार। तो शोणावाड़ आज तुझ से गलबात करनी सी जे देशे यूथ से तनी कैसा हिसाब जो केंद्र सरकार रोजगार देने दिशा तक कदम उठान लगो सी। हालांकि जिस योजना बारे तुझे आज असी गलबात करें सी, ऐसे शुरुआत जुलाई 2015

पूरे देश तो वो थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ऐसे जे होरुन अंशु से प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी असो भारत सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना सी, खासकर जे देश है नौजवान पीढ़ी सी, जे अगर आपो पढ़ाई कैसे कारण जारी न रख सके, बीच कई मजबूरी होती, कई गरीबी सी, कई हो रहे भी ऐसा तक कारण शामिल रहे जिस वजह जो जे नौजवान सा देश है से आपो पढ़ाई पूरी न कर सका, तंके लिए जे केंद्र सरकार योजना आती सी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऐसे जे उद्देश्य सा जे नौजवान देश से तंके जे काबिलियत सी तथा तो निखार आने का तनी तंके योग्यता हिसाब जो रोजगार दें सा देशे जैसे योजना तो रोजगार मुहैया कराने लिए केंद्र सरकार है 40 करोड़ क्या भी ज़्यादा जे देशे नौजवान से तंके लिए प्रोग्राम शुरू किया था। ऐसा तो बहुत की आज विभिन्न व्यवसाय से तथा तो 3 महीने को था तो 6 महीने को था तो 1 साल जो कोर्स से मुफ्त था तो केंद्र सरकार इच्छुक जे नौजवान से तैनी क्या क्रांति जिखे 3 महीने या 6 महीने या 1 साल जे कोर्स से पूरा बोही गया था तैनी प्रमाण पत्र तस इंस्टीट्यूट के अंदर थे और सब प्रमाण पत्र पूरे देश है कैसे भी कौन आता संबंध भी स्थापित करने लिए और तैसे जे काबिलियत सी से सब जगह बराबर रहती कोई भी चाहे से प्राइवेट जगह से या सरकारी जगह से सभी जगह मान्य रहें सा सर्टिफिकेट के साथ साथ जे उम्मीदवार से अगर से आपको कारोबार शुरू करना चाहता है इस योजना के तहत तनी बैंक क्या ऋण भी नहीं सकते ताकि से आपको जे यानी ट्रेनिंग की उसे केंद्र सरकार तरफ और जे यानी प्रशिक्षण ट्रेनिंग में थी केंद्र सरकार तरफ तथा तो इनके बिल्कुल पैसे नहीं लगते है केंद्र सरकार अगर कैसे भी जगाई क्या कैसे भी विद्यालय के अंदर यानी प्रशिक्षण देती तो तैसे जितने भी खर्चा आता से केंद्र सरकार उठाती ताकि जो है देश नौजवान मनुष्य तनी आपू रुचि हिसाब जो है कैसे क्षेत्र आता तनी काम करूँ सो कहूँ व्यवसाय तनी करण सा कैस चीज ही तनी ट्रेनिंग नहीं ऐसी तसलिए से आवेदन का ही क्या है रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी योजना तहत पूरे देश 40 करोड़ के भी ज़्यादा मैन नौजवान जे ऐसे तनी है इस योजना ही लाभ दें सा और साथ साथ वो जो हो रहे मैन भी ऐसे जो जुड़ के इस योजना बारे मैन वहाँ तक जागरूकता पैदा कर सके हालांकि केंद्र सरकार भी इस क्षेत्र तक जाति भी देश अंतर टेलीकॉम कंपनी से तनी जो बोल के कि इस स्कीम है पूरी जागरूकता पूरे देश है जे नौजवान से तनी सौंख फैला है ताकि कोई भी नौजवान अगर कैसे भी चुनिंदा क्षेत्र आता आपको प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं चाहता केंद्र सरकार तरफा मुफ्त हंत तनी मेती अथंत जे कृषि क्षेत्र से जे आई कृषि सी इस क्षेत्र तो भी ट्रेनिंग नहीं सकता ऑटोमोबाइल सा ITC खासकर वर्तमान परिप्रेक्ष्यता है तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण पूरे देश की पूरे संसार तक काम करना उसी तैसे साथ साथ ब्यूटी एंड वेलनेस और जे इलेक्ट्रॉनिक है जितने भी क्षेत्र से तथा तो कैसे भी क्षेत्र से

ट्रेनिङ निकै कोही भी सरकारी या प्राइवेट हाँ जे नौकरी सी तनिया त आपो रोजगार आपो लिए उपलब्ध करवाई सकता। एज पर तुझे गलबात जारी रखते बच छोड़ते लोक गीत।

अथी बिन्या ब्रोल तो सीमार जू आवाजन तो लोकगीत तस तुशियो गल बात करना वो थे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बारे अथान तो विभिन्न क्षेत्र से जथान तो नौजवान ट्रेनिंग नहीं कई चाहे से निजी उद्योग अंत या सरकारी उद्योग अंत आपू नौकरी कर सकते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघे भी भारत बारे बोलो थी कि भारत एक विकासशील देश है और अगर अस जनसंख्या हिसाब जो भी है रहता काफ़ी सारी जनसंख्या सी तस विकासशील देश हाँ तो पूरे विकसित होने लिए आने वाला वक्त हाँ तो बहुत सारे जे नौजवान से तनी कौशल विकास करें जरूरत सी क्योंकि बहुत सारे कारखाने उद्योग स्थापित हो से देश हाँ तो विकसित पूरी तरह होने लिए तो तसे लिए जे मैणु के शक्ति सी मैण जे प्रशिक्षित नौजवान से तनी विभिन्न क्षेत्र तक नौकरी करने मौका मिलता और साथ साथ टाइम रहते तनी अगर प्रशिक्षण में गता तैने वाले वक्त हाँ तो विकास ज गति सी जे देशे विकास पहुँचा तसा तो बहुत सारी जे खामियां बूंदी से दूर हो गई एकदम विकास अगर बढ़ता रहता ऐ संयुक्त राष्ट्र संघे भी देश जे कई लिंग बोलू कि टाइम टाइम बट तुस इस क्षेत्र तक जी आई असी गलबात की कृषि तक ऑर्गेनिक उत्पादन ऊर्जा पंप टेक्नीशियन सोलर लाइट टेक्नीशियन ऑप्टिकल फाइबर ई विभिन्न क्षेत्र से जे तुशियो में गलबात की तथा तो नौजवान प्रशिक्षण निकाय देशे विकास तक आपू बहुमूल्य योगदान दी सकता और ऐसे लिए जे देशे जत भी नौजवान से पूरे देश तक ऐसी योजनाएं बारे जागरूकता फैलाना उसी और सभी इच्छुक जे भी नौजवान से सैनिक क्षेत्र तक आए चाहते प्रशिक्षण केंद्र सरकार तरफ जे मुफ्त में उसे तसे लाभ उठाना चाहते तो तनि जागरूक करना बहुत ज़्यादा जरूरी से अथी तुझे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जे पूरे देश तक 2015 के यहाँ चलू सी ऐसे जे उद्देश्य से बेरोजगार नौजवान से तनि भी देश विकास तक भागीदारी बनाने लिए और साथ साथ जे ऐसे जरिए से आप जीवन यापन अच्छी तरह कर सके ऐसे कुछ कुछ जे खास प्रादेशिक समाचार ही राज्य पथ परिवहन निगम जे कर्मचारी यूनियन सी तनी आधे रात के यहाँ चक्का जाम करने फैसला थे से वापस निया तनी अतिरिक्त मुख्य सचिव जो बैठक हुई तंके और तनी जे भी तंके जायज मांगे थी से सरकार पूरे करने तनी आश्वासन देता ऐसे साथ साथ राज्य परिवहन निगम जे चालक से जे ड्राइवर से तंके भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गए नाहन डिपो लिए पंजी पद जे चालक से तंके भरण से तनी हालांकि जे नियुक्ति से अस्थायी

तौर पर से प्रत्येक जे ड्राइवर या चालक से तनी 1500 रुपये प्रति दिन रोजे यानी कि 1500 में से ही चम है पंचायत समिति जे अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष से तैंके परिणाम घोषित हुआ अथा तो भाजपा समर्थित अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष थे से दुहे जीते काजल कुमारी अध्यक्षता हेमराज उपाध्यक्ष बने। आज भाजपा पूरे प्रदेश अंतर संविधान हत्या दिवस मनाना गोसा आज कने रोज 1975 अंतर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूरे देश अंतर आपातकाल शुरू किए थे जैसे जरिए खासकर जो मौलिक अधिकार से बिल्कुल तस समय अंतर निलंबित थे सब क्योंकि जब भी संविधान अधिकार दें तो मौल के से बिल्कुल ख़त्म बोते अस विरोध अंत पूरे प्रदेश अंत आज जे 5 जून अंत संविधान हत्या दिवस में नहीं गुस्सा राज्य अंत जे पर्यटन विकास निगम जे कर्मचारी से तनी हड़ताल के उसी शिमला तो तैंकि बोलने मतलब इस कि जे निगम जत भी हिमाचल तो होटल से निजी हाथियां तो निजी क्षेत्र तो देने सरकार योजना सी अनि ऐसी योजना विरोध क्यों सा अनि वो लोग की जत भी पर्यटन विकास निगम होटल प्रदेश अंत से घाटा तो कोई नहीं तो इसलिए से निजी हाथों तो देने कोई सवाल पैदा न होता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो औषधि नियम 1945 से संशोधित क्यों सा तसे तहत अब अधिसूची H2 जे दायरा से व्यापक का छा और ऐसे विस्तार भी हुआ ऐसे जरिए कि वो तो कि जे नकली तो घटिया दई पूरे देश अंत बिकलने गुस या देश अंत ऐसे उत्पादन होना गुस्सा नहीं पर पूरी तरह रोक लाने लिए ऐसे 1945 जे औषधि नियम ऐसा संशोधन बहुत जरूरी था ताकि जे घटिया तो नकली दवाई पूरे देश अंत मानव के स्वास्थ्य जो गड़बड़ करने गुसी और मन बड़ा अस क्षेत्र तो बहुत परेशान सा अस ख़त्म करने लिए केंद्र सरकार है बहुत अच्छा काम क्यों सा अत थे खास खास समाचार या खोरू लोकगीत सुनते।

अथी शेर सिंह जरियाला आवाज अंत लोकगीत ही कुल्लू अंत भाजपा पार्टी प्रवक्ता बोलो कि जे वर्तमान अंत प्रदेश सरकार से तनि चुनावी जे वायदा किए थे सपूर ने किए तनि बोलो कि कांग्रेस है क्लास हो यूनिट बिजली प्रदेश वासी जे मुफ्त बोले थी जबकि जो साल हो गया अभी अभी सौ वादा पूरा ना किया बजाय ऐसे फ्यूल चार्ज मिल्कसेस सहित जे कई अतिरिक्त शुल्क बढ़ाए जैसे बिल्ले यख प्रदेश परिवार तक काफ़ी बोझ पड़ गया जैसे बोझ है बजाय जो जे प्रदेश परिवार सा तैसे जे घरेलू बजट से बुरी तरह प्रभावित हुआ और जे जनता से या सरकार के यहाँ ठगा हुआ महसूस करने लगो सी 26 जून अंत पूरे प्रदेश अंत न मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू एंटी चीटा दिवस मना सा खासकर साहित्य की प्रदेश जे नौजवान से नौजवान पीढ़ी सी अन्हीं नशी के लपेट हंता है लोगों से जिस वजह जो जे यूथ शक्ति सी से बर्बाद होने को सब साथ साथ है जे बहुत सारे घर बर्बाद होने को से और ऐसे जागरूकता फैलाई गई इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लाण मकसद सा और जे नौजवान इस चपेट हंत है ईगो से तहनी कैसे न कैसे सूरत हंत तढ़िया ऐसी नशी के बाहर किड़काए मुख्य धारा अंत शामिल करन सा और इस खास जे शुकुण पूरे प्रदेश अंत एंटी चेटा दिवस मनाई सा ऐसे जरिए ये संदेश पूरे प्रदेशवासी जी गए सा कि कोई भी नशे कैसे प्रकार है खासकर इस दिवस अंत चेटे पट ज़्यादा जोर सा क्योंकि चेटे लपेट अंत सहित कि प्रदेश है बहुत सारे परिवार बर्बाद होने को से इस बर्बादी के रोकने लिए इस चीटे पर पूर्ण रूप जो प्रतिबंध लान बड़ा जरूरी से गहते गहते या खोरू।

अभी आप सुन रहे थे पंगवाली बोली का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीत।

ये लोकगीत आपने सुना सरिता वर्मा की आवाज में, आइए सुनते हैं। दुर्गादत्त शर्मा का गाया ये लोक भजन।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे लोकगीत। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और FM 103.7 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र के नेरी कला में करीब 90 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें शालाघाट अर्की कुनिहार बरोटीवाला मार्ग पर गंभर खड्ड पर बनने वाले डबल लेन आर्च पुल, BDO कार्यालय भवन धर्मपुर और PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रथा में विज्ञान भवन का उद्घाटन शामिल है। उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न सड़कों व संपर्क मार्गों के निर्माण व उन्नयन कार्यों का शिलान्यास भी किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा जिले में 250 से अधिक आबादी वाले सड़क से वंचित सभी गांवों के लिए सड़क की DPR तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डलहौजी में आज एक बैठक में उन्होंने बताया कि चंबा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में स्वीकृत 65 सड़क परियोजनाओं में से 61 का कार्य शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया गया है। पठानिया ने जिले में सड़क परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने और वन स्वीकृति से जुड़े लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। 25 जून 1975 के आपातकाल की याद में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। देश सहित प्रदेश में भी इससे जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करना है। अपने संदेश में विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र के इस काले दौर की सच्चाई को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना आवश्यक है, ताकि वे समझ सकें कि लोकतंत्र आंतरिक मूल्यों की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है।

0: 25 जून 1975 को मध्य रात्रि पूरे देश के अंदर जो है वो आपातकाल की घोषणा की गई और राष्ट्रपति द्वारा उसको नोटिफिकेशन कर दी गई थी। आज कांग्रेस पूरे देश भर में लोकतंत्र की बहुत बड़ी बातें कर, लेकिन उनके स्मरण में इस बात को मैं जरूर ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि रातों रात लाखों लोग पूरे देश भर में एक रात को ही जेल की सलाखों के पीछे उस वक्त डाल दिए गए थे।
1: दूसरी ओर सांसद अनुराग ठाकुर ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर कभी ना मिटने वाला कलंक करार दिया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को याद करने का अवसर है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए कई तरह की यातनाएं सही। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा हमीरपुर जिले के बिझड़ी में आयोजित 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आज संपन्न हो गई। इस प्रदर्शनी के दौरान केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन व जनकल्याण के 12 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। समापन अवसर पर बिझड़ी के तहसीलदार सुभाष कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजन भारत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक पहलों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महारल में सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों और नशा मुक्ति पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आज अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। उपायुक्त मुकेश रिप्सवाल ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को चिट्टे के विरुद्ध शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि चंबा जिला को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए प्रशासन के प्रयास जारी रहेंगे और इस तरह के खेल आयोजन इसमें मददगार बनेंगे।
2: हिमाचल सरकार ने जो लड़ाई शुरू करी है चिट्टे के अगेंस्ट, तो उसी को ओवरऑल सभी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की थीम रखा गया ताकि ये जो मैसेज है ये जन जन तक पुलिस के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से पहुंचाया जा सके और सभी लोगों की भागीदारी इस लड़ाई में सुनिश्चित की जा सके। और जो हमारी ये कोशिश है कि चिट्टा मुक्त हिमाचल, चिट्टा मुक्त चंबा हम लोग बना सकें, उस मुहिम के अंदर ये एक बहुत ही कारगर कदम के रूप में साबित होगा।
1: शिमला जिला प्रशासन ने आगामी सेब सीजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने इस संबंध में आज वर्चुअल बैठक कर संबंधित अधिकारियों से सेब सीजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उपायुक्त ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए सेब सीजन को सफल बनाने और बागवानों को बेहतर परिवहन व विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। जिले में इस वर्ष करीब 2,30,000 मीट्रिक टन सेब उत्पादन का अनुमान है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों के अंतर्गत लीजिए पेश हैं कांगड़ी कार्यक्रम।

कांगड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोतियां जो साड़ा प्यार भरा नमस्कार, हाजिर हन एक बारी फिरी कार्यक्रम लेकर ने। कार्यक्रम च अज वांके वांके लोक गीतां सौगी तुसां जो जानकारी देनी है डिजिटल इंडिया योजना बारे, गल करनी है गर्मियां च असां अपने वना जो अग्गी ते कियां बचाई सकते हन, कने प्रदेश दियां नवीं ताजियां खबरां भी सुनानियां हन। पर कार्यक्रम दी शुरुआत सारें ते पहले असां करना लगे हन माता दी इस पेंट सौगी आवाज़ां हन सुनपति कने लक्ष्मी दियां।

बांका दे लोग गीत सुनने के बाद हुन अस अपने श्रोतियां कन्ने गल करनी है गर्मियां च वना जो जड़ा है अग्गी ते असां कियां बचाई सकते हैं। दिखा वना जो धरती दे फेफड़े भी गलाया जांदा है जिहड़े ना सिर्फ जीने ताई ऑक्सीजन देंदे हन बल्कि जीव जंतुआं वातावरण च संतुलन कन्ने आदमियां जो दे वजूद दा आधार भी है। साढ़े प्रदेश च खास करके पहाड़ी इलाकों च गर्मियां आंदे ही जंगलों की सुरक्षा जो लेकर एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। जून के महीने च बढ़ती गर्मी तेज़ हवा कने जंगलों च बिखरे सुखे पत्ते कने चीलों के स्यूल माड़ी दे चिंगारी सौगी भी बड़ी बारी अग दा रूप ले लेंदे हन। दिखा जंगलों च लगने वाली यह अग ना सिर्फ कीमती बन संपदा जो सवा करी दिंदी है पर जंगली जीव जंतुआ दे घरां जो भी उजाड़ी दिंदी है कने वातावरण च भारी मात्रा च धुआं कने जहरीली गैस फैलांदी है। ज़्यादातर यह अग माणुआं दी लापरवाही दी वजह कने सुलगदी है। इस ताईं गर्मियां दे मौसम च वना जो अग्गी सौगी बचाना सिर्फ वन महकमे का ही काम नहीं है पर हर नागरिक का नैतिक कने समाजिक फर्ज भी है। जलू तिकर लोगों का साथ कने प्रशासनिक मुश्तैदी का एक मजबूत ढांचा तैयार नहीं होगा तलू तक असा अपनी अनमोल कुदरती धरोहर जो बचाई नहीं सकते। देखो सांजो गर्मियां च वना चो बचाने मतलब अग्गी ते बचाने ताई वना च सुलगदी चीज़ां जो सटने ते बचाना चाहिदा है। बीड़ी सिगरेट या माचिस दी तीली बिना पूरी तरीके सौगी बुझाई के जंगलों च या उसके आसे पासे नहीं सटनी चाहिदी है। अगर तुसा जंगल या उदे नेड़े पिकनिक मना दे हन तां खाना पकाने दे बाद अग्गी जो पानी या मिट्टी सौगी पूरी तरह बुझाना बड़ा ही जरूरी है। कैंप फायर हमेशा साफ जगह जड़ा है करना चाहिदा है कने सोने या उत्थों ते जाने ते पहले उस जो खरी तरीके सौगी जड़ा है बुझाई लेना चाहिदा है। खेतां च पराली नहीं जलानी चाहिए है। जंगल दे सटे खेतां च किसान पराली जो अग ना लगान क्योंकि हवा चलने ते ये अग आसानी सौगी जंगलों च फैली सकती है। जंगल दे आसे पासे सुखे पत्रां या प्लास्टिक दे कचरे जो खुला नहीं सटना चाहिदा है कने उत्थों इन्हां जो जलाना भी नहीं चाहिदा है। दिखा वन महकमे जो गर्मियां ते पहले ही जंगल दे विच फायर लाइन बनाई देनी चाहिदी है ताकि अग एक हिस्से ते दूसरे हिस्से तक ना फैले। रस्तियां कने संवेदनशील इलाकियां ते सुखी पत्तियां कने लकड़ियां जो वक्त रहिंदे ही जड़ा है हटाई देना चाहिदा है। सर्दियां दे आखिर च कने गर्मियां दी शुरुआत ते पहले ही वन महकमे दी देख रेख च नियंत्रित तरीके सौगी सुखी घास जो जलाई देना चाहिदा है ताकि बाद च अग ना लगे। अगर तुहानू जो जंगल च कुथी भी धुआं कने अग नज़र होए तां इकदम जड़ा है वन महकमे या फायर ब्रिगेड जो जड़ा है दसना चाहिदा है। ग्रां च फॉरेस्ट फायर फाइटिंग टीमां बनाइयां चाहीदियां हैं जिहड़ियां अग लगने या फैलने ते पहले ही उस जो काबू करी सकन। गलांदे हन ताली तक असां सुरक्षित

इस वक्त आप ट्यूनिंग है 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला पर। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं लाहौली कार्यक्रम।

राउ टोयसुम दशमलव निजर दिशु एफएम शिमला स्वांगलो प्रोग्राम रेरा केनर भत्ते दी मोड़े दी बाड़े दिए सेहना दी केंदी भत्ते दी गी प्रोमिलो तरफे राम राम जुले जी साथी रे छन तो की स्वांगलो प्रोग्राम अरी स्वांगलो रूठे रूठे गीत गुरेर केंजरे रोनी धीरा सादे इमिना खास खास खबर अरल जरूर केंदा सादे शापोग त इफोगल गप्पा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पाठी त दीरा सादे सादे आऊँ हिंदू कुजमा खर कोई हिंदू जीवन शैली तो दो बारे छरिकुजी इफो सुविधार सहूलियत अर तेहंदी जरूर खोसा तो दीरा सादे इफो हिंदू चुनौती दू गप्पा लहिंदू तुझी जरूर आवा छरिकुजी एर तो कितारी साकी आऊँ हिंदू दी खर कोई जमाना तो दीरी हैं नरमी दी हिंदू जिंदगी कड़े चिमथल जी हर पाठी सुख सुविधा हिंदी खोसी लेख तो छेरी कुछ तो विज्ञान है धोन तरक की लाजी कैसता तो कि भाई आऊँ कम हैं जी हिंदू रंग कौन सा जरा नी गुट जीरा नी लाजा तो इनी ना तो कम हैं जी मशीन जीरा नी लाजा तो दोनी ध्यान तो कुछ कुछ नगरो ला का कि मेजी तो एन अच्छा न अच्छा कम लाजा तो दोर एना दुरी दंग रे दी फो दुम बीम कम लाजा तो दोर छा ना हिंदू स्वांगलो गप्पा ला दानी तो स्वान तेन जी मीज छा ना इस दिन जिम कम लाजा तो दोनी री रे फसल पैदा लाजते रूठे अग आड़ू हैं जी जाजा तो दोनी तो आऊँ दौड़ती किमी जे एना दू री रे दुनी छा ना एजिते पैदा

जातोदोर रोज एकी कामलाभे परमा फुगो पाठी कसरत लशुजुआ त घ्यांगो रिरेनी आगाडू हुंजीते रोजे ताजा आऊँ घड़ेश बागा छुआ दुजावे परमा नेस लसी गप्पा कि भई फुगल सेहत जड़े शुभी त सेमल राजी शुजिब्रा जातो पर दिव शादे शहरी ला का दुतना रीदंग कम तो कुछ मना रीदंग तो देमा दो काम लमा त ना तो रूठे ताजा आऊँ कुर्मा री रे दुनि हुंजा आऊँ रूठे बागा दो गप्पा हिंजला दनी आगाड़ू दोर मा दोर दीरा सादे शुच्चा ती आऊँ हिंदू नगरे नगरे मूर्ति नी हुंजा सोई तीशवा साफ तीशवा दुल शहरो लाका उम्मीद फो डाये खुशी तो त दीपाठी नेस लासी गप्पा ते या हैं दी कुर्मा सुविधा दु गप्पा लावा त इफो से तो पाठी हैं जी नुकसान हो हैं जी गप्पा जरूर लादनी त दी हैं दु जिंदगी उच कुर्मा नजरिया शू त नेस लासी गप्पा दो पाठी हैं दी जरूर सोचेस जू शू प्रोग्राम मुंडरी हैं जी रेजोनी रामदेव कपूर जी साक्षी दिगुरे।

जी सादरे गुरे किंजरेश तनी एओ जुगे लाए संगाला संसारा जियो। दी गुरे हिंदू मी दुकुर्मा आऊं जिंदगी उस सच्चाई तो दुकानरा छरिकु जी हे नर मी दु दी ये जिंदगी रेत तो दी संसार सुख या बाउ सुख ले हिंदी दी ये जिंदगी रिखोसा ध्यान तो जिंदगी सुख हिंदी उई आउटती ग्लमा खोसी दी ये जन्मरी दी ये जिंदगी री तो हिंदू यूंग रिंगो रिश्ता उई आवर्ती गले हिंदी माखोसी दीर भत्ते ते सादी रे दी ए जीवन अर्त तो दुर्ना ता गोतर कुछ मना है नरमी उ जिंदगी री रिश्ता नाता उ खास अहमियत तो उई ता आवर्ती गले माखोसी हिंदी दी दाए सुखो रिश्तार सीमी वक्तरी अरे ल सादे माँ भी कुछ मना दी हिंदू जिंदगी उ सच्चाई शु हे नर दि संसारा अंदिन ले इच त इविल हिंदी इच्चे लेव दो सीमी ध्याड़ारी रजा रामो मिन सुमरे ची हिंजी त सीए थल खोसी हिंदी ढाई हाथ धरती सीए थल शो दो हिंदू पलारी ढाई गज याद त सीए थल शोनी हेनर जुड़ सीऊ खनी रसा दे त सादी रे दी संसारा हेनर सलजी अंदेनी त सलजी योनी नंगड़े फुगा रसा दे दी संसारा अंदेनी हेनर नंगड़े फुगा रसा दे दी संसारनी इबी हेनर ता गप्पा आबा कि भाई मरुणे री बगुता कुछ मना सी ए थल कुलशी हिंदु थल जी रियो बेंज त जोरे कुलशी हिंदु थल जी शंख पादमा नंगणे सलजी गुड़ा रसा दे दी संसारा हिंदु आग मन छुते त नंगणे सलजी गुड़ा रसा दे दी संसारनी हिन नर कुर्मा अच्छा ले ईवी सी ए थल फुग हिंदु बेंडी वाड़ारी रोजी के जी बेंडी वाड़ारी हिंजी हिंदु रोशी लेगी आऊँ उर्ज तो हिंदु आऊँ फुग तो दू टू शू जी भी ज्ञा छो मेऊ शगारी रोशा तब शुजुआ हिंदु फुग तांत गप्पा दी ए कि भई दी हिंदु जिंदगी सच्चाई शु आऊँ हिंदी अबिल पेशी जू शिमाशत त दी ए गल गप्पा रसा दे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पाठिल गल गप्पा शाज जुम्बुग दी भारत सरकार तर्फे चू सैल जी च जीवन बीमा योजना शु दी बीमा योजना जुड़ हजार संगारी चू शिशु दी योजना चूची मी मकसद ढा प्रीमियम आरी मी दी जीवन बीमा सुरक्षा रणरिशु ते सादी रे दी योजना तहत बीमित आऊँ मी तो दो सीबे परमा चाहे वजा छी ये शुई दु बीमा लेप सी मी ऊँ सीबे परमा दो चूं की टब रदी याद राऊँ नामांकन अरसे सी तो आधु मी दो भी जुट लखटन गचे की बीमा राशि राशयुआ दी योजना खास कर देशो आऊँ आम मीर तो दुर ढा आयो रा किर तो दुर कुछ मना आधु कमाई ढा तो ध्यान चोमी दी आर्थिक सुरक्षा रंजन थर्जी दी योजना बड़ा शिशु त दी योजना अगर हैं जी खासियत तो गप्पा लहरीन सहित नामांकन लेमी वक्त अरी दु बीमा लेपचा मी उमर सारे नी निंजो साशु बिजुस पात्रता उथलजी दी आयु सीमा तेला सी तो दी उथलजी बीमा कवर जुड़ लक टंग राशयुआ त दी इच सालो बीमा योजना शु छऊ हर साल नवीनीकरण ले तरसी त दी हर साल प्रीमियम जमा लाजिते जारी तज दर्जी दियू थल जी छान वर्षोध पिराउटोई निजो सतरुई टंग जमा ले ले भी दी बीमा हर साल जमा लाजिते निजो संग साल उमर तचे जारी तज दर्जी ते सादी रे के नर्दी

बीमा योजना रे बैंक बचत खाता माध्यम में शामिल छु बितरसी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ढा खर्चरी घर उम्मीदी घर उठा वृद्धि आर्थिक सुरक्षा रन रचो इच अहम सरकारी पहल छु। दी योजनाएं बीमित मीरा सादे छा रंगियो ने शुभ परमा जान अच्छाई बे परमा दो चुंग घरवारो दुखरी कुर्मा खरु वक्त शुआ खरु कष्टो वक्त शुआ दोताल इफो सहारा रन रिमिदी योजनाएं कमला दी बीमा कमला कुछ मना तो दुखारी वक्त तरी आऊँ जो लखो बीमा राशि शुआ दुदो दी खोसा तो दी ये गल का पारा सादे आई तो गीत हैं जरे रुन सादी रे मानदासी सादी दू सकसी।

जी सादरे गीत के जरेशतनी रेलमा एकी रंगा सूटाओ रेलमा रंगा बदले छना गल गप्पा के दसादे शजिलेक तो एक तो छना तरीक चाकी आऊँ खर कोई जमाना तो आऊँ हिंदू आधुनिक शैली तो दोरी नेसला सी गप्पा दी आधुनिक युगर हिंदी कुछ मत या सहूलियत अर्थ खोसा इल जी तो पर नेसला सी गप्पा ई बहुत चुनौती रिल हिंदू तु जरूर तो की दी खर कोई जमाना री दी युगारी विज्ञान तकनीकें हिनर मी दू जिंदगी तुई की व्यस्त आईने योजी बना किश्ता दो मोबाइल फोन हो गप्पा लादनी नेट आऊँ इंटरनेट तो दो गप्पा लादनी या कंप्यूटर तो गाडिर तो दुर तीस बातें जी हिंदू जिंदगी शी मी आईने योजी लाजी किश्ता दुर पर ध्यान रो सहूलियत दसा दे हिंदू तुई जी इफो खर कोई शपार ल चुनौती ल हिंदू तुई खाई शुजुआ छाने हिंद सुविधा दू गप्पा लादन सहित हिंदू दी खर कोई जीवन शैली हिनर मी दू वक्त आऊँ हिंदू मेहनत तो दू झूला बचा सी मी कमला तो की दी वक्त री तो की कुर्मा दी वक्त री हिंद जी हिंदू चुंग घर बारा दुए ब्रह्मा ते शिक्षा लिप्स तरसदनी सादे हिंद इच्छा समान चुम जमी सेम शुच सहित हिंद दुल्लो ऑनलाइन चुम तरसदनी ते या पाठी पाठी सुविधार तो की वक्त री हिंद खुश लेख तो ता दिल हेलेगा पा दुनिया आऊँ लोग कुणी री ब्रसी मी शुआ दोरा सादे अगर हिंद जी गप्पा ले जुंजदन सहित दोरा सादे हिंद जी गप्पा ले तरसदनी दू हिंद जी खंड जी तरसदनी ता आधुनिक चिकित्सा सुविधा त स्वास्थ्य सेवा आईने रूठे बेहतर योजी बना किश्ता दो ते सादिरे ता दौड़ती गया अगर हिंद जी हिंदू दिखर कोई जीवन शैली री तो सी हिन्नर कुर्मा मी दू आऊँ हिनर मीर तो दोन हिंदू संघर्ष गप्पा लरिन सहित नेसला सी गप्पा की भाई एज त छाना हिंदू गप्पा हिंज लादन त आवर्ती एज त हिंदू था जी छाना सुविधा जरूर बेसाइल जीतो पर दौड़ती के हिंदू जिंदगी चाल ल आईने मस्त तेज सुजील जीतो तो कि दी आधुनिक जिंग आऊँ हिंदू जिंदगी तो दिरी त भत्ते मीद पलारी वक्त तो कमी तो ध्यान री भत्ते दी नेसला सी गप्पा तनाव आईने मस्त बेसाइल जीतो भत्ते दी तनाव सुजुआ आईने मस मोबाइल खामे परमा मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल लवे परमा दिव असर हिंदू फुगो सेहते आऊँ हिंदू सेम तो हिंदू तंगनी तो दो टोइल शुजील जातो तो ध्यान रिनेस लसी गप्पा अगर हिंदू सेम शांत मशुई या दोरा हिंदू सेहत ठीक मशुई से तो हिंदू जिंदगी कड़े ची हिंदी आईने खरे शुजुआ ता दौड़ती गे नेस लसी गप्पा आवर्ती मीद बीजा मुकाबला भावना मस बेसाइल जी तो तरचा कि आऊँ हिंदू दिखर कोई जमाना री मी दी कम मखोस बेपरमा मी दू पल रोजगार मश बेपरमा ल दुर मस परेशान तो दुर दुरती गे प्रदूषण रसा दे मी दू एन बीजा आऊँ सामाजिक दूरी तो ध्यान चोशा पर ल खाइशु जील जीतो दी आधुनिक जीवन और संघर्ष बनेगी जीतो इच घर बार टबर दू बीजा गल गप्पा मश बेपरमा गप्पा फासा ढाशु बेपरमा रिश्ता नाता दुटोई ल दू आईने मस असर पड़ेगी युआ गप्पा दी की भाई दी दु बीजा संतुलन बना गीता से आईने जरूरी तो कुछ मना हिंदी आधुनिक सुविधा दु फायदा लेपची तो जूं शेषु पर दो दू सही है सीमित कुछ मना छिड़ हिंदी जूंशी तो दोणे हिंदी दू इस्तेमाल ले जूंशु सीमित इस्तेमाल हिंदी ले जूंशु हिंदी तकनीक को इस्तेमाल हिंदू विकास और हिंदू तरक्की था जिले जूंशु ना कि दो टोय है नर निर्भर शुजी लेनी कि भाई अगर हिंदू पल रही ध्यान छो चीज अर तो दूर मोबाइल तो या दो हिंस कौन की नेट हिंदू मोबाइल अर तो ताए हिंद जी छा पढ़े पुनिया कम लाओनी तो इले तो रूठे रसा दे हिंद जी पढ़े तरस देनी की ताबर कुछ जाते हिंद जी रूठे रसा दे सेम था जीते सेम लगा गीते पढ़े तरस देनी या दोरा हिंद जी दी कुछ तार पुनी कि भाई आऊँ तरक्की था जी तकनीक तो दो इस्तेमाल हिंदी फो छिड़ जूँ फा दोहणे ले जूँ शू दो आधीन हिंदी शू जी ई भी मालेब दो गप्पा दी ए कि भाई रूठे सही कि भाई स्वस्थ जीवन शैली घर टबरा दसा दे वक्त बिता सी रसा दे हिंदू नैतिक मूल्य जिये आई दोरा हिंदू आऊँ समाज उम्मीद दसा दे जुड़ावे हिंदू जीवन री संतुलन बढ़ा गीता जी हेले गप्पा आऊँ गढ़ी हैं जी स्वस्थ जीवन शैली अपना सदनी याद रहें जी हिंदू चूंग घर बारो आऊँ हिंदू टबर तो दुर दो दसा दे हिंदू आऊँ कीमती वक्त तो हैं जी दू बिता चनी इफो गल गप्पा लहा दनी हिंदू आऊँ छा कुछ मा जिंदगी छा परेशानी

जी गीत के जरिए तनी मत कर सुमना सूरते गुमाना है नेस लसीगप्पा दी कुशमा हैं दू आऊँ मोद तो या फुग तो या दोरा आऊँ सल्टे हैं जी कुछ दन की भाई दुख फलाना आई ने सल्टे तो दी इच वक्त तो दायरा वंद्रे शु भी इफो उमर आबिरा सादे भत्ते ढलेगी भी त दी उटो अबेल्ले हैं दी फोसो ले जूं शे मस्त आऊँ घड़ी हैं जी हैं दू बर्ताव हैं जी मोड़े दा सादे रूठे तारिनी आदर लहरिनी दो दू क्वाज दा सादे दाव भावना तारिन सहित दू भत्ते वे रूठेगा पशो दो इमिना खास खास खबर केंद्रीय रुनी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय औषधि नियम सस्कुराव निजोंगा दिरी संशोधन लतुर त दि संशोधन होते हैं अनुसूची H2 दायरा व्यापक रूपे बढ़ा शैल जितो यहाँ रे नकली आऊँ घटिया औषध दे तो दुर दो दू प्रसार उटोई रोक लगा सही दो दिरी QR कोड आधारित ट्रे के ट्रेस ढांचा होते हैं औषध दे दू चढ़े श्रेणी शामिल सुजील जितो मंत्रालय कु तो कि भाई संशोधित प्रावधान तहत मादक औषधि रे मनोरोग पदार्थ NDPS अधिनियम कुछ मन आऊँ सस्कुर पिनीजो गाँव तहत अंजा छो भत्ते आऊँ टीकार तो दुर सुअर तो दुर रोगाणुरोधी मादक के आई दुर मनोरोगी औषध तो दुर दीर भत्ते दीरी दियू तहत आप तो मंत्रालय कु तो कि भाई भत्ते कैंसर रोधी कुछ मन आऊँ औषध तो दुर औषधि नियम सस्कुर निंजो गाँव अनुसूची H2 शामिल लसाइल जितो ता खबर तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जुड़ हजार निजो त्रुयु थल जी ऑनलाइन आवेदन नामांकन पेशित दो दी आवेदन न राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलो माध्यमे अंजा 7 जुलाई तचे लेतर सी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर साल दू मुंछी दी राशयुआ आऊँजी सकूल आऊँ सकूल शिक्षा क्षेत्र आईने रूठे कम लादो राऊँजी त नवाचार

लाहौली कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम शिमला ट्यून किया है आपने। 7:05 होने वाले हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र अंग्रेजी समाचारों के लिए। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा
1: नमस्कार।
0: किसान भाइयों, आज के अंक में मैं हूँ हेमलता शर्मा।
1: और मैं राजेंद्र।
0: राजेंद्र जी, क्या हाल चाल है?
1: हेमलता जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और हम आशा करते हैं कि हमारे किसान और बागवान श्रोता भी ठीक ठाक होंगे। इस समय हमारा कार्यक्रम ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि हेमलता जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर रोज एक महत्वपूर्ण विषय कृषि, बागवानी और पशुधन से संबंधित लेकर आते हैं।
0: जी, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों को अच्छी से अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाएं, ताकि वो खेती और बागवानी के कार्यों में सुधार कर सकें। और किसान भाइयों, गर्मी का मौसम चला है, गर्मी के मौसम में अपना पशुधन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आजकल आप जानते हैं कि 5 बजे से पहले ही सुबह हो जाती है और पक्षी चहचहाने लग जाते हैं, तो आप जल्दी से सुबह जल्दी उठें, और दिन में 10 बजे के बाद तो आप जानते हैं खेतों में नहीं जाया जाता है। अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, काम की बातों में बात करेंगे, पुष्प उत्पादन से दुगनी आय, साथ में मनोरंजन करवाएंगे प्यारे से लोकगीत के साथ, और जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय रहेगा पौ संरक्षण में वनस्पतियों का प्रयोग। बातचीत में भाग लेंगे डॉक्टर रितेश गुप्ता, और उनसे बातचीत करेंगे राजेंद्र।
1: फूल उत्पादन का खासकर हिमाचल प्रदेश में काफी महत्व है। प्रदेश के किसान फूलों की खेती द्वारा अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को फूलों की खेती का ज्ञान होना भी इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किसानों को फूलों की खेती पर एक प्रशिक्षण लेना भी बहुत जरूरी होता है, जिससे उन्हें फूलों की प्रकृति के बारे में ज्ञान हो, क्योंकि फूलों की खेती बिल्कुल गिने चुने मापदंडों पर आधारित होती है। जैसे आज किसान ने कोई फूलों की फसल खेत में लगाई है, तो उसे हिमलता जी ये पता होना चाहिए कि उसका उत्पाद किस दिन तैयार होगा, उसके बाद कब टूटेगा और उसका किस प्रकार से वो मंडी में जाएगा।
0: जी,
1: तभी उसे अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। उसे ये तभी पता लगेगा जब उसे फूलों की खेती आधारित कोई प्रशिक्षण लिया हो।
0: जी किसान भाइयों, वैसे तो फूलों की खेती अन्य फसलों की खेती की अपेक्षा अधिक आय देने वाली होती है, परंतु फिर भी किसान कुछ विधियों को अपनाकर दुगनी ही नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा आय अर्जित कर सकते हैं। फूलों की बात की जाए तो फूलों की खपत के अनुसार अपनी खेती के कुछ कार्यकलापों को खपत के अनुसार बदलाव लाकर करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अक्टूबर नवंबर महीनों में त्योहारों व उत्सवों के समय बाजारों में फूलों की अधिक मांग बढ़ जाती है। और किसान भाइयों, आप जानते हैं कि फूल जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे काम आते हैं। और रही बात त्योहारों की, तो त्योहारों में तो आप जानते हैं जन्माष्टमी हो, दिवाली हो, कोई भी उत्सव हो, तो काफी सारे फूल जो है हमारे बाजारों में बिकने के लिए आते हैं, और आप उससे अधिक आय कमा सकते हैं। किसानों को अपनी बुआई के समय में परिवर्तन करके इस प्रकार से बुआई करें, ताकि उनका जो उत्पादन है उसी समय हो, जिससे वो अधिक आय प्राप्त कर सके। यदि गुलाब की खेती की बात की जाए, तो विश्व के साथ भारत में भी गुलाब के फूलों की मांग को देखकर ही की जाती है।
1: जी हाँ, बात चल रही है पुष्प उत्पादन की, तो हमारे किसान भाई पॉलीहाउस में भी खेती करते हैं। हमारी सरकार पॉलीहाउस खेती की तरफ बहुत ध्यान दे रही है, ताकि किसान इसी विधि को अपनाकर अधिक लाभ अर्जित कर सके। किसानों को पॉलीहाउस का उपयोग करना चाहिए, और फूलों की खेती में इसका अधिक उपयोग भी होता है। पॉलीहाउस में बेमौसमी फसल पैदा की जा सकती है, क्योंकि पॉलीहाउस में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश

0: प्रकाश की जरूरत के अनुसार उसे नियंत्रित किया जाता है। ये कीड़ों और बीमारियों से भी फसलों को बचाने में काफी हद तक सहायक सिद्ध हुई है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक वातावरणीय पॉलीहाउस लगाए जाते हैं, जिनमें ज्यादा लागत और बिजली की खपत नहीं होती। किसानों को इन पॉलीहाउसों का प्रयोग जरूरत के अनुसार करना चाहिए। जैसे गुलाब उत्पादन में पॉलीहाउस गुलाब के पौधों को पाला आदि से भी ये सुरक्षित रखते हैं।
1: जी, किसान भाई, यदि प्रकाश नियंत्रण की बात की जाए तो बेमौसमी फूल उत्पादन करना, कुछ फूल प्रकाश नियंत्रण के द्वारा भी बेमौसमी समय पर उत्पन्न किए जा सकते हैं। इनमें गुलदाउदी मुख्य है। एक साथ सारे खेत की बुआई रोपाई करने की अपेक्षा लंबे समय तक लगातार फूल उत्पादित होते रहते हैं। किसान स्थानीय फूल विक्रेताओं तथा होटलों में लगातार सारा समय फूलों की आपूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार के विभाजन करने से किसानों को अधिक मजदूरों की भी जरूरत नहीं पड़ती और सारा काम जब सभी में बंट जाएगा तो घर के सदस्य ही सारा काम कर सकते हैं। यदि हम सहकारी खेती की बात करें तो सहकारी खेती का मतलब होता है कि मिलकर खेती करना। यदि 30 से 35 किसान किसी स्थान विशेष में मिलकर खेती करें तो उन्हें कई गुना लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर 30 से 35 किसान मिलकर फूलों की खेती करें तो उनमें से कुछ किसान विभिन्न फूल उत्पादन करके, कुछ बीज उत्पादन, कुछ प्रवर्धन सामग्री पर कार्य करके, अगर कुछ इन सभी किसानों का उत्पाद बाजार में ले जाने का काम करें तो सभी किसान लाभान्वित होंगे और खेतों में कार्य करने का समय बचेगा, जिससे ज्यादा उत्पादन होगा और अधिक आय भी मिलेगी और धोखाधड़ी से भी छुटकारा मिल सकेगा। किसान भाइयों, ये तो थी जानकारी। पुष्प उत्पादन से दुगनी आय आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो अब आपको इंतजार होगा प्यारे से लोकगीत का। तो आइए सुनते हैं समूह स्वरों में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: अभी आपने सुना ये प्यारा सा लोकगीत।
1: किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय है पौध संरक्षण में वनस्पतियों का प्रयोग। बातचीत में भाग ले रहे हैं डॉक्टर रितेश गुप्ता और उनसे बातचीत कर रहे हैं राजेंद्र।
0: आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रितेश गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: नमस्कार।
0: किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है वो है पौध संरक्षण में वनस्पतियों के प्रयोग के बारे में। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आजकल किसान पौध संरक्षण में नई तकनीक के प्रभावशाली रसायन प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे में वनस्पतियों द्वारा पौध संरक्षण का क्या महत्व है?
2: सबसे पहले मेरे किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो जहां 1960 और 70 के दशक में हमारी हरित क्रांति आई थी और हमारी पैदावार कई गुना बढ़ गई थी, क्योंकि हम लोग उस वक्त बहुत सारे कीटनाशक, बहुत सारी खादों, रासायनिक जितने भी रसायन हैं उनका प्रयोग कर रहे थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि उन रसायनों के प्रयोग के बावजूद भी हमारी जो पैदावार है वो बढ़ नहीं रही है, बल्कि कम हो रही है। तो ऐसे समय में हमें आवश्यकता पड़ी इसके बारे में सोचने की, और इसलिए जैविक खेती के ऊपर हम लोग आए। हमारे जो साइंटिस्ट वर्क था उन्होंने इसके ऊपर मंथन किया और उसके परिणाम स्वरूप एक बात और निकल के आई कि हमारी जो वनस्पतियां हैं उनको हम कैसे पौध संरक्षण में, जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, हम जब अपनी पैदावार लेते हैं, कृषि की उपज लेते हैं, तो कैसे उसको उनके द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा उसको संरक्षण कर सकते हैं हम अपने पौधों का।
0: जी,
2: ऐसे जो हमारे जितने भी तरीके हैं ये सारे जैविक खेती के अंतर्गत आते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, ऐसी कौन कौन सी वनस्पतियां हैं जिन्हें हमारे किसान पौध संरक्षण के लिए प्रयोग कर सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। मैं अपने किसानों को ऐसी उन वनस्पतियों के बारे में बताना चाहूंगा जो एकदम आम तौर पर उनके आसपास उपलब्ध रहती हैं, यहाँ तक कि उनके घरों में भी वो रहती हैं। जिस तरह से अगर हम गर्म क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ सफेदे के वृक्ष बहुत ज्यादा रहते हैं, नीम बहुत होता है, उससे मध्य जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर द्रेक के वृक्ष रहते हैं, या फिर गेंदा जिसके पौधे तकरीबन हर घर में लगे रहते हैं, घनीरी है, बिच्छू बूटी है, हींग, हल्दी, लाल मिर्च, तुलसी, पुदीना, लहसुन, अखरोट, गिलोय एक बहुत इंपॉर्टेंट पौधा, देवदार जो हमारे ठंडे क्षेत्रों में बहुतायत में रहता है, और रीठा, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। छूछ एक और पौधा है जो हमारे हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका दूध जो है वो बहुत विषैला होता है कीटों के संरक्षण के लिए।
0: जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने बात की कि सफेदा है, नीम है, गेंदा है, तो बात करें सफेदे की, तो इसमें कौन से कीटनाशक गुण होते हैं?
2: देखिए, जो सफेदा का वृक्ष है ये तकरीबन हमारे हिमाचल प्रदेश में जो निचले क्षेत्र हैं और मध्य क्षेत्र हैं उन सभी जगह ये वृक्ष पाया जाता है। इसके पौधे के पत्तों में एक तेल होता है जिससे अर्क निकाला जाता है, और उससे जितने भी हमारे भंडारित अनाज के जो कीट हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पत्तों को खेत में मल्च करने से, मतलब खेत में मिला देने से, हमारे बागीचों और घरों से जो है हम दीमक को दूर भगा सकते हैं।
0: जी
2: हाँ जी। इसके अलावा जैसे नीम है, नीम के

0: नीम के बीज में 45% तेल होता है। ये भी सभी जानते हैं कि नीम तकरीबन तकरीबन पौधों की जितनी भी लगने वाली बीमारियां और कीड़े हैं उनको ये कंट्रोल में करता है। और द्रेक है, वो भी एक बहुत इसी तरह का जो पौधा है जिसके पत्तों को पानी में उबाल कर रात भर हम उसे रखें और सुबह अगर अपनी फसल पर उसका 5% घोल स्प्रे करेंगे तो बहुत सारे कीड़ों को हम जो है अपनी फसलों से दूर भगा सकते हैं। गेंदा, जिसके गेंदे की हम बात करते हैं, तो गेंदा टमाटर की फसल में, आलू, बैंगन, शिमला मिर्च की फसल में एक कीड़ा लगता है जिसको हम फल छेदक सुंडी कहते हैं।
1: जी जी।
0: हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, उसका चने की सुंडी उसको वो कहते हैं। उसके कंट्रोल में अगर हम हर फसल की 10 पंक्तियों के बाद एक पंक्ति गेंदे की लगाते हैं तो वो कीड़ा अपने आप कंट्रोल हो जाता है। और इसके अलावा एक और इसका गेंदे का बहुत बड़ा फायदा है, हमारी मिट्टी में जो है वो सूत्रकृमि होते हैं जिनको हम नेमाटोड्स कहते हैं, उनका भी ये गेंदा बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। ऐसे बिच्छू बूटी है, देखिए हमारे ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में बिच्छू बूटी बहुत मात्रा में, और इसका तकरीबन कोई खास उपयोग नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन ये हर जगह उगती है। तो उसको बिच्छू बूटी और गौमूत्र की बराबर मात्रा को लेकर के उसको रात भर रखिए और अगले दिन उसको, ज्यादा आपको देर नहीं लगानी है, ज्यादा दिन रखेंगे तो उसकी कार्यशीलता कम हो जाएगी, उसको अगले दिन उसे आप यूज कीजिए। और जितने भी जैसे मटर में सफेद चूर्ण, जो पाउडरी माल्डू जिसको बीमारी हम कहते हैं, चूर्ण चलिता रोग आता है, या झुलसा रोग आता है जिसको अल्टरनेरिया ब्लाइट हम कहते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। लाल मिर्च है, लाल मिर्च को 10% घोल, अगर अपने ज्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप किसान भाई ना यूज करें क्योंकि ये बहुत तीखा होता है और आपके पौधों को जला, तो 10% उसका घोल आप जो है, 10% का मतलब है 100 मिलीलीटर 1 लीटर पानी, या 10 लीटर 100 लीटर पानी, तो उसका घोल बना करके जितने कटुआ कीड़े हैं जो नर्सरी में आपके पौधों को काट देते हैं, जमीन पर गिरा देते हैं और आपकी फसल खराब हो जाती है, उसके कंट्रोल में आप कर सकते हैं। तुलसी है, पुदीना है, पुदीने के मेडिसिनल जो औषधीय गुण है वो हम सभी जानते हैं, तुलसी के औषधीय गुण हम सभी जानते हैं, उसके अलावा इनमें कीटनाशक और हमारी जो पौधों में लगने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं उनका हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। पौधों में लगने वाले तेला है जिसे हम एफिड्स कहते हैं, और इसके अलावा जो पौधों में सुंडियां लगती हैं, झिल्लियां जिनको हम कहते हैं, विभिन्न प्रकार की उसके पत्तों को वो कैटरपिलर्स खाती हैं, तो उनका, इन औषधीय पौधों का अर्क बना लेने से या इनका घोल बना लेने से, उनको स्प्रे करने से हम अपने जो फसल के जो पौधे हैं उनको हम बचा सकते हैं और अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। अखरोट, देखिए मैं अखरोट के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा अपने किसानों को। ठंडे क्षेत्रों में अखरोट के वृक्ष तकरीबन तकरीबन हर किसान के खेत में कहीं ना कहीं वो रहते हैं, तो अखरोट के पत्तों को अगर जैतून का तेल थोड़ा सा उस पे मल दें और अपने भंडार कक्ष में, जो भंडार जो गोडाउन है उसमें, वहां वो पत्ते उस कंटेनर में जिसमें वो अपना अनाज भंडारित करते हैं हमारे किसान, उसमें उन पत्तों को डाल दें तो वो जितने भी भंडारित अनाज में लगने वाले कीट हैं उनको बहुत आसानी से ये कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा, एक इंटरेस्टिंग प्रयोग देखने में आया है कि जो लोग मुर्गी, किसान मुर्गियां पालते हैं, उनके पिंजरों में भी अगर हम अखरोट के पत्ते डालते हैं तो उससे जो जुएं लगती हैं उनमें मुर्गियों में, वो भी कंट्रोल हो जाती है। गिलोय एक बहुत इंपॉर्टेंट, अमृतावेली इसको हमारे संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है, बहुत ही अच्छा औषधीय पौधा है और जंगलों में हमारे बहुत होता है। उसकी 200 ग्राम कटी हुई बेल को 1 लीटर पानी में मिलाने से अगर हम स्प्रे करते हैं तो हमारे बहुत सारे बीमारियों की और कीड़ों की जो रोकथाम है वो फसल में होती है। तकरीबन 10 से 15 किलो अगर आप बेल काट कर रखते हैं तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र को उससे उपचार किया जा सकता है। इसी तरह रीठा है, रीठे को का अर्क अगर आप बनाते हैं तो गोभी वर्गीय परिवार में लगने वाले जो एफिड्स होते हैं, तेला होता है, या एक डायमंड बैक मॉथ होती है जो गोभी में बहुत नुकसान करती है, उसकी जो सुंडियां हैं, तो उसको अगर आप रीठे का अर्क उस पे लगाते हैं, स्प्रे करते हैं तो उससे वो कंट्रोल होती है। ऐसे बहुत सारे हमारे वनस्पतियां हैं।
1: डॉक्टर साहब, वनस्पतियों द्वारा पौध संरक्षण के और क्या क्या फायदे होते हैं?
0: ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हम लोग ने अभी बात की वनस्पतियों से किस तरह से हम लोग जो है पौध संरक्षण कर सकते हैं। इसमें पौध संरक्षण के अलावा जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे जब हरित क्रांति आई तो हमने अपनी पैदावार बढ़ाई, लेकिन हमारा जो पर्यावरण था उसमें असंतुलन पैदा हो गया। हमारा जो पारिस्थितिकी या तंत्र है जिसको हम इको सिस्टम कहते हैं, उसमें एक भोजन श्रृंखला बनी रहती है जिसमें हर जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, तो वो हमारा तंत्र जो है वो उसका एक संतुलन था प्रकृति में, वो बिगड़ गया और उस संतुलन के बिगड़ने से पूरी खाद्य श्रृंखला गड़बड़ी हो गई, और उसकी गड़बड़ी होने से आज हमारे पास स्थिति ये है कि कुछ कीट जो पहले नहीं होते थे वो आज बहुत मात्रा में हो रहे हैं, बीमारियां जो पहले नहीं होती थी आज वो आम है। तो सबसे बड़ा इसका फायदा ये है, जब हम जैविक खेती करते हैं, वनस्पतियों द्वारा पौध संरक्षण करते हैं, हम अपने इको सिस्टम को, अपने पारिस्थितिकी तंत्र को, अपनी नेचर को, अपनी प्रकृति को संतुलन में लाते हैं। और और दूसरा इसका सबसे

0: बड़ा फायदा है कि जो हमारी मृदा है, जो मिट्टी है, हमारे किसान भाई जिसके ऊपर खेती करते हैं, वो हमारी मृदा जो है वो उसका उपजाऊपन जो है वो बढ़ता है, वो स्वस्थ होती है और उससे बहुत लंबे समय तक टिकाऊ खेती जो है वो ले सकते हैं हमारे किसान। इसके अलावा जिस तरह से रासायनिक जो पेस्टिसाइड्स हैं हमारे फार्मर्स यूज करते थे, उसमें सिर्फ एक वो किसी एक कीट विशेष को या बीमारी को वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर आप वनस्पतियों द्वारा पौध संरक्षण करते हैं तो एक ही वनस्पति द्वारा कई तरह के कीड़े, कई तरह की बीमारियां और इसके अलावा बहुत सारे खरपतवार जो आपकी फसलों में होते हैं साथ
1: जी।
0: में, और इवन यहां तक कि जो रोडेंट्स हैं जिनको हम बात करते हैं, चूहे जो फसलों में नुकसान करते हैं, वो भी इससे कंट्रोल होते हैं। और जैसे हमने टमाटर में बात की कि टमाटर को के साथ गेंदा अगर लगाते हैं 10 पंक्तियों के बाद एक पंक्ति, तो नेमाटोड का कंट्रोल होता है जिसको हम सूत्रकृमि कहते हैं। वॉर्म्स एक तरह का वो कीड़ा होता है, जैसे इंसानों में, जानवरों में एक पेट में कीड़ा पाया जाता है, वैसे ही वो मिट्टी में रहता है और पौधों की जो ग्रोथ है, जो उनकी पैदावार है, उस पे उसका असर पड़ता है और उससे जो है वो फसल जो है वो बहुत कम होती है, तो उसको भी इससे कंट्रोल किया जा सकता है बहुत अच्छी तरह से। इसके अलावा एक बहुत अहम बात वो हमारे स्वास्थ्य की, जब हम इस तरह से जैविक खेती की तरफ जाते हैं, वनस्पतियों की तरफ जाते हैं, तो हमारी सेहत जो है वो मेंटेन रहती है, हमारे इस सेहत के ऊपर इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ये हमारे पर्यावरण को और भी ज्यादा संतुलन में लाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं और हमारी जो सेहत है वो इसके परिणाम स्वरूप सुधर जाती है।
1: डॉक्टर साहब, आजकल कीट प्रबंधन के लिए जैविक वानस्पतिक सूत्र भी प्रयोग में लाए जा रहे
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: उनके बारे में बताएं।
0: देखिए, आजकल हमारे जो ये युग है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का युग है। आजकल हमारे किसान भाई पढ़े लिखे हैं, उनमें बहुत जागरूकता है और विभाग भी हमारा जो है वो पूरी तरह से भरकस प्रयत्न कर रहा है कि हमारे किसानों को इसके बारे में हम बताएं। ऐसे अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत तरह के फॉर्मुलेशंस जो सूत्र हैं वो आपको मिलेंगे, जिस तरह पंचगव्य है, बीजामृत है,
1: जी
0: जीवामृत है,
1: जी
0: ये तो जो जिनकी मैंने अभी ये नाम लिए, इन ये फॉर्मुलेशंस जो हैं ये तो बनती हैं गोबर गौमूत्र से। इसके अलावा जैसे हम वनस्पतियों की अभी बात कर रहे हैं,
1: जी
0: तो जो वनस्पतियां हमारे आम है, देखिए एक मैं आपको 3-4 अभी ऐसी सूत्र बताता हूं। एक अर्क, आप लेंटाना, हमारे किसान भाई जो गर्म क्षेत्रों से हैं, लेंटाना एक पौधा होता है जिसको चुड़ैल बूटी भी कहते हैं, पंच फूल भी उसको कहते हैं, जो हमारी वेस्ट लैंड्स हैं, घासनियां थी जहां पहले, वो अब नहीं है, वहां ये उगता है। इसके 5 फूल में 5 तरह के रंग होते हैं और काले काले इसके बीज रहते हैं और ये तकरीबन बहुत मात्रा में सारी घासनियों को इसने कवर कर लिया है। इसके पत्तों का चूर्ण बना लीजिए और उसे 5 गुना राख में उस चूर्ण को मिला करके हमारे किसान भाई, हमारे जो जितने भी दाल वर्गीय पौधे हैं, मटर है या कोई और दाल वर्गीय पौधे हैं, उनके ऊपर अगर इसको भुड़क देंगे, इसको छिड़क देंगे, तो बहुत सारे कीटों से सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा इसका अर्क अगर बनाना चाहें वो, तो 12 लीटर पानी में 12 लीटर गौमूत्र ले लीजिए, आप किसान भाई इसे नोट कर लें, 12 लीटर पानी और 12 लीटर गौमूत्र के घोल में 4 किलो कटे हुए लेंटाना यानी पंच फूल के पत्ते किसान भाई डालें और इसे डाल करके रख दें। 15 दिन के बाद इसे छान लें और 10% मात्रा का छिड़काव फसलों पर करें। 10% याद रहे, 10% ही करना है किसान को, मतलब अगर 1 लीटर पानी है तो 100 मिलीलीटर अर्क लेना है और अगर 100 लीटर पानी है तो 10 लीटर अर्क जो है वो आपको उसमें मिलाना है और उसका छिड़काव। एक तो ये हो गया किसान भाइयों के लिए लेंटाना का अर्क, चुड़ैल बूटी का अर्क। दूसरा, एक ठंडे क्षेत्रों की तरफ आते हैं हम, तो उसमें एक पौधा होता है जिसे हम घनीरी कहते हैं, हमारे किसान जानते हैं, उनकी खेतों की मेड़ों पर या जहां कूले हैं, जहां पानी थोड़ा नमी जिस मिट्टी में जहां रहती है, खेत की मेड़ों पर या कहीं, वहां पर एक छोटे छोटे से पौधे रहते हैं, उसमें गुलाबी रंग के छोटे छोटे दाने से निकल आते हैं जिसे हम घनीरी कहते हैं और ये तकरीबन किसी काम का नहीं है ये पौधा किसानों के लिए, तो इसका इसमें भी औषधीय गुण है और कीटनाशक गुण भी हैं। तो मेरे किसान भाई 4 लीटर गौमूत्र लें और 4 लीटर पानी का घोल लें, उसमें गौमूत्र को 4 लीटर पानी में मिलाएं और उसमें 2 किलो पिसे हुए घनीरी के पत्ते, 4 लीटर गौमूत्र, 4 लीटर पानी और 2 किलो ताजे पिसे हुए घनीरी के पत्ते उसमें डाल दें। इस घोल को किसान भाई ढककर रख दें, इसमें हवा ना जाए और इसे तकरीबन 1 हफ्ते के बाद छान लें और जो है वो इसकी 5% मात्रा, मतलब 5 लीटर 100 लीटर पानी में इसको मिला करके किसान भाई जो है वो अगर स्प्रे करते हैं, तो हमारे सरसों में जितना देखिए एफिड का बहुत जो तेला है उसका बहुत प्रकोप रहता है, तो उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा गोभी वर्गीय फसलों में भी जो तेले का प्रकोप रहता है, या हम अगर सुगंधित पुष्पों की बात करें तो गुलाब की फसल में तेला रहता है, तो वहां अगर इसको

0: वो स्प्रे इसका छिड़काव करें किसान भाई, तो बहुत अच्छे से इसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत और एक प्रभावशाली अर्क है, सूत्र है, जिसे जैविक फॉर्मुलेशन सूत्र कहते हैं हम। तो उसके लिए किसान भाई वो भी फॉर्मूला नोट करें, 10 लीटर गौमूत्र में 3 किलो पिसे हुए नीम या द्रेक के पत्ते। देखिए, नीम तो आपको मिलेगा गर्म क्षेत्रों में, द्रेक आपको ठंडे क्षेत्रों में भी मिल जाएगा। तो किसान भाई 10 लीटर गौमूत्र में 3 किलो पिसे हुए नीम या द्रेक के पत्ते लें,
1: जी
0: 1 किलो नीम के बीजों का उसमें चूर्ण डालें और उसे उसका एक घोल बना लें। उस घोल को किसान भाई उबालें और उसे तब तक उबालें जब तक वो आधा ना रह जाए। अब वो आपका जो घोल है उस आप उसे साइड में रख लीजिए। उसके अलावा 1 लीटर पानी में 200 ग्राम लहसुन और 200 ग्राम लाल मिर्च का घोल बनाएं और
1: जी
0: उस घोल को जो आपने अभी उबाल कर जो हम जिस घोल की बात करते हैं उसमें इसको मिला दें। जब ये आपका घोल तैयार हो जाएगा उसे अच्छी तरह से मिश्रित करें और उसमें 100 लीटर पानी आप डाल दें। अब आपका जो ये सूत्र है ये तैयार है। और जितने भी तरह के कोई भी किसी भी तरह के कीट हैं या बीमारियां हैं जो हमारी फसलों पर लगती हैं उन सभी के लिए ये बहुत प्रभावी जो है वो जैविक कीटनाशक है। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिसे हम दशपर्णी कहते हैं।
1: जी
0: मतलब हमारे किसान भाई कोई भी 10 वनस्पतियां ले सकते हैं जो उनके आसपास हो, जो उन्हें लगता है कि उनमें कोई ना कोई गुण है। तो जैसे उनको एग्जाम्पल देता हूं, द्रेक है या बेशरम बूटी है जो हमारे निचले पर्वतीय क्षेत्रों में पानी के किनारे उसके गुलाबी फूल होते हैं वो है, गनीरी है जिसकी हमने अभी बात की, अखरोट है, बिच्छू बूटी है, पंचफुली है, काली बसूटी है, निरगुंडी है, गिलोय है, अमरूद है, या कोई और जिस छूछ जिसकी हम बात कर रहे थे। ऐसे जितने भी औषधीय पौधे हैं तकरीबन 10 उनको पौधों को आप लें और 10 पौधों के पत्तों में आप तकरीबन 2 लीटर गौमूत्र और 10 लीटर पानी उनको मिलाएं और 100 ग्राम ये जो आपके पत्ते हैं वो 100 ग्राम होने चाहिए 10 लीटर पानी में 2 लीटर गौमूत्र।
1: जी
0: तो इसमें आप 250 ग्राम लहसुन और 250 ग्राम लाल मिर्च का पाउडर डालें और उसे 10 दिन तक किसान भाई रख दें और उसके बाद जो है वो आपका ये जो सूत्र है वो तैयार है। और इसे आप जो है छान करके जो है किसान भाई हमारी फसलों पे कीटों के लिए या बीमारियों के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये उनको कंट्रोल करने के अलावा उनको खाने से भी रोकता है, यानी उनको आपकी फसलों से दूर भगाता है। तो ये
1: जी
0: कुछ हमारे जो जैविक सूत्र थे, वनस्पति सूत्र थे, उनकी हमने बात की। तो हमारे किसान भाइयों के आसपास ये आसानी से उपलब्ध हैं, वो इनका उपयोग करें और अपनी फसलों को जो है वो हानिकारक कीटों से या बीमारी से बचाएं।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने पौध संरक्षण में वनस्पतियों के प्रयोग के इतने महत्वपूर्ण
0: जी
1: जानकारी हमारे
0: जी
1: किसान और बागवान भाइयों के साथ साझा की। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका भी धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, ये तो सुनिए आपने जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था पौध संरक्षण में वनस्पतियों का प्रयोग। बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर रितेश गुप्ता और उनसे बातचीत कर रहे थे राजेंद्र। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी पूर्ण बातचीत से अवश्य लाभ उठाएंगे, क्योंकि जानकारी का होना हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। समय की बचत होती है, कार्य अतिशीघ्र हो जाता है।
1: जी, कार्यक्रम में पुनः समय हो चला है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं कृष्ण सिंह ठाकुर की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाई, ये तो सुना आपने कृष्ण सिंह ठाकुर की आवाज में प्यारा सा लोकगीत। तो अब बात कर लेते हैं कल के मुख्य आकर्षणों की। काम की बातों में बात करेंगे रासायनिक विधि द्वारा कीट नियंत्रण, साथ में मनोरंजन करवाएंगे प्यारे से लोकगीत के साथ। जानकारी पूर्ण बातचीत का विषय रहेगा दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या और उनका निवारण।
1: तो हिमलता जी, घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति की ओर। सभी अपने किसान बहनों भाइयों से अनुमति चाहेंगे।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता दीप

कृषि जगत कार्यक्रम अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम शिमला ट्यून किया है आपने। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:42 होने को हैं। आप कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम एफ 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।

0: चार 1500-1765 हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
0: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या होगा?
2: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
4: हो

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की तर्ज पर प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी। 1975 के आपातकाल की याद में आज मनाया गया संविधान हत्या दिवस। प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा हमीरपुर के बिजड़ी में आयोजित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी संपन्न। केंद्र सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों की दी गई जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा सुरक्षा मजबूत करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था का दायरा बढ़ाया। और शिमला जिले में सेब सीजन को लेकर तैयारी शुरू। इस वर्ष 2,30,000 मीट्रिक टन सेब उत्पादन की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र के नेरीकला में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 टेस्ला MRI और अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले 2 महीनों में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑटोमेटेड लैब स्थापित कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है और विकास कार्यों में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
1: यहाँ विकास बहुत तेजी से होगा। जब से हमारी सरकार आई है, हमने ये प्रयास किया है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो गांव में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस दृष्टिकोण से हमने योजनाओं को स्वरूप देना शुरू किया।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने नेरीकला में करीब 90 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। स्थानीय विधायक विनोद सुल्तानपुरी सहित अन्य नेता व गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा जिले में 250 से अधिक आबादी वाले सड़क से वंचित सभी गांवों के लिए सड़क की DPR तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डलहौजी में आज एक बैठक में उन्होंने बताया कि चंबा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में स्वीकृत 65 सड़क परियोजनाओं में से 61 का कार्य शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया गया है। पठानिया ने जिले में सड़क परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने और वन स्वीकृति से जुड़े लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। 25 जून 1975 के आपातकाल की याद में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। देश सहित प्रदेश में भी इससे जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करना है। अपने संदेश में विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र के इस काले दौर की सच्चाई को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना आवश्यक है, ताकि वे समझ सकें कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है।
2: 25 जून 1975 को मध्य रात्रि पूरे देश के अंदर जो है वो आपातकाल की घोषणा की गई और राष्ट्रपति द्वारा उसको नोटिफिकेशन कर दी गई थी। आज कांग्रेस पूरे देश भर में लोकतंत्र की बहुत बड़ी बातें कर, लेकिन उनके स्मरण में इस बात को मैं जरूर ध्यान में लाना चाह रहा हूँ कि रातों रात लाखों लोग पूरे देश भर में एक रात को ही जेल की सलाखों के पीछे उस वक्त डाल दिए गए थे।
0: दूसरी ओर सांसद अनुराग ठाकुर ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर कभी ना

मिटने वाला कलंक करार दिया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को याद करने का अवसर है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए कई तरह की यातनाएं सही। इधर भाजपा द्वारा आज शिमला के रोटरी टाउन हॉल में आपातकाल पर आधारित विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर हुए हमले, लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष और ऐतिहासिक दस्तावेजों व चित्रों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि लोकतंत्र उन लाखों देशभक्तों के त्याग और संघर्ष का परिणाम है जिन्होंने जेलों में अमानवीय यातनाएं सहते हुए भी लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को आपातकाल के इतिहास से अवगत करवाना समय की मांग है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आगामी 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। इसका उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को सम्मानित और प्रोत्साहित करना है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा हमीरपुर जिले के बिझड़ी में आयोजित 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आज संपन्न हो गई। इस प्रदर्शनी के दौरान केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन व जनकल्याण के 12 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। समापन अवसर पर बिझड़ी के तहसीलदार सुभाष कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजन भारत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक पहलों की जानकारी आम लोगों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महारल में सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों और नशा मुक्ति पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जीरामजी किए जाने और योजना में किए बदलावों पर आपत्ति जताई है। शिमला में आज पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों से हिमाचल प्रदेश पर प्रतिवर्ष 164 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पहले योजना का पूरा व्यय केंद्र सरकार वहन करती थी, जबकि अब हिमाचल जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए व्यय का अनुपात 90:10 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को मौजूदा रोजगार स्तर बनाए रखने के लिए 12,54,00,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गैर जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी दर 320 रुपए से घटाकर 247 रुपए कर दी गई है। अनिरुद्ध सिंह ने आशंका जताई कि नई व्यवस्था से राज्य की वार्षिक वित्तीय देनदारी 800 से 1,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल हो गई हैं। मंत्रालय ने कहा कि संशोधित प्रावधानों के तहत मादक औषधि व मनोरोग पदार्थ NDPS अधिनियम 1985 के अंतर्गत आने वाले सभी टीके, रोगाणुरोधी मादक और मनोरोगी दवाएं शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि सभी कैंसर रोधी दवाओं को औषधि नियम 1945 की अनुसूची H2 में शामिल किया गया है। शिमला जिला प्रशासन ने आगामी सेब सीजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने इस संबंध में आज वर्चुअल बैठक कर संबंधित अधिकारियों से सेब सीजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उपायुक्त ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए सेब सीजन को सफल बनाने और बागवानों को बेहतर
परिवहन व विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। ज़िले में इस वर्ष करीब 2,30,000 मीट्रिक टन सेब उत्पादन का अनुमान है। इस बीच उपायुक्त ने मॉनसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की और

0: जरूरी दिशा निर्देश दिए। चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आज अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को चिट्टे के विरुद्ध शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि चंबा जिला को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए प्रशासन के प्रयास जारी रहेंगे और इस तरह के खेल आयोजन इसमें मददगार बनेंगे।
1: हिमाचल सरकार ने जो लड़ाई शुरू करी है चिट्टे के अगेंस्ट, तो उसी को ओवरऑल सभी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की थीम रखा गया है, ताकि ये जो मैसेज है ये जन जन तक पुलिस के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से पहुंचाया जा सके और सभी लोगों की भागीदारी इस लड़ाई में सुनिश्चित की जा सके। और जो हमारी ये कोशिश है कि चिट्टा मुक्त हिमाचल, चिट्टा मुक्त चंबा हम लोग बना सकें, उस मुहिम के अंदर ये एक बहुत ही कारगर कदम के रूप में साबित होगा।
0: मंडी ज़िले में इस वर्ष करीब 2500 किसानों की 1000 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य है। मंडी में आज जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष 8214 किसानों के 2500 हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की तर्ज पर प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी। 1975 के आपातकाल की याद में आज मनाया गया संविधान हत्या दिवस। प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा हमीरपुर के बिझड़ी में आयोजित मल्टी मीडिया प्रदर्शनी सम्पन्न। केंद्र सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों की दी गई जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा सुरक्षा मजबूत करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था का दायरा बढ़ाया। और शिमला जिले में सेब सीजन को लेकर तैयारी शुरू। इस वर्ष 2,30,000 मीट्रिक टन सेब उत्पादन की उम्मीद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें, अधिकार जानें।
3: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए सुनिए रोजगार समाचार। जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश जल शक्ति मंडल नालागढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार पैरा स्टाफ के पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये सभी पद अंशकालिक आधार पर भरे जाने हैं। पदों का ब्यौरा इस प्रकार से है। पैरा पंप ऑपरेटर के 12 पद, जिसमें से 6 पद सामान्य वर्ग के लिए, 2 पद अनुसूचित जाति, 1 पद अनुसूचित जनजाति, 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 पद आर्थिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए हैं। पैराफिटर के 3 पद हैं, जिसमें से 2 सामान्य वर्ग के लिए और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। इसी प्रकार से मल्टीटास्क वर्कर के 25 पद हैं, सामान्य वर्ग के लिए 11 पद, अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद और आर्थिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए 2 पद भरे जाने हैं। आवश्यक योग्यताएं इस प्रकार से हैं। अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए और किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक अथवा फीटर का डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के मध्य है।

0: अधिक जानकारी के लिए अधिशासी अभियंता जल शक्ति मंडल नालागढ़ के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप ट्यूनिंग है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।

सभी सुनने वालों का स्वागत एक बार फिर 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर। इस समय शाम के 8 बज गए हैं, तो समय हो चला है जी एक बार फिर आप सभी को संगीतमय सफ़र पर ले चलने का। तो चलिए जी, इस खूबसूरत सफ़र का एक बार फिर से आगाज़ करते हैं। और इस सुहाने सफ़र पर मैं रहूँगी आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफ़र रीटा पामा। तो चलिए, ये वायदा है हमारा आपसे कि आज हम बोर आपको बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, अब से लेकर ठीक रात्रि 11 बजे तक। 8:01 और ये समय रहता है भूले बिछड़े गीत प्रोग्राम का, ऐसे नगमे जो आपको ले जाते हैं बीती यादों में। तो चलिए जी, ले चलते हैं आपको बीती यादों में। प्रोग्राम का आगाज़ मुकेश और शारदा के गाए इस गाने के साथ करते हैं। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए एफएम शिमला

0: तो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप भूले बिसरे गीत प्रोग्राम। देखिए, पुराने गीत केवल संगीत नहीं होते, बल्कि ये हमारी यादों, भावनाओं और बीते हुए खूबसूरत पलों का आईना होते हैं। तो आइए, ऐसे ही और आईने भी के गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं इस प्रोग्राम में। फिलहाल गीत तो हम सुनवाएंगे ज़रूर आपको, लेकिन इस संदेश के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: तो आइए जी, पुराने फिल्मी गीतों को भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की ओर और एक और मधुर गीत सुनवाते हैं आपको।

0: तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले पिसरे गीत। उम्मीद है कि ये मधुर नगमे आपको आपके जीवन के खूबसूरत पलों की सैर ज़रूर करवा रहे होंगे। फिलहाल अगला नगमा आपको ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन इस संदेश के बाद।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: तो देखिए जी, भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आधा सफ़र हम तय कर चुके हैं और आधा सफ़र अभी बाकी है। और ये सफ़र हम बहुत ही खूबसूरती के साथ तय करेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर। तो बहरहाल अभी सुनिए ये संदेश और उसके बाद इंजॉय करेंगे प्रोग्राम का अगला नगमा।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: देखिए, कुछ धुनें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती और कुछ यादें कभी भी भुलाई नहीं जाती, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हर दौर में दिलों पर अपना ही राज कायम रखते हैं। तो भूले बिसरे गीत में रोज़ाना ऐसे ही गीत हम सुनवाते हैं आपको, और अभी भी कार्यक्रम बाकी है, लेकिन इस संदेश के बाद।
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

तो देखिए जी, पुराने गीत केवल संगीत ही नहीं होते, बल्कि ये हमारी यादों में बसते हैं। इन गीतों की खासियत ये है कि इनकी मिठास कभी भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि समय के साथ ये गीत बेहतर से बेहतरीन होते जाते हैं।

तो चलिए जी, इसी गीत के साथ अभी के लिए भोले मिश्र गीत प्रोग्राम को देते हैं यहीं पर विराम। एग्जैक्टली हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हो गए हैं और ये समय रहता है एक बार फिर से आपको फिल्म संगीत के सफर पर ले जाने का। चलिए जी, फिल्म संगीत की शुरुआत करेंगे उदित नारायण अलका याग्निक के गाए इस गाने के साथ। आप बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बिल्कुल जी, मौसम बिल्कुल मस्ताना है और उसके साथ साथ बेहतरीन गीतों का भी खजाना है AIRFM शिमला के पास। तो चलिए जी, और गाने भी हैं हमारे पास आप सभी के लिए। बहरहाल अभी सुनिए ये संदेश और फिर एंजॉय करेंगे प्रोग्राम का अगला नगमा।
1: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
2: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

तो देखिए जी, ज़िंदगी के इस भागदौड़ में कुछ पल संगीत के नाम कर दीजिए, क्योंकि सुरों का साथ हर सफ़र को और भी खूबसूरत बना देता है। और हम ये साथ रोज़ाना निभाते हैं आपके साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला के ज़रिए। तो चलिए, गीतों का खजाना है हमारे पास, एक और नगमा सुनवाते हैं आपको।

तो जी फिल्म संगीत का आनंद आप FM शिमला पर ले रहे हैं, और ये गाना सुरेश वाडेकर आशा भोंसले की आवाज़ में इंजॉय किया आपने। तो देखिए अब से कुछ देर बाद यानी 9:15 पर आप एक फिल्म से प्रोग्राम सुनेंगे जिसमें एक ही फिल्म के गाने आप इंजॉय करेंगे आज हमारे साथ, और 9:30 पर आपके दिल की आवाज़, आपके संदेश पहुंचेंगे हम तक दिल की आवाज़ भी सुन प्रोग्राम में। तो हमारा जो आपने अपनी ईमेल्स भेजनी है वो हमारा एड्रेस हम आपको बता देते हैं, airfmshimla@gmail.com। जी हाँ, आप इस एड्रेस पर अपनी ईमेल्स भेजिए, अपने संदेश भेजिए और आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं बिल्कुल लाइव ठीक 9:30 पर। आपके कुछ ईमेल्स के गाने जो पहले प्रोग्राम में शामिल होंगी उनके गाने हम ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बहरहाल 10 बजे तक आपके नाम शामिल करने का समय तो रहता ही है। बहरहाल अभी तो 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9 के लिए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो। हमारी अब आपसे मुलाकात होगी ठीक 9:15 पर। तब तक आप सुनते रहें FM शिमला और कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले

में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साथ अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के CEO एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
5: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
6: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित

FM 심라. 순때 레히에 무스쿠라테 레히에 103.7 MHz FM 심라.

तो जी एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का स्वागत लीजिए। अपने वायदे के मुताबिक हाजिर हैं हम एक बार फिर से आप सभी को संगीतमय सफ़र पर ले जाने के लिए। हमारे स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 9:16 हो चुके हैं और ये समय रहता है एक फिल्म से कार्यक्रम का। इस प्रोग्राम में एक ही फिल्म के गाने हम सुनवाते हैं आपको और उस फिल्म की स्टोरी की बात भी करते हैं थोड़ी सी आपसे। तो बहरहाल जब बातें गाने की हो रही है तो कार्यक्रम का आगाज़ तो हम गीत से ही करेंगे। तब तक आप घर पर बैठकर अंदाज़ा लगाइए कि कौन सी है हमारी आज की फिल्म। तो पहले गाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद ढेर सारी बातें होंगे फिल्म के बारे में।

0: सुशील, उदित नारायण की आवाज़ में था ये गाना और इस गाने से पहचान ही गए होंगे आप कि आज हम बात करेंगे 1992 की हिंदी रोमांटिक एक्शन फिल्म जिसका नाम था दीदार। जी हाँ, ये फिल्म 1992 में बनी थी जो प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा डायरेक्ट की गई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, अनुपम खेर, लक्ष्मीकांत बेर्डे, गुरबच्चन सिंह, डैन धनोआ, करिश्मा कपूर, तनुजा ने अपना जो है अभिनय का दमखम दिखाया। ये फिल्म अक्षय कुमार की पहली फिल्म मानी जाती है और इस फिल्म का जो संगीत दिया आनंद मिलन ने दिया। ये इस फिल्म के ज़्यादातर गाने उदित नारायण और साधना सरगम द्वारा गाए गए और ये एक बेहतरीन फिल्म थी और इस फिल्म के गाने लगभग लगभग हिट थे। तो जी, बात हो रही है दीदार फिल्म की, तो क्यों ना एक और गाना इसी फिल्म से आपको सुनवा जाए। लेकिन उससे पहले ही सुनेंगे संदेश और फिर गाना भी सुनवाएंगे आपको।
1: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
2: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

तुझे आज एक फिल्म से कार्यक्रम में आपने दीदार फिल्म के गाने सुने जो 1992 में आई थी। ये एक रोमांटिक और एक्शन फिल्म थी, करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार की लगभग साथ काम करने वाली ये पहली फिल्म थी। इसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में एक साथ काम किया, लेकिन पहली बार अगर उन्होंने एक साथ स्क्रीन शेयर की तो दीदार फिल्म में। तो बहरहाल चलिए जी, अभी इसी गीत के साथ एक फिल्म से कार्यक्रम को देते हैं यहीं पर विराम। उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। बहरहाल 9:30 होने वाले हैं, समय रहता है दिल की आवाज़ भी सुन प्रोग्राम का। जी हाँ, आपके दिल की आवाज़ पहुँचेगी हम तक आपकी ईमेल के ज़रिए, और हमारी ईमेल आईडी रहेगी airfmshimla.musicmail@gmail.com। तो चलिए जल्दी से हमें मेल भेज दीजिए आपकी पहली कुछ ईमेल्स के गाने जो है हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपकी पसंद के गाने, आपके नाम तो शामिल होंगे ही। बहरहाल अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं जब तक स्टूडियोज़ में बैठ के आपकी ईमेल्स का प्रोग्राम का पहला नगमा एंजॉय करेंगे इस संदेश के बाद।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, यह है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: तो जी जल्दी से अपनी ईमेल भेज दीजिए irfmshimla@gmail.com। और इस सुहाने सफ़र में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफ़र रीटा पामा। तो कर रही हूँ आपकी ईमेल्स का, आपके संदेशों का इंतज़ार। बहरहाल प्रोग्राम का पहला गाना एंजॉय करते हैं।

0: तो देखिए, जैसे ही हमने प्रोग्राम का पहला गाना एंजॉय किया, हमारे पास बहुत सारे जो हैं आपके संदेश पहुंच चुके हैं। और आज सबसे पहले बाजी मारी है आशीष तराश ने, ये रामनगर शिमला से हमें अपने संदेश भेज रहे हैं। इनके साथ है राम और ये भी रामनगर शिमला से हमें अपनी ईमेल भेज रहे हैं। इनके साथ है आशीष, ये भी हमें रामनगर शिमला से ईमेल भेज रहे हैं। निखिल शर्मा चीनू, ये भी हमें रामनगर लोअर रामनगर शिमला से ईमेल भेज रहे हैं। और हमारे पसंद का ये सभी गाना सुनने के फरमाइश करता थे कि हम इन्हें अपनी पसंद पर कोई भी गाना सुनवा दें। और ये है जी गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, ये कह रहे हैं खुशियाँ बांटो और खुश रहो, ये लिख कर भेजा इन्होंने। इनके बाद है जी गाँव शोभापुर बायपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, ये नागे सौतन फिल्म का गाना सुनने की फरमाइश करता है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में बिल्कुल ज़रूर सुनवाएंगे आपकी पसंद का गाना। ये है जी टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जसवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, ये कालका से और मोहाली चंडीगढ़ सेक्टर 67 से हमें ई मेल भेजे हैं हमारी पसंद का गाना सुनने की ये फरमाइश करता है। और इनके बाद जो अगली ईमेल है, ये गंगाधर ये में कर, प्रमोद ये में कर, प्रदीप ये में कर, ये महाराष्ट्र मेन बाज़ार कुंडलवाड़ी से हमें ईमेल भेज रहे हैं। आरजे जी नमस्कार, आप हमारे नामों को गीतों में शामिल कर लीजिए, कर लिए जी आपके नाम हमने शामिल। और ये है मेरठ कैंट से एक बार फिर से ये है जी नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहवकार, निर्मला नहवकार, विशाल नहवकार और मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े, नारायण इगले, आशीष मोहरेकर, ये हमें ईमेल भेज रहे हैं। और अगली ईमेल जल्दी से करते हैं कार्यक्रम में शामिल, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, कितिका खोरवाल, ये भी हमने अभी हमें अपनी ईमेल भेज रहे हैं और हमारी पसंद का गाना सुनने की फरमाइश करता है। कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वैदिका फूलमाली भी हमें ईमेल कर रहे हैं। चलिए जी, आपकी ईमेल प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं। मोरा फिल्म का गाना सुनने की फरमाइश करता है, ये बिल्कुल सुनवाएंगे आपको मोरा फिल्म का गाना। लेकिन अभी हमारे श्रोता की पसंद पर जो उनकी फरमाइश आई है सौतन फिल्म की, ये गाना ज़रूर सुनवाएंगे लेकिन इस संदेश के बाद।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा,
2: आज ही आवेदन करें हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

तो चलिए जी, सौतन फिल्म का ये गाना एंजॉय किया हमने, और बहुत सारे और भी संदेश पहुँच चुके हैं हम तक, तो ये समय रहता है उनके संदेश शामिल करने का। ये है जी कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली, वैदिका फूलमाली, अहमदापुर के गांव खड़वा से हमें ये ईमेल भेजे हैं। और मोहरा फिल्म, टिप टिप बरसा पानी फिल्म, ये गाना सुनना चाहते हैं ये मोहरा फिल्म का। ये है जी गव्या मल्होत्रा, धन्यवाद जी लिख कर भेजे हैं। ये है अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, और इनके साथ है गव्या मल्होत्रा, जयपाल यादव। हमारी पसंद का गाना सुनने के फरमाइश करता है ये, बिल्कुल हमारी पसंद का गाना सुनवाएंगे आपको। और आप सभी को हमारा नमस्कार। बोरखेड़ा पित्रामल, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से हैं लिखने वाले विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक।

मुरद और चेतन नहाटा धन्यवाद लिखकर भेज रहे हैं हमारी पसंद का गाना सुनने की फरमाइश करता है। ये संजय साहू पोटिया कलादुर्ग से है, ये इन्होंने अपना नाम लिखा है संजय साहू। इनके साथ है जी सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। ये कह रहे हैं हमारी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। भाटा पारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, ये भी हमें ईमेल कर रहे हैं। और इनके बाद है जी गगनदीप थांदी, ये गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर शुभशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वॉमिका और वाणी थांदी, ये हमें ईमेल कर रहे हैं नवाशहर पंजाब से और हमारी पसंद का गाना सुनने की फरमाइश करता है। ये है जी लिवानी छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, ये भी हमें मेल कर रहे हैं। और इनके बाद है जी अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा, ये हमें पानीपत हरियाणा से मेल कर रहे हैं। और इसके बाद जो अगली मेल मिली है हमें ये चंडीगढ़ सिटी से है सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, ये नमस्कार जी लिख कर भेजे हैं और लव AIR FM शिमला लिख कर भेजा है इन्होंने। और ये है जी सनावत से शेख मुसा मोसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाना, ये भी हमें मिल कर रहे हैं हमारी पसंद का गाना सुनने की फरमाइश करता है। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, गांव डागर नीमानवा जिला जिंद हरियाणा से, जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, कोई भी गीत में हमारे नामों को शामिल कर लें, ये लिखकर इन्होंने भेजा है। चलिए जी गीत नाम तो शामिल हो चुके हैं, अब आपको इंतज़ार है अपनी पसंद के गाने का, तो ये रहा मोहरा फिल्म का गाना आपकी पसंद पर।

तो चलिए जी, मोहरा फिल्म का ये गाना एंजॉय किया। और भी ईमेल्स हैं जो हम तक पहुंच चुकी है। ये भेजने वाले हैं सदर बाज़ार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। ये समाधि फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज़ में सुनना चाहते हैं। चुपाड़ी रोडू शिमला से हमें ये मिली है ये ईमेल। गुंजेटा परिवार की इनके नाम है जी, लोभाराम गुंजेटा, जमीता गुंजेटा, अनुज मुकुल और गुंजेटा, तारा देवी गुंजेटा इन्होंने अपना नाम लिखा है। और हमारी पसंद का गाना सुनने के फरमाइश करता है। मुल्लापुर दाखा से है जी राजेश जैन, जैन बिट्टू जैन, संजीव जैन, गोटना जैन, ये हमारी पसंद का गाना सुनने के फरमाइश करता है। इन्होंने अपने नाम लिख दिए हैं। राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, ये संभाजी नगर छत्रपति से हमें ईमेल कर रहे हैं। किसी भी गीत में हमारे नामों को शामिल कर लीजिए। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और ये है जी मजनू कटीला से। इनके साथ है सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। इनके बाद अगली ईमेल जो भेजने वाले हैं, जल्दी से इनकी ईमेल्स भी करते हैं प्रोग्राम में शामिल। और ये है जी गांव हिपर सोगा तहसील ज़िला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख और करिश्मा, इन्होंने अपना नाम लिखा है। और इनके बाद है जी मोहसिन हाशमी, ये भी हमें ईमेल कर रहे हैं नई बस्ती गंजूड डवारा से। और इनके साथ है नाजमा बेगम हाशमी, ये भी हमें ईमेल कर रही है। अशोक डाले भी हमें ईमेल कर रहे हैं। इनके साथ है जी अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, पुनावले पुणे से है जी, अजय सोनवले, करिश्मा सोनवने और अविगा, ये भी हमें ईमेल कर रहे हैं और हमारी पसंद का गाना सुनने के फरमाइश करता है। झज्जर हरियाणा से है जी बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया, हमारे नामों को ज़रूर शामिल कीजिएगा, कर लिए आपके नाम शामिल। सुनील पाठक, कमल पाठक, डॉक्टर आशीष मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, जयपाल यादव, ये हमारे पंजाब से ईमेल कर रहे हैं। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, ये भी हमें ईमेल कर रहे हैं। और इनका ज़िला है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, इन्होंने अपना एड्रेस लिखा है। दीपेश वर्मा हमें ईमेल कर रहे हैं। इनके साथ है पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, ये हमें छत्तीसगढ़ से ही ईमेल कर रहे हैं। फातिमा कॉलोनी श्री श्री रामपुर महाराष्ट्र से है जी नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाही और इनके बाद है जी गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजाफ़र, सुबिया मुजाफ़र, मिखाइल मुजाफ़र, जैनब मुजाफ़र, ये भी हमें नमस्कार लिखकर भेजे हैं।

समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह रोहतास बिहार से, सोनम सिंह, अनामिका सिंह, और शिमला IGMC से हैं जी जगदीश चंद, ये भी हमारी पसंद का गाना सुनने की फरमाइश करता है। पंजाब खेड़ा से परिवार है इनका, भूषण खेड़ा विशु खेड़ा विशाल, माफ़ कीजिए, भूषण खेड़ा विशु खेड़ा विशाल खेड़ा लाड़ी खेड़ा शालनी खेड़ा टिवाशनी खेड़ा, और ये ईमेल कर रहे हैं, और इनके साथ अगली ईमेल जल्दी से करते हैं कार्यक्रम में शामिल, क्योंकि समय हो चला है और आपकी पसंद का गाना भी चलाना है। ये है जी बेताब रेडियो लिसनर क्लब पटना से वसीम अकरम, सालेरा खातून और गुड़िया खातून। चलिए जी, आपकी ईमेल्स प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, अब समय है हमारी श्रोता की पसंद का गाना चलाने का, तो एंजॉय कीजिए समाधि फिल्म का ये गाना।

तो चलिए जी, समय हो चला है इसी गीत के साथ कार्यक्रम को संपन्न करने का। और जो भी श्रोता आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में अपने संदेशों के द्वारा शामिल हुए, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जिनके संदेश आज प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें कहना चाहेंगे आप कल भी हमें संदेश भेज सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव रहता है, समय हमारा बंधा हुआ है, तो हम कुछ ही ईमेल्स प्रोग्राम में ले सकते हैं और उनके गाने हम प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। कोशिश तो रहती है कि हम सभी ईमेल्स प्रोग्राम में शामिल करें, लेकिन समय के अभाव के कारण बहुत से नाम छूट जाते हैं। तो आप फिर भी हमें ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना ये प्रोग्राम 9:30 से लेकर 10 बजे तक आप सुन सकते हैं FM शिमला पर। बहरहाल, इसी गीत के साथ अभी इस प्रोग्राम को देने वाले हैं हम यहीं पर विराम। आप बने रहिए FM शिमला के साथ, क्योंकि रात्रि के 10 बज चुके हैं एग्जैक्टली, और ये समय रहता है गज़लों के कार्यक्रम का। तो हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: आता है तब कोई खूबसूरत गज़ल बन जाती है, दिल की धड़कनों को सुरों में पिरोकर हर महफिल यादगार बन जाती है। और हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी हर महफिल यादगार हो आप सभी के लिए। बेहतरीन प्रोग्राम हमारे इस FM शिमला की है शान। तो चलिए जी, गज़लों का इंतज़ार आपको रहता है पूरे दिन भर। इस वक्त आपकी थकान मिटाने के लिए बेहतरीन गज़लें हैं हमारे पास, तो बने रहिए हमारे साथ। और कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की गाई इस गज़ल के साथ।
1: खत जो भेजे थे तुमने हैं अब भी,
2: आओ हम दोनों मिलके पढ़ते हैं।

0: तो जी आप अपना मनपसंद कार्यक्रम गजलें सुन रहे हैं FM शिमला पर। कार्यक्रम जारी रहेगा इस संदेश के बाद।
1: अगर आप कुछ जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
2: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
1: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
2: नियम और शर्तें लागू।
0: देखिए खामोशियाँ और भी बेहतरीन लगती हैं जब शब्दों से ज़्यादा आंखें बातें करने लगे, क्योंकि आंखें कई बार वो कह देती हैं जो कभी कभी लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और गज़लें भी हम ऐसे ही चुनकर लेकर आते हैं आपके लिए जो बिल्कुल आपके दिल तक पहुंचती है। तो चलिए अगली गज़ल गुलाम अली की आवाज़ में सुनते हैं।

तो चलिए जी, अब गज़लों के सफ़र को विराम देने का समय आ गया है। 10:25 एग्जैक्टली हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और चलिए अब कार्यक्रम की आखिरी नज़म सुनवाते हैं आपको तलत अज़ीज़ की आवाज़ में।

0: तो चलिए जी, तलत अज़ीज़ की गाई सी गज़ल के साथ गज़लों के कार्यक्रम को देने वाले हैं यहीं पर विराम, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में 10:30 होने वाले हैं। समय रहता है सदाबहार गीत प्रोग्राम का, तो आप कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार। 10:30 लेके हाजिर होते हैं सदाबहार गीत प्रोग्राम।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: किसान हो या युवा या कोई पंजीकृत महिला संगठन, आप अपने कारोबार को सशक्त बनाने हेतु आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर विज्ञापनों का प्रसार करवाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं।
4: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
3: नियम और शर्तें लागू।

तो लीजिए, इस वक्त एग्जैक्टली 10:30 हुए हैं। समय रहता है सदाबहार नगमों का। ये ऐसे नगमे हैं जो रहते हैं हमेशा एवरग्रीन। आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आप कहीं पर भी हों, आपका मूड कैसा भी हो, जब भी आपके कानों में ये गीत गुनगुनाते हैं, मानिए आपका दिन रिफ्रेश हो जाता है, आप आनंदमय हो जाते हैं। तो ऐसे ही खास नगमे हमारे प्रोग्राम की है खास प्रस्तुति। तो चलिए, अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाते हम आपको, और लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रोग्राम का पहला गाना एंजॉय करते हैं।

0: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी पर आप अपने जिले की, अपनी बोली में, अपने व्यवसाय कारोबार के बारे में विज्ञापनों के माध्यम से सस्ते दामों पर प्रचार प्रसार करवा सकते हैं।
0: जी हाँ, आकाशवाणी शिमला पर शाम 4:20 से 7:05 तक प्रसारित होने वाले विभिन्न बोलियों के कार्यक्रमों में विज्ञापनों के प्रसारण हेतु आकाशवाणी शिमला से संपर्क करें।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: देखिए श्रोताओं, संगीत वो भाषा है जिसे हर दिल समझता है और सदाबहार गीत उसकी सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है। वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं, लेकिन अच्छे गीत हमेशा दिलों में अपनी जगह बनाए रखते हैं। तो ऐसे ही कुछ खास नगमे हमारे प्रोग्राम की रहते हैं पेशकश। बिल्कुल अगला गीत भी सुनवाएंगे आपको, लेकिन इस संदेश के बाद।
1: सरकारी विभाग हो या बैंक या फिर कोई सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU,
2: आप सस्ते दामों पर आकाशवाणी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचा सकते हैं।
1: आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों तक है,
2: और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर ये सेवाएं उपलब्ध हैं।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
2: नियम और शर्तें लागू।
3: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार, इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, तो क्या कहा आपने? अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू।

तो जी सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं FM शिमला पर, और इस वक्त हमारी घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि कार्यक्रम का आखिरी नगमा भी सुनवाया जाए आपको। तो चलिए सदाबहार गीत का आज के प्रोग्राम का आखिरी नगमा ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

गोरा, सुना क्या लड़की बोला? हाँ, बात में बहुत दम है। छाती ठोक ठोक के बोला।

तो दोस्तों इसी के साथ आज की सदाबहार महफिल को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है कि इन गीतों ने आपकी यादों को फिर से बहका दिया होगा। फिर मिलेंगे नए गीतों के साथ, नई बातों के साथ। बहरहाल आज के संगीत में सफ़र को यहीं पर विराम देते हैं। अब मैं रीटा पामा भी अनुमति चाहूँगी आपसे, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और FM शिमला सुनते रहें। अब रात्रि के 11 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी समाचारों के लिए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो। कीजिए बस आप कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले

0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology.